सुप्रभात, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन सोमवार है, शक संवत 1947 की भाद्र मास की द्वितीय तिथि, तदनुसार 24 अगस्त 2026। इस वक्त स्टूडियो घड़ी में सुबह के 7 बजे हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: जीवन सौरभ। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था। परंतु उसके पास ना कोई साथी था, ना कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वो अकेलेपन की जंजीरों में बंधा है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपने आत्मविश्वास की आवाज़ को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वो आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने निर्णय लिया कि वो पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वो पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिन बीतने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया और वो अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे जिनमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वो लड़का जिसने कभी अकेलेपन को एक रुकावट समझा था, अब वो एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वो लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयमितता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है।
1: जीवन सौरभ।
2: अभी आपने सुना जीवन सौरभ, अकेले लड़ने की ताकत। अब से ठीक बात सुनेगा कार्यक्रम अक्षय निधि, मंडल 2 सूक्त 3, और उसके बाद आनंद लीजिए भक्ति संगीत का।

रोजाना की तरह सुबह 8 बजे का समय होगा कार्यक्रम वतन की राग का। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की आज पुण्यतिथि है, उन्हीं की पुण्यतिथि पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम वतन का राग। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। गुप्त धन मुंशी प्रेमचंद की कहानी, ये कहानी सुनिए हमारे कार्यक्रम सुनो कहानी के अंतर्गत सुबह 8:30 पर। स्वर होगा कार्यक्रम में संदीप शर्मा का। सुबह 9 बजे सुनिए कार्यक्रम कला कल्लोलिनी, पंडित विनायक राव पटवर्धन की पुण्यतिथि पर आधारित ये कार्यक्रम होगा आज का। स्वरों का कार्यक्रम में दानिश खान और मनीषा चतुर्वेदी के। हमारा विशेष कार्यक्रम गायन जुगलबंदी पर सुनिए सुबह 9:30 पर। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की है फराज फैयाज ने।

सुबह 10 बजे आनंद लीजिए परिक्रमा का। आजाद हिंद, राम रखा, इन पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम आजाद हिंद। और ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर। ग्यारह बजे सुनिए कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार हरिशंकर परसाई की जयंती पर आधारित। और 11:30 पर सुनी का कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक बने रहिए मेरे यानी रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का। और अब सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि अंतराल के बाद।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के तीसरे सूक्त से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समद, भार्गव शौनक, देवता हैं आप्रि सूक्त, इद्म अथवा समिद्ध अग्नि, नराशंस, इड, बहिर, दिव्य द्वार, ऊषा सानाक्ता, दिव्य होतागण, प्रचेतस। देवियां हैं सरस्वती, इड़ा, भारती, त्वष्टा, वनस्पति, स्वाहाकृति और छंद है जगती।
2: समिद्धो अग्निर्निहितः पृथिव्यां प्रत्यं विश्वानि भुवनान्यस्थात् होता पावकः प्रदिवः सुमेधा देवो देवान्यज्यत्वग्निर्हन् प्रदीप्त अग्निदेव पृथ्वी पर स्थापित होकर समस्त लोकों में व्याप्त हैं। श्रेष्ठ बुद्धि वाले, पवित्र बनाने वाले, हविष्यान्न ग्रहण करने वाले तथा अत्यंत तेजस्वी एवं पूज्य अग्निदेव देवों की पूजा करें। नराशंसः प्रति धामान्यंजन तिस्रो दिवः प्रति महना स्वर्चिहि घृतप्रुषा मनसा हव्य मुंदन मूर्धन्यज्ञस्य समनक्तु देवान्। सबके द्वारा स्तुत्य ये अग्निदेव पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश तीनों लोकों को अपने महान सामर्थ्य से प्रकाशित करते हुए स्नेहयुक्त मन से हविष्यान्न को ग्रहण करते हुए यज्ञ स्थल में अपने दिव्य प्रभाव को प्रकट करते हैं। ईडितो अग्ने मनसा नो अर्हन् देवान्यक्षि मानुषात् पूर्वो अद्य स आवह मरुतां शर्धो अच्युतमिन्द्रम् नरो बर्हिषद् यजध्वम्। हे पूज्य अग्निदेव, हमारे हित साधन के लिए हमारे पूजन को स्वीकार कर मनुष्यों से पूर्व ही आप श्रेष्ठ मन से देवों की पूजा करें। हे अग्निदेव, सामर्थ्यवान मरुत देव तथा कभी भी परास्त न होने वाले इंद्रदेव को हमारे पास लाएं। हे मनुष्यों, यज्ञ स्थल में स्थापित अग्निदेव की उपासना करो। देव बर्हिवर्धमानं सुवीरं स्तीर्णं राये सुभरं वेद्यस्याम घृते नाक्तं वसवः सीद तेदं विश्वे देवा आदित्या यज्ञियासः। हे कुशाओं में स्थित अग्निदेव, यज्ञ कुंड में बढ़ते हुए आप हमें वीर संतति तथा श्रेष्ठ धन प्रदान करें। हे वसुओं, आदित्यों तथा विश्वे देवों, घृत से संचित एवं फैलाए गए कुश पर आप स्थापित हों। विश्रयंता मुर्वीया हुयमाना द्वारो देवी ही सुप्रायणा नमोभिः व्यच्यस्वतीर्वि प्रथन्ता मजुर्या वर्णं पुनाना यशसं सुवीरम्। नमस्कार पूर्वक आवाहित होने वाला विस्तृत तथा सुखकर यह जो दिव्य द्वार यज्ञाग्नि है, मानव इसका सहारा ले और संपर्क जोड़ने वाला जीर्ण न होने वाला यह दिव्य द्वार श्रेष्ठ संतति एवं सुयश प्रदान करते हुए सतत विकासशील रहे।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के तीसरे सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सब के मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही है।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन, अनुशीलन और विश्लेषण के लिए वहां की पुरा संपदा और प्राचीन पौराणिक ग्रंथ व साहित्य आधारभूत सामग्री के रूप में काम आते हैं। ये एक वैज्ञानिक शोध होता है जिसमें साहित्य में प्रयुक्त शब्दों को उसके ऐतिहासिक संदर्भों और मूल रूप में जांच परखकर सांस्कृतिक मूल्यांकन किया जाता है। हस्तलिखित ग्रंथों की शुद्धता उसकी भाषा पर गंभीर विवेचन होता है कि नकल के दौरान कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। प्राच्य विद्या के ऐसे ही एक गंभीर अध्येता थे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जो प्राची विद्या के एक युगांतरकारी विद्वान के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पश्चिमी चिंतकों से अप्रभावित रहकर उन्होंने अपनी मौलिक मनीषा के बल पर स्थापनाएं प्रस्तुत की। 6 जुलाई सन 1837 को पश्चिमी भारत के रत्नागिरी जिले में स्थित मालवण में उनका जन्म हुआ। अरब सागर की लहरों से किलोलित ये समुद्री तट अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। उनके पिता मालवण के तहसीलदार के यहाँ मुंशी थे। उन दिनों मालवण में अधिक स्कूल नहीं थे। बड़ी कठिनाई से उनकी आरंभिक शिक्षा पूरी हुई। सौभाग्य से उनके पिता गोपाल भंडारकर का तबादला रत्नागिरी के राजस्व विभाग में हो गया। रत्नागिरी में उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। 1853 में रामकृष्ण भंडारकर ने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में उच्च अध्ययन के लिए दाखिला लिया। यहाँ उन्हें दादा भाई नौरोजी जैसे प्रतिभावान शिक्षक मिले, जिन्होंने उनके सोच और भारत की प्राचीन परंपराओं के प्रति उनके प्रेम को जागृत और पोषित किया। इसी के चलते उन्होंने अंग्रेजी साहित्य, गणित और प्राकृतिक विज्ञान में रुचि होते हुए भी संस्कृत और पाली भाषा में विशेष अध्ययन किया। इसके कारण उन्हें भारत के गौरवमयी अतीत के अध्ययन में बहुत सहायता मिली। सन 1862 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की परीक्षा पहले बैच के छात्र के रूप में पास की, फिर वहीं से एमए की परीक्षा भी पास की। दोनों ही परीक्षाओं में वो प्रथम आए थे। कुछ समय तक सिंध के हैदराबाद और रत्नागिरी के राजकीय विद्यालय में वो हेडमास्टर रहे। इसके बाद एल्फिंस्टन कॉलेज में व्याख्याता के पद को सुशोभित किया। आगे चलकर पूना के डेकन कॉलेज में संस्कृत के पहले भारतीय प्रोफेसर बने। अब पूना ही उनके अध्ययन और गवेषणा का केंद्र बना, जहां उन्होंने अपने सपने साकार किए और इतिहास में शोध की उच्चतम परंपराएं स्थापित कीं।

15 जनवरी सन 1784 को कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। इसके माध्यम से पश्चिमी विद्वानों ने भारत के प्राचीन ज्ञान भंडार पर विधिवत अध्ययन प्रारंभ किए। 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की शुरुआत हुई। इन संस्थाओं ने प्राचीन पांडुलिपियों की खोज, संग्रहण और संरक्षण का काम शुरू किया। 1821 को पूना में डेक्कन कॉलेज की शुरुआत हुई। इस संस्था को पेशवा द्वारा प्रदत्त धनराशि से संचालित किया जाता था। मूलतः संस्कृत के अध्ययन और शोध के लिए स्थापित इस संस्था में बाद में अंग्रेजी, पुरातत्व, समाज विज्ञान और इंडोलॉजी विषय जोड़े गए। डेक्कन कॉलेज में रामकृष्ण भंडारकर लगभग 13 वर्ष तक प्रोफेसर रहे। यहीं से उन्होंने भारतीय पौराणिक साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ किया। पुरातत्व विषय में उन दिनों विद्वानों को अधिक रुचि नहीं थी। ऐसे में रामकृष्ण ने पाली, मागधी, प्राकृत आदि भाषाओं का विधिवत अध्ययन करके उनके प्राचीन ग्रंथों की खोज और अनुसंधान का काम शुरू किया। प्राकृत भाषाओं की ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन कर शिलालेख, ताम्रपत्र और ताड़पत्रों पर उपलब्ध साहित्य पर काम आरंभ किया। वस्तुतः एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े यूरोपीय विद्वान साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से भारत की ज्ञान संपदा का आकलन कर रहे थे। इसके उलट रामकृष्ण भंडारकर ने संस्कृत और पाली भाषा के ज्ञान के सहारे 4000 वर्षों के भारत के गौरव साहित्य के हिंदू दर्शन और राष्ट्रवादी विचारों को प्रकाश में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। डेक्कन कॉलेज का पुरातत्व विभाग ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की खुदाई कर महत्वपूर्ण साक्ष्य भी एकत्रित करता था, जो आगे गवेषणा के काम में आते थे। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इसके महत्व को ध्यान में रखकर हस्तलिखित ग्रंथों की खोज और उनके संकलन का महत् कार्य रामकृष्ण भंडारकर को सौंपा। उन्होंने गहन शोध और परिश्रम से 5 विशाल खंडों में ये कार्य पूरा किया। ये ग्रंथ पुरातत्व के इतिहासकारों के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ हैं। 1883 में रामकृष्ण भंडारकर को वियना में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया। वहां पर उनके अध्ययन की गंभीरता और विश्लेषण से सभी लोग बहुत प्रभावित हुए तथा उन्हें CIE के सम्मान से विभूषित किया गया। ये फ्रेंच सम्मान विश्वव्यापी सहकारिता तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय और योगदान के लिए दिया जाता है। लंदन में आयोजित ओरिएंटल स्टडीज के सम्मेलन में भी पाश्चात्य विद्वानों ने उनके अध्ययन और स्थापनाओं की बहुत प्रशंसा की। एक शिक्षाविद के रूप में सन 1903 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें काउंसिल ऑफ इंडिया के सम्मानित सदस्य के रूप में नामित किया। सन 1911 में भी उन्हें सरकार ने विशेष सम्मान प्रदान किया।

रामकृष्ण भंडारकर एक पुरातत्ववेत्ता और शिक्षाविद के साथ साथ उच्च कोटि के चिंतक और समाज सुधारक भी थे। बंगाल के ब्रह्म समाज की तर्ज पर बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। वे इसके सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने सामाजिक सुधारों के आधार रूप में धार्मिक सुधारों की वकालत की। अपने विशद अध्ययन के आधार पर ही उन्होंने कहा कि रूढ़िवादी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग ही सुधारों का विरोध करते हैं, ग्रंथों में ऐसा कुछ भी नहीं है। वे जाति प्रथा के विरोधी तथा विधवा विवाह और महिला शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। सन 1885 में उन्होंने प्रसिद्ध समाज सुधारक वामन अबजी मोडक और न्यायमूर्ति राणा डे के साथ मिलकर महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था ने पूना में लड़कियों के लिए पहला देसी हाई स्कूल खोला। हुजूर पगा के नाम से ख्यात इस स्कूल का पाठ्यक्रम प्रगतिशील सोच पर केंद्रित था। रामकृष्ण भंडारकर कई उल्लेखनीय ग्रंथों के प्रणेता रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम से संस्कृत सीखने हेतु उन्होंने दो पाठ्य पुस्तक रची। बॉम्बे गजेटियर के लिए उनका योगदान दक्षिण भारत का इतिहास बहुत प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। सन 1876 में उन्होंने भवभूति के मालती माधव पर टीका लिखी, जो बहुत सराही गई। अपने तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ तरीके से अन्वेषित दक्षिण के सातवाहन के अलावा वैष्णव और अन्य संप्रदायों के इतिहास का उन्होंने पुनर्लेखन भी किया। वे ऐसे स्वदेशी इतिहासकार थे जिन्होंने राष्ट्रवादी चेतना के आलोक में हिंदू धर्म और दर्शन को परिभाषित किया। सन 1872 में आरंभ हुई भारतीय पुरावेत्ता शोध पत्रिका में उन्होंने कई निबंध लिखे, जो बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के लिए किया गया उनका काम भी महत्वपूर्ण है। वे इसके आरंभिक सदस्य थे। अपनी बौद्धिक यात्राओं में वे कई बार पश्चिम के विद्वानों से सैद्धांतिक बहस में उलझे और अपनी मान्यताओं को सही ठहराया। महाभारत और पतंजलि का काल निर्धारण भी उन्होंने ही किया। महाभारत के 1.5 लाख शब्दों का विवेचन और व्याख्या भी उनका महत्वपूर्ण काम है। उन्होंने इतिहासकार के भीतर वकील जैसी जिरह करने की प्रवृत्ति का विरोध किया और न्यायाधीश जैसी निष्पक्ष कठोरता पर बल दिया। उनका मानना था कि इतिहास का वर्णन उसी रूप में होना चाहिए जैसा वो वस्तुतः था। भारतीय प्राच्य साहित्य के इस महान विद्वान का 24 अगस्त सन 1925 को निधन हो गया। उनकी स्मृति में पुणे में स्थापित भंडारकर शोध संस्थान आज भी ज्ञान का पथ आलोकित कर रहा है। प्राच्य विद्या के ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: रॉल्फ कॉर्टराइट का अनैतिक व्यवहार और ढहता हुआ व्यापारिक साम्राज्य 1633। क्या आप जानते हैं कि 1633 में रॉल्फ कॉर्टराइट नामक एक अंग्रेजी व्यापारी मसूलीपट्टनम से एक ऐसे मिशन पर निकला था जो बंगाल और उड़ीसा की उपजाऊ भूमि में ईस्ट इंडिया कंपनी का भाग्य निर्धारित करने वाला था। जहां इतिहास इस यात्रा को इसके व्यावसायिक महत्व के लिए याद रखता है, वहीं डच अभिलेखागार में इस घटना का एक कहीं अधिक अपमानजनक संस्करण सुरक्षित है, जिसे एमोरस मिस एडवेंचर अर्थात प्रेमपूर्ण दुस्साहस के रूप में जाना जाता है। कॉर्टराइट का गंतव्य कटक में उड़ीसा के नवाब का दरबार था। आगरा के मुगल शाही केंद्र की कठोर और पूर्व निर्धारित औपचारिकताओं के विपरीत यह प्रांतीय कूटनीति की दुनिया थी। कटक के भव्य महल में कॉर्टराइट ने खुद को एक बेहद आदमीय माहौल में पाया, जहां वो नवाब से कुछ ही फिट की दूरी पर दरबार के फर्श पर पालथी मारकर बैठा था। व्यापारिक अधिकार सुरक्षित करने के लिए कॉर्टराइट ने आवश्यक रस्में निभाईं। उसने नवाब के पैर चूमे और उपहारों का एक मामूली संग्रह भेंट किया, जिसमें लौंग, जायफल, एक सुनहरा दर्पण और एक दोनाली पिस्तौल शामिल थी। ये मिशन एक बड़ी जीत जैसा लगा। नवाब कॉर्टराइट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे खिलअत यानी सम्मान की पोशाक पहनाई, जिसने प्रतीकात्मक रूप से अंग्रेज को नवाब के सामने सेवा और वफादारी के नेटवर्क में शामिल कर लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कॉर्टराइट एक परवाना हासिल करने में सफल रहा, जिसने अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार करने और हरिहरपुर के बंदरगाह में एक फैक्ट्री बनाने का अधिकार दे दिया। हालांकि बटाविया कैसल में डच द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी के अनुसार ये सफलता कॉर्टराइट के निजी आचरण के कारण नाटकीय रूप से बर्बाद हो गई। जैसे ही हरिहरपुर में अंग्रेजी लॉज का निर्माण पूरा होने वाला था, नवाब ने अचानक पूरी संरचना को नष्ट करने और गिरा देने का आदेश दे दिया। बंगाल की खाड़ी के बंदरगाहों में ये फुसफुसाहट थी कि कॉर्टराइट को फैक्ट्री में अनैतिक व्यवहार के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसका परिणाम त्वरित और गंभीर था। कॉर्टराइट को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और 1,000 रुपए का जुर्माना भरने के बाद ही उसे अपनी आजादी वापस मिली। जहां अंग्रेजी कंपनी के रिकॉर्ड इस विशिष्ट शर्मिंदगी के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं डच प्रशासकों ने इस कहानी को पूरी तरह से विश्वसनीय माना। कॉर्टराइट की यह घटना 17वीं सदी की कंपनी राज्य की एक बुनियादी सच्चाई को दर्शाती है। वैश्विक वाणिज्य अंतर व्यक्तिक संबंधों की नाजुक नींव पर टिका था। प्रांतीय कूटनीति की उस दुनिया में जहां एक व्यापारी की सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी पूंजी जितनी ही महत्वपूर्ण थी, एक अनैतिक व्यवहार एक उभरते व्यापारिक साम्राज्य को घुटनों पर ला सकती थी।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम में आपको सुना रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुप्त धन।

बाबू हरिदास का ईंटों का पजावा यानी भट्टा शहर से मिला हुआ था। आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य आते और पजावे से ईंट सिर पर उठाकर ऊपर कतारों से सजाते। एक आदमी पजावे के पास एक टोकरी में कौड़ियां लिए बैठा रहता था। मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कौड़ियां बांटता। ईंटें जितनी ही ज्यादा होती उतनी ही ज्यादा कौड़ियां मिलती। इस लोभ में बहुत से मजदूर बूते के बाहर काम करते। वृद्धों और बालकों को ईंट के बोझ में अकड़े हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य था। कभी कभी बाबू हरिदास स्वयं आकर कौड़ी वाले के पास बैठ जाते और ईंट लादने को प्रोत्साहित करते। ये दृश्य तब और भी दारुण हो जाता था जब ईंटों की कोई असाधारण आवश्यकता पड़ती। उसमें मजूरी दूनी कर दी जाती और मजूर लोग अपनी सामर्थ्य से दूनी ईंटें लेकर चलते। एक एक पग उठाना कठिन हो जाता। उन्हें सिर से पैर तक पसीने में डूबे, पजावे की राख चढ़ाए, ईंटों का एक पहाड़ सिर पर रखे, बोझ से दबे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो लोभ का भूत उन्हें जमीन पर पटक कर उनके सिर पर सवार हो गया है। सबसे करुण दशा एक छोटे लड़के की थी जो सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दुगनी ईंटें उठाता और सारे दिन अविश्रांत परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता। उसके मुख पर ऐसी दीनता छाई रहती थी, उसका शरीर इतना क्रश और दुर्बल था कि उसे देखकर दया आ जाती थी। और लड़के बनिए की दुकान से गुड़ लाकर खाते और कोई व्यक्तिगत संग्राम में अपनी जिह्वा और बाहू के जौहर दिखाता। लेकिन इस गरीब लड़के को अपने काम से काम था। उसमें ना लड़कपन की चंचलता थी, न शरारत, न खिलंदड़पन। यहां तक कि उसके होठों पर कभी हंसी तक ना आती थी। बाबू हरिदास को उसकी दशा पर दया आती। कभी कभी कौड़ी वाले को इशारा करते कि उस हिसाब से अधिक कौड़ियां दे दो। कभी कभी वे उसे कुछ खाने को भी दे देते। एक दिन उन्होंने उस लड़के को बुलाकर अपने पास बिठाया और उसके समाचार पूछने लगे। ज्ञात हुआ कि उसका घर पास ही के गांव में है। घर में एक वृद्धा माता के सिवाय कोई नहीं है और वृद्धा भी किसी पुराने रोग से ग्रस्त रहती है। घर का सारा भार इसी लड़के के सिर पर था। कोई उसे रोटियां बनाकर देने वाला भी न था। शाम को जाता तो अपने हाथों से रोटियां बनाता और अपनी मां को खिलाता था। जाति का ठाकुर था। किसी समय उसका कुल धन धान्य से संपन्न था, लेन देन होता था और शक्कर का कारखाना चलता था। कुछ जमीन भी थी, किंतु भाइयों की स्पर्धा और विद्वेष ने उसे इतनी हीनावस्था तक पहुंचा दिया था कि अब रोटियों के लाले पड़े थे। लड़के का नाम मगन सिंह था। हरिदास ने पूछा, गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते? मगन ने कहा, वाह, उनका वश चले तो मुझे मार डालें। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपए गड़े हैं। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, पुराना घराना है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तुम्हारी मां ने इस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा? मगन बोला, बाबूजी नहीं, एक भी पैसा नहीं। रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती। बाबू हरिदास मगन सिंह से इतने प्रसन्न हुए कि मजूरों की श्रेणी से उठाकर अपने नौकरों में रख लिया। उसे कौड़ियां बांटने का काम दिया और पजावे में मुंशी जी को ताकीद कर दी कि इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाइए। अनाथ के भाग्य जाग उठे। मगन सिंह बड़ा कर्तव्यशील और चतुर लड़का था। उसे कभी देर ना होती, कभी नागा ना होता। थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया। लिखने पढ़ने में भी कुशल हो गया। बरसात के दिन थे, पजावे में पानी भरा हुआ था, कारोबार बंद था। मगन सिंह 3 दिनों से गैर हाजिर था। हरिदास को चिंता हुई, क्या बात है, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? कई आदमियों से पूछताछ की पर कुछ पता ना चला। 4th दिन पूछते पूछते मगन सिंह के घर पहुंचे। घर क्या था, पुरानी समृद्धि का ध्वंसावशेष मात्र था। उनकी आवाज सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आया। हरिदास ने पूछा, कई दिन से आई नहीं, माता का क्या हाल है? मगन सिंह ने अवरुद्ध कंठ से उत्तर दिया, अम्मा आजकल बहुत बीमार हैं, कहती हैं अब ना बचूंगी। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी हैं, पर मैं संकोच के मारे आपके पास ना आता था। अब आप सौभाग्य से आ गए हैं तो जरा चलकर उसे देख लीजिए, आपकी लालसा भी पूरी हो जाए। हरिदास भीतर गए। सारा घर भौतिक निस्सारता का परिचायक था। सुर्खी, कंकड़ और ईंटों के ढेर चारों ओर पड़े हुए थे, विनाश का प्रत्यक्ष स्वरूप था। केवल 2 कोठरियां गुजरने लायक थीं। मगन सिंह ने एक कोठरी की ओर उन्हें इशारे से बताया। हरिदास भीतर गए तो देखा
कि वृद्धा एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर पड़ी कराह रही है। उनकी आहट पाते ही आंखें खोली और अनुमान से पहचान गई। बोली, आप आ गए बड़ी दया की, आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी। मेरा नाथ बालक के नाथ अब आप ही हैं, जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है वो निगाह उस पर सदैव बनाए रखिएगा। मेरी विपत्ति के दिन पूरे हो गए, इस मिट्टी को पार लगा दीजिएगा। एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था, हदिन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली। पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ थाती धरती माता को सौंप दी थी। उसका बीजक बड़े यत्न से रखा था, पर बहुत दिन से उसका कहीं पता नहीं। मगन के पिता ने बहुत खोजा पर न पा सके, नहीं तो हमारी इतनी दशा हीन न होती। आज 3 दिन हुए वो मुझे बीजक आप ही आप रद्दी कागजों में मिल गया, तब से उसे छिपा कर रखे हूं। मगन बाहर है, मेरे सिरहाने जो संदूक रखी है उसी में वो बीजक है, उसमें सब बातें लिखी हैं, उसी से ठिकाने का भी पता चलेगा। अवसर मिले तो उसे खुदवा डालिए, मगन को दे दीजिएगा। यही कहने के लिए आपको बार बार बुलवाती थी, आपके सिवा मुझे किसी पर विश्वास न था। संसार से धर्म उठ गया, किसकी नियत पर भरोसा किया जाए। हरिदास ने बीजक का समाचार किसी से न कहा, नियत बिगड़ गई, दूध में मक्खी पड़ गई। बीजक से ज्ञात हुआ कि धन उस घर से 500 डग पश्चिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। हरिदास धन को भोगना चाहते थे, पर इस तरह कि किसी को कानो कान खबर ना हो। काम कष्ट साध्य था, नाम पर धब्बा लगने की प्रबल आशंका थी, जो संसार में सबसे बड़ी यंत्रणा है। कितनी घोर निष्ठा थी, जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे बच्चे की भांति पाला, उसके साथ विश्वासघात। कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहते रहे, अंत में कुतर्कों ने विवेक को परास्त कर दिया। मैंने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया और ना कभी करूंगा, क्या कोई ऐसा प्राणी भी है जो मनुष्य में एक बार भी विचलित ना हुआ हो? यदि है तो वो मनुष्य नहीं देवता है, मैं मनुष्य हूं, मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का दावा नहीं है। मन को समझाना बच्चे को फुसलाना है। हरिदास सांझ को सैर करने के लिए घर से निकल जाते, जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो मंदिर के चबूतरे पर आ बैठते और एक कुदाली से उसे खोदते। दिन में 2-1 बार इधर उधर ताक झांक करते कि कोई चबूतरे के पास खड़ा तो नहीं है। रात की निस्तब्धता में उन्हें अकेले बैठे ईंटों को हटाते उतना ही भय होता था जितना किसी भ्रष्ट वैष्णव को आमिष भोजन से होता है। चबूतरा लंबा चौड़ा था, उसे खोदते 1 महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय न हुई। इन दिनों उनकी दशा उस पुरुष की सी थी जो कोई मंत्र जगा रहा हो। चित्त पर चंचलता छाई रहती, आंखों की ज्योति तीव्र हो गई थी, बहुत गुमसुम रहते, मानो ध्यान में हो। किसी से बातचीत न करते, अगर कोई छेड़कर बात करता तो झुंझला पड़ते, पजावे की ओर बहुत कम जाते। विचारशील पुरुष थे, आत्मा बार बार इस कुटिल व्यापार से भागती, निश्चय करते कि अब चबूतरे की ओर न जाऊंगा। पर संध्या होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता, बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता, जैसे कुत्ता मार खाकर थोड़ी देर के बाद टुकड़े के लालच में जा बैठता है, वही दशा उनकी थी। यहां तक कि 2रा मास भी व्यतीत हुआ। अमावस की रात थी, हरिदास मलिन हृदय में बैठी कालिमा की भांति चबूतरे पर बैठे हुए थे। आज चबूतरा खुद जाएगा, जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी, कोई चिंता नहीं। घर में लोग चिंतित हो रहे होंगे, पर अभी निश्चित हुआ जाता है कि चबूतरे के नीचे क्या है। पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा, तहखाना ना मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा ही धोखा है। कहीं सचमुच तहखाना ना मिले तो बड़ी दिल लगी हो, मुफ्त में उल्लू बनूं, पर नहीं, कुदाली खटखट बोल रही है। हाँ, पत्थर की चट्टान है, उन्होंने टटोल कर देखा, भ्रम दूर हो गया, चट्टान थी। तहखाना मिल गया, पर हरिदास खुशी से उछले कूदे नहीं। आज वे लौटे तो सिर में दर्द था, समझे थकान है, लेकिन ये थकान नींद से न गई। रात को ही उन्हें जोर से बुखार हो गया, 3 दिन तक ज्वर में पड़े रहे, किसी दवा से फायदा ना हुआ। इसी रुग्णावस्था में हरिदास को बार बार भ्रम होता था, कहीं ये मेरी तृष्णा का दंड तो नहीं है। जी में आता था मगन सिंह को बीजक दे दूं और क्षमा की याचना करूं, पर भंडा फोड़ होने का भय मुंह बंद कर देता था। न जाने ईसा के अनुयायी अपने पादरियों के सम्मुख कैसे अपने जीवन भर के पापों की कथा सुनाया करते थे।
हरिदास की मृत्यु के पीछे ये बीजक उनके सुपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा। बीजक मगन सिंह के पुरखों का लिखा है, इसमें लेश मात्र भी संदेह न था। लेकिन उन्होंने सोचा, पिताजी ने कुछ सोचकर ही इस मार्ग पर पग रखा होगा। वे कितने नीति परायण, कितने सत्यवादी पुरुष थे, उनकी नियत पर कभी किसी को संदेह नहीं हुआ। जब उन्होंने इस आचार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती, कहीं ये धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतीत हो। शहर के रईसों को दिखा दूं कि धन का सदुपयोग क्यों कर होना चाहिए। बड़ों बड़ों का सिर नीचा कर दूं, कोई आंख ना मिला सके, इरादा पक्का हो गया। शाम होते ही वे घर से बाहर निकले, वही समय था, वही चौकन्नी आंखें थीं और वही तेज कुदाली थी। ऐसा ज्ञात होता था मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही है। चबूतरे का धरातल पहले ही खुद चुका था, अब संगीन तहखाना था, जोड़ों को हटाना कठिन था, पुराने जमाने का पक्का मसाला था। कुल्हाड़ी उचट उचट कर लौट आती थी, कई दिनों में ऊपर की दरारें खुली लेकिन चट्टाने जरा भी ना हिली। तब वो लोहे की छड़ से काम लेने लगे, लेकिन कई दिनों तक जोर लगाने पर भी चट्टाने न खिसकी। सब कुछ अपने ही हाथों करना था, किसी से सहायता न मिल सकती थी। यहां तक कि फिर वही अमावस्या की रात आ गई। प्रभुदास को जोर लगाते 12 बज गए और चट्टाने भाग्य रेखाओं की भांति अटल थी। पर आज इस समस्या को हल करना आवश्यक था, कहीं तहखाने पर किसी की निगाह पड़ जाए तो मेरे मन की लालसा मन में ही रह जाए। वो चट्टान पर बैठकर सोचने लगे, क्या करूं, बुद्धि कुछ काम नहीं करती। सहसा उन्हें एक युक्ति सूझी, क्यों ना बारूद से काम लूं। इतने अधीर हो रहे थे कि कल पर इस काम को न छोड़ सके, सीधे बाजार की तरफ चले। 2 मील का रास्ता हवा की तरह तय किया, पर वहां पहुंचे तो दुकानें बंद हो चुकी थी। आतिशबाज हीले करने लगा, बारूद इस समय नहीं मिल सकती, सरकारी हुक्म नहीं है। तुम कौन हो, इस वक्त बारूद लेकर क्या करोगे? ना भैया, कोई वारदात हो जाए तो मुफ्त में बंधा बंधा फिरूं, तुम्हें कौन पूछेगा। प्रभुदास की शांत वृत्ति कभी इतनी कठिन परीक्षा में न पड़ी थी। वे अंत तक अनुनय विनय ही करते रहे, यहां तक कि मुद्राओं की सुरीली झनकार ने उसे वशीभूत कर दिया। प्रभुदास यहां से चले तो धरती पर पांव न पड़ते थे। रात के 2 बजे थे, प्रभुदास मंदिर के पास पहुंचे, चट्टानों की दराजों में बारूद रख पलीता लगा दिया और दूर भागे। एक क्षण में जोर का धमाका हुआ, चट्टान उड़ गई। अंधेरा गार सामने था, मानो कोई पिशाच उन्हें निगल जाने के लिए मुंह खोले हुए है। प्रभात का समय था, प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए थे। सामने लोहे के संदूक में 10,000 पुरानी मोहरे रखी हुई थी। उनकी माता सिरहाने बैठी पंखा जल रही थी। प्रभुदास ज्वर की ज्वाला से जल रहे थे, करवटें बदलते थे, कराहते थे, हाथ पांव पटकते थे, पर आंखें लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी। इसी में उनके जीवन की आशाएं बंद थी। मगन सिंह अब पजावे का मुंशी था, इसी घर में रहता था, आकर बोला, पजावे चलिएगा, गाड़ी तैयार कराऊं। प्रभुदास ने उसके मुख की ओर क्षमा याचना की दृष्टि से देखा और बोले, नहीं, आज मैं न चलूंगा, तबीयत अच्छी नहीं है, तुम भी मत जाओ। मगन सिंह उनकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने चला। 10 बजते बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गईं। माता ने उनकी ओर देखा तो शोक से विवल हो गईं। बाबू हरिदास की अंतिम दशा उनकी आंखों में फिर गई। जान पड़ता था ये उसी शोक घटना की पुनरावृत्ति है। वो देवताओं की मनौतियां मना रही थी, किंतु प्रभुदास की आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा अर्पण कर दी थी। उनकी स्त्री आकर उनके पैताने बैठ गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। प्रभुदास की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर वे आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर निराशापूर्ण भाव से देख रही थी। डॉक्टर ने आकर देखा, दवा दी और चला गया, पर दवा का असर उल्टा हुआ। प्रभुदास के हाथ पांव सर्द हो गए, मुख निस्तेज हो गया, हृदय की गति मंद पड़ गई, पर आंखें संदूक की ओर से न हटी। मोहल्ले के लोग जमा हो गए, पिता और पुत्र के स्वभाव और चरित्र पर टिप्पणियां होने लगी। दोनों शील और विनय के पुतले थे, किसी को भूल कर भी कड़ी बात न कही। प्रभुदास का संपूर्ण शरीर ठंडा हो गया था, प्राण थे तो केवल आंखों में। वे अब भी उसी लोहे के संदूक की ओर सतृष्ण भाव से देख रही थी। घर में कोहराम मचा हुआ था, दोनों महिलाएं पछाड़े खा खा कर गिरती थी। मोहल्ले की स्त्रियां उन्हें समझाती थी। अन्य मित्रगण
आंखों पर रुमाल जमाए हुए थे। जवानी की मौत संसार का सबसे करुण, सबसे अस्वाभाविक और भयंकर दृश्य है। ये वज्राघात है, विधाता की निर्दय लीला है। प्रभुदास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया था, पर आंखें जीवित थीं। वे अब भी उसी संदूक की ओर लगी थी। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था। सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती। इतने में मगन सिंह आकर खड़ा हो गया। प्रभुदास की निगाह उस पर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो उसके शरीर में फिर रक्त का संचार हुआ। अंगों में स्फूर्ति के चिन्ह दिखाई दिए। इशारे से अपने मुंह के निकट बुलाया, उसके कान में कुछ कहा, एक बार लोहे के संदूक की ओर इशारा किया और आंखें उलट गईं, प्राण निकल गए।

0: श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुप्तधन। फिर अपने अगले अंक में एक और कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र अपने किस्सा को संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के सभी कला प्रेमियों, संगीत साधकों और रसिकों का कला कल्लोनिनी के इस एपिसोड में स्वागत करती हूं। आज हमारे शब्दों में ग्वालियर घराने की शुद्धता है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की तपोभूमि की सौंधी खुशबू है और नाट्य संगीत की वो अद्भुत ठसक है जिसे पूरी दुनिया पंडित विनायक राव पटवर्धन के नाम से जानती है।
1: पंडित विनायक राव पटवर्धन भारतीय शास्त्रीय संगीत का वो स्तंभ जिन्होंने न केवल रागों की शुद्धता को जीवित रखा बल्कि संगीत के शिक्षण को एक संस्थागत रूप देकर घर घर तक पहुंचाया। आज की ये विशेष प्रस्तुति उस महान विभूति की जीवन यात्रा, उनके कड़े रियाज, उनकी गुरु भक्ति और उनकी अमर गाथा को समर्पित है। तो चलिए श्रोताओं, समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 19वीं सदी के अंतिम दशक में।

0: तारीख 22 जुलाई 1888 और स्थान महाराष्ट्र का ऐतिहासिक शहर मिरज। मिरज जो अपनी मिट्टी में ही संगीत की तरंगें समेटे हुए था, जहां के तानपुरे पूरी दुनिया में अपनी गूंज के लिए जाने जाते थे, इसी मिरज के एक बेहद सुसंस्कृत और पारंपरिक चित्त पावन ब्राह्मण परिवार में बाल विनायक का जन्म हुआ।
1: विनायक के पिता और उनके चाचा संगीत के गहरे पारखी थे। विनायक का बचपन जब मिरज की गलियों में बीत रहा था, तो उनके कानों में हर समय तानपुरे का सुर और तबले की थाप गूंजती थी। बचपन से ही इस बालक की एकाग्रता अद्भुत थी। जब भी घर में या पास के मंदिर में भजन कीर्तन होता, विनायक खेल कूद छोड़कर घंटों वहां बैठ जाते और उनकी आंखें सम्मोहन में बंद हो जातीं। उनके चाचा ने भांप लिया था कि इस बालक के भीतर कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि संगीत का कोई महान साधक छुपा है।
0: लेकिन नियति ने इतनी कम उम्र में ही विनायक की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया। अनाथ बालक के सामने जीवन का अंधकार था, लेकिन उनके चाचा नारायण राव ने विनायक को अपनी संतान से बढ़कर पाला। नारायण राव खुद मिरज के प्रसिद्ध गायक पंडित बाल कृष्ण बुवा इचल करंजीकर के शिष्यों के संपर्क में थे। उन्होंने तय किया कि विनायक के जीवन की नैया को अगर कोई पार लगा सकता है तो वो संगीत है।
1: और तभी मिरज की उस पावन भूमि पर एक युगांतकारी घटना घटी। भारतीय संगीत के पुनरुद्धारक महान संगीत महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का मिरज आगमन हुआ। पलुस्कर जी उस समय पूरे भारत में संगीत के प्रचार प्रसार और उसे कुलीन समाज में सम्मान दिलाने के लिए एक महान अभियान पर निकले थे। जब नारायण राव बाल विनायक को लेकर पलुस्कर जी के सामने पहुंचे, तो पलुस्कर जी ने बालक के चेहरे के तेज और उसकी सुरीली आवाज को एक ही नजर में पहचान लिया।
0: जी हाँ, पलुस्कर जी ने कहा, ये बालक मुझे सौंप दो, ये संगीत की सेवा करेगा और पूरी दुनिया में ग्वालियर घराने का नाम रोशन करेगा। और इस तरह मात्र 9-10 वर्ष की आयु में विनायक राव पटवर्धन पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के प्रथम शिष्यों में शामिल हो गए। ये केवल एक गुरु शिष्य का मिलन नहीं था, बल्कि भारतीय संगीत के एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत थी।
1: श्रोताओं, उस दौर में गुरु के आश्रम में रहना कोई आसान काम नहीं था। वह महज एक संगीत विद्यालय नहीं, बल्कि एक कठोर तपोभूमि थी। विनायक राव को लाहौर के गंधर्व विद्यालय में ले जाया गया, जिसकी स्थापना पलुस्कर जी ने की थी। सुबह के ठीक 4 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही थी, बालक विनायक को अपने गुरु के साथ खरज यानी मंत्र सप्तक का रियाज करने बैठना पड़ता था। ठंड के दिनों में भी ठंडे पानी से स्नान करके सूती कुर्ता पहने तानपुरा लेकर बैठना और लगातार 4 घंटे तक केवल सा का अभ्यास करना, यह थी वो तपस्या जिसने विनायक राव के कंठ को फौलादी और सुरीला बनाया।
0: लाहौर का गंधर्व महाविद्यालय भारतीय संगीत के इतिहास का वो मील का पत्थर था, जहां पहली बार संगीत को किसी बंद कोठरी या राजा के दरबार से निकलकर एक आधुनिक पाठ्यक्रम के तहत ढाला जा रहा था। विनायक राव यहाँ न केवल संगीत सीख रहे थे, बल्कि वो संगीत के प्रशासनिक और सामाजिक दायित्वों को भी आत्मसात कर रहे थे। पलुस्कर जी अपने शिष्यों को केवल गायक नहीं, बल्कि संगीत का प्रचारक बनाना चाहते थे।
1: विनायक राव ने अपने गुरु के हर आदेश को शिरोधार्य किया। रियाज के साथ साथ आश्रम की सफाई करना, गुरु के कपड़े धोना, भोजन की व्यवस्था करना और गंधर्व महाविद्यालय की पत्रिकाओं के संपादन में हाथ बटाना, विनायक राव हर काम में अव्वल रहते थे। इसी कठिन दिनचर्या ने उनके भीतर विनम्रता और अनुशासन का वो बीज बोया जो जीवन भर उनके साथ रहा। उन्होंने यहाँ रहकर संगीत के साथ साथ संस्कृत, साहित्य और कला के सैद्धांतिक पक्षों का भी गहन अध्ययन किया।
0: श्रोताओं, 20वीं सदी की शुरुआत में महाराष्ट्र में संगीत नाटक यानी म्यूजिकल थिएटर का दौर अपने चरम पर था। बाल गंधर्व जैसी विभूतियां मंच पर उतरती थीं, तो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाने का ये सबसे सशक्त माध्यम था। जब विनायक राव पटवर्धन की शिक्षा पूरी हुई तो उनके गुरु पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने उन्हें एक नया निर्देश दिया। उन्होंने कहा, विनायक जाओ और नाट्य मंच पर शास्त्रीय संगीत की ध्वजा फहराओ।
1: और फिर गुरु की आज्ञा पाकर विनायक राव पटवर्धन सुप्रसिद्ध गंधर्व नाटक मंडली में शामिल हो गए। मंच पर उनका आगमन किसी बड़े धमाके से कम नहीं था। उनकी बुलंदी, साफ और तीन सप्तकों में आसानी से घूमने वाली आवाज ने नाट्य प्रेमियों को दीवाना बना दिया। उन्होंने शाकुंतलम, सौभद्र, मृच्छकटिक और संशय कल्लोल जैसे नाटकों में मुख्य और महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। जब वे मंच पर गाते थे तो नाट्य गृह का एक एक कोना उनकी आवाज से गूंज उठता था। बिना किसी लाउडस्पीकर या माइक के हॉल के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक उनकी तान का एक एक कण स्पष्ट सुनाई देता था।
0: बिल्कुल सही। श्रोताओं, जानते हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी? बाल गंधर्व जैसी महान हस्तियों के साथ मंच साझा करते हुए भी विनायक राव ने कभी अपनी शास्त्रीय शुद्धता से समझौता नहीं किया। वे नाटक के गीतों में भी ग्वालियर घराने की ताने, गमक और मीड़ का ऐसा बेजोड़ प्रयोग करते थे कि नाटक देखने आए आम लोग भी शास्त्रीय संगीत के रस में सराबोर हो जाते थे। उनके गाए हुए नाट्य गीत आज भी मराठी संस्कृति का अनमोल हिस्सा हैं।
1: जब बात शास्त्रीय गायन की आती है तो पंडित विनायक राव पटवर्धन का नाम इतिहास में तराना विधा के पर्याय के रूप में दर्ज है। तराना जिसमें शब्दों के बजाय तनों, दरें, दानी, तदिम जैसे निरर्थक लगने वाले बोलों के जरिए राग के पूरे सौंदर्य को एक अत्यंत तेज गति में प्रस्तुत किया जाता है। यह किसी भी गायक के फेफड़ों, उसकी सांस के नियंत्रण और उसकी जीभ की गति की अंतिम परीक्षा होती है।
0: श्रोताओं, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार मानते थे कि विनायक राव जैसा तराना गायन किसी के बस की बात नहीं है। जब वे अपनी द्रुत लय में तराना शुरू करते थे तो उनकी उंगलियां तानपुरे पर उनके स्वर हवा की गति से मुकाबला करते थे, लेकिन इस गति में भी कहीं कोई कटुता नहीं होती थी। स्वरों का माधुर्य और ग्वालियर घराने की गरिमा पूरी तरह सुरक्षित रहती थी। भारत के महान संगीत समीक्षकों ने उन्हें तराना का जादूगर की उपाधि दी।
1: नाट्य मंच पर अपार सफलता, धन और कीर्ति कमाने के बाद भी विनायक राव के मन में एक छटपटाहट थी। उनके गुरु पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिर रहा था और लाहौर का गंधर्व महाविद्यालय भी कई संकटों से गुजर रहा था। विनायक राव को लगा कि उनकी कीर्ति तब तक अधूरी है जब तक वे अपने गुरु के मिशन को आगे नहीं बढ़ाते। सन 1932 में उन्होंने नाट्य दुनिया को अलविदा कह दिया, एक ऐसे समय पर जब वे सफलता के शिखर पर थे।
0: श्रोताओं, ये कितना बड़ा त्याग था। लोग पैसे और प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं और वहीं विनायक राव पटवर्धन ने पुणे का रुख किया और 8 मई 1932 को पुणे में भारतीय संगीत प्रसारक मंडल के तहत गंधर्व महाविद्यालय की पुनर्स्थापना की। ये कोई व्यवसायिक स्कूल नहीं था, बल्कि संगीत का ऐसा मंदिर था जहां गरीब से गरीब बच्चा भी आकर संगीत की शिक्षा प्राप्त कर सकता था।
1: विनायक राव खुद साइकिल चलाकर स्कूल आते थे। वे बच्चों को जमीन पर बैठकर सिखाते थे। उन्होंने संगीत के पाठ्यक्रम को इतना सरल और सुलभ बनाया कि आम परिवारों के बच्चे भी शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित होने लगे। उन्होंने संगीत शिक्षा के लिए राग विज्ञान नामक एक विशाल पुस्तक श्रृंखला लिखी। 7 भागों में प्रकाशित यह ग्रंथ आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थियों के लिए बाइबल माना जाता है। इसमें उन्होंने रागों के लक्षण, उनकी बंदिशें और उनकी बारीकियों को इतनी सरलता से समझाया है कि कोई भी जिज्ञासु इसे आसानी से समझ सकता है।
0: एक सच्चे गुरु की पहचान उसके अपने गायन से तो होती ही है, लेकिन इससे भी बड़ी पहचान इस बात से होती है कि उसने समाज को कैसे शिष्य दिए हैं। पंडित विनायक राव पटवर्धन इस मामले में बेहद भाग्यशाली और महान थे। उनके शिष्यों की सूची भारतीय संगीत जगत के दिग्गजों की सूची है। उनके सबसे प्रमुख और लाडले शिष्य थे पंडित डीवी पलुस्कर, यानी दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर, जो उनके गुरु पलुस्कर जी के सुपुत्र थे।
1: जी हाँ, जब पलुस्कर जी का अवसान हुआ तो बालक दत्तात्रेय बहुत छोटे थे। विनायक राव ने अपने गुरु पुत्र को अपनी संतान की तरह पाला और उन्हें संगीत की वो बारीकियां सिखाई कि आगे चलकर पंडित डीवी पलुस्कर ने संगीत जगत में एक अमर स्थान बनाया। उनके अलावा पंडित विनायक राव के अन्य महान शिष्यों में पंडित नारायण राव व्यास, उनके बेटे पंडित राव पटवर्धन के साथ ही कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन्होंने देश विदेश में ग्वालियर घराने की गायकी को फैलाया।
0: पंडित विनायक राव पटवर्धन केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहे। आजादी के बाद जब भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित कर रहा था, तब भारत सरकार ने पंडित जी को एक सांस्कृतिक दूत के रूप में चुना। सन 1954 में वो एक भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में सोवियत संघ, पोलैंड और चीन की यात्रा पर गए।
1: सोवियत संघ के बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉलों में, जहाँ पश्चिमी ओपेरा और क्लासिकल संगीत सुनने वाली भीड़ बैठती थी, जब धोती कुर्ता पहने माथे पर तिलक लगाए इस भारतीय मनीषी ने तानपुरा संभाला और अपनी बुलंद आवाज में भारतीय रागों का चमत्कार दिखाया, तो विदेशी समीक्षक अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि बिना किसी भारी ऑर्केस्ट्रा के केवल एक कंठ और तीन तारों की झनकार से कैसे पूरे हॉल को सम्मोहित किया जा सकता है। इस तरह विनायक राव ने साबित कर दिया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की भाषा सार्वभौमिक है।
0: श्रोताओं, तात्कालीन सोवियत अखबारों और सांस्कृतिक पत्रिकाओं ने लिखा था कि पंडित जी का कंठ नियंत्रण मानव क्षमता से परे प्रतीत होता है। विदेशी मीडिया ने लिखा कि केवल एक तानपुरे और तबले की संगति में एक अकेला गायक पूरे हॉल को अपनी गूंज से भर देता है। उनकी आवाज में वो प्राकृतिक बल है जिसके आगे पश्चिमी ओपेरा गायक भी नतमस्तक हो जाएं। इसके साथ ही विदेशी संगीत पत्रिकाओं ने उनके ताल और लय के साथ खेले जाने वाली चक्करदार तानों की तुलना पश्चिमी क्लासिकल म्यूजिक के जटिल रिदम पैटर्न से की। उनके लय ज्ञान की बहुत प्रशंसा हुई।
1: और हम यहाँ आपको एक दिलचस्प किस्सा भी बताना चाहेंगे। हुआ यूं कि कार्यक्रम के बाद जब सोवियत नेता उनसे मिलने पहुंचे, तो उन्होंने अचरज में पंडित जी से पूछा था कि क्या आपने अपने मुंह या गले में कोई यांत्रिकी उपकरण यानी मैकेनिकल डिवाइस छिपा रखा है जो इतनी तेज गति से आवाज निकाल रहा है। और श्रोताओं, 1984 की इस यात्रा की कवरेज करते हुए सोवियत और पूर्वी यूरोपीय समाचार पत्रों ने पंडित विनायक राव पटवर्धन और उनके दल को प्राचीन भारतीय संस्कृति का जीवंत ध्वजवाहक करार दिया। मीडिया का कहना था कि भारत केवल दर्शन और अध्यात्म का देश नहीं है, बल्कि उसके पास संगीत की एक अत्यंत वैज्ञानिक, अनुशासित और समृद्ध परंपरा है।
0: पंडित जी का पूरा जीवन सादगी और उच्च विचारों का एक जीवंत उदाहरण था। अपार धन और सम्मान मिलने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। पुणे के लोग गवाह हैं कि पंडित जी जीवन के अंतिम पड़ाव तक एक साधारण नागरिक की तरह ही रहते थे। वो कभी किसी तामझाम या अहंकार में नहीं रहे। उनके घर का दरवाजा हर उस व्यक्ति के लिए खुला रहता था जो संगीत सीखने का इच्छुक हो।
1: और उनकी वैचारिक दृढ़ता ऐसी थी कि उन्होंने संगीत के व्यवसायीकरण का हमेशा विरोध किया। वे मानते थे कि संगीत एक विद्या है, कोई वस्तु नहीं जिसे बाजार में बेचा जाए। उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय के जरिए जो भी कमाया उसे वापस संगीत के विकास और गरीब छात्रों की फेलोशिप में लगा दिया। उनकी इसी निष्काम सेवा के कारण उन्हें संगीत जगत में एक संत का दर्जा प्राप्त था।
0: दोस्तों, पंडित जी को अनेक राष्ट्रीय सम्मानों और अलंकरणों से विभूषित किया गया। उसमें से यदि हम प्रमुख सम्मानों की बात करें तो 1964 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, 1962 में हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संगीत नाटक अकेडमी से, 1967 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अकेडमी का सर्वोच्च सम्मान रत्न सदस्य, 1972 में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से भी नवाजा गया।
1: दोस्तों, पंडित विनायक राव पटवर्धन जी ने अपने जीवन काल में रंगमंच, संगीत सम्मेलनों और आकाशवाणी पर कई ऐतिहासिक प्रस्तुतियां दी। गंधर्व नाटक मंडली के दिनों में उन्होंने बाल गंधर्व के साथ शाकुंतलम, सौभद्र, संशय कल्लोल और मृचकटिक जैसे ऐतिहासिक नाटकों में मुख्य भूमिकाएं निभाई और साथ में गाया।
0: 1930 से 1950 के दशकों में पंडित विनायक राव पटवर्धन और पंडित नारायण राव व्यास की जोड़ी शास्त्रीय संगीत सम्मेलनों में बहुत प्रसिद्ध थी। दोनों गुरु भाई मिलकर जब ग्वालियर घराने की बंदिशें और तराना गाते थे तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता था। इसके साथ ही ऑल इंडिया रेडियो के ऐतिहासिक आर्काइव में मौजूद सारंगी वादक उस्ताद सबरी खान और तबला वादक पंडित प्रेम वल्लभ जैसे दिग्गज संगीत दाताओं के साथ राग केदार, राग मालगुंजी, राग नायकी कांधड़ा जैसी कालजयी रिकॉर्डिंग्स आज भी संगीत प्रेमियों के लिए अनमोल धरोहर हैं। लेकिन श्रोताओं, समय की गति अबाध है। जो सुर उसे एक दिन अनंत के मौन में विलीन होना ही था, 23 अगस्त 1975 का वो दिन भारतीय संगीत इतिहास के लिए एक गहरा शोक लेकर आया। 77 वर्ष की आयु में सुरों के इस महान शिल्पी, गंधर्व महाविद्यालय के इस अथक सारथी ने पुणे में अपनी अंतिम सांस ली।
1: विनायक राव पटवर्धन जी का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जगत में एक ऐसा सम्मानित स्थान था कि उनके समकालीन दिग्गज, उनके शिष्य और समकालीन संगीतकारों और दिग्गज संगीताचार्य उनका नाम अत्यंत श्रद्धा और आदर से लेते थे। ग्वालियर घराने की शुद्धता और गंधर्व महाविद्यालय के जरिए संगीत सेवा के लिए महान कलाकारों ने उनके बारे में क्या क्या कहा, अब हम आपको ये बताते हैं। मराठी नाट्य संगीत के महान ध्वजवाहक बाल गंधर्व का कहना था कि जब विनायक राव मंच पर गाते हैं तो वे केवल अभिनय या गाना नहीं गाते, बल्कि पूरे नाट्य ग्रह को शास्त्रीय संगीत की पवित्रता से भर देते हैं। उनकी आवाज को किसी बनावटी साधन की जरूरत नहीं, वह सीधे श्रोताओं के हृदय तक पहुंचती हैं।
0: और बाल गंधर्व जी, जिनके साथ विनायक राव जी ने गंधर्व नाटक मंडली में वर्षों काम किया, पटवर्धन जी की इस बात के मुरीद थे कि उन्होंने व्यवसायिक नाट्य मंच पर रहते हुए भी कभी अपने शास्त्रीय संगीत की शुद्धता से कोई समझौता नहीं किया। और भारतीय संगीत के महान गायक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने एक बार कहा था कि विनायक राव जी की आवाज में पहाड़ जैसी स्थिरता और बहती नदी जैसी शुद्धता है। तराना और द्रुत लय की गायकी पर उनका जो अधिकार है, वैसा हमारी पीढ़ी में किसी अन्य कलाकार के लिए हासिल करना असंभव है।
1: श्रोताओं, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के वरिष्ठ गुरु भाइयों के

0: तो उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते थे। वे कहते थे कि आज संगीत जगत में मैं जो कुछ भी हूं उसका सारा श्रेय पंडित विनायक राव पटवर्धन जी को जाता है। मेरे पूज्य पिता के जाने के बाद उन्होंने न केवल मुझे संगीत सिखाया बल्कि एक पिता की तरह मेरा पालन पोषण भी किया। उनके जाने से ग्वालियर घराने का एक स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन क्या पंडित विनायक राव पटवर्धन सचमुच चले गए? नहीं, जब तक इस देश में गंधर्व महाविद्यालय की किसी शाखा में कोई छोटा बच्चा अपना पहला सा साधेगा, जब तक राग विज्ञान के पन्नों को पलटकर कोई शोधकर्ता किसी बंदिश की तान को सुधारेगा और जब भी भारतीय संगीत के इतिहास में तराना विधा की बात चलेगी, पंडित विनायक राव पटवर्धन अपने शुद्ध स्वरों और अपनी अमर विरासत के साथ हमारे बीच जीवित रहेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा, सुर कभी मरते नहीं, वो केवल अपना माध्यम बदल लेते हैं। श्रोताओं, कला कल्लोलिनी के इस विशेष एपिसोड को अब हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और महान कला साधक की जिंदगी के अनमोल पन्नों के साथ। लेकिन इस कार्यक्रम के समापन से पहले हम अपने उन सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हैं जिनके मार्गदर्शन और प्रयास से ये कड़ियां आप तक पहुंच रही हैं।
0: इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा, और श्रोताओं मैं था आपके साथ दानिश,
1: और मैं थी मनीषा।
0: तो अब हमें दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।

बैठक का समापन हम रात भैरवी से कर रहे हैं, एक भजन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और अंत में हम कीर्तन गाएंगे और कीर्तन में आप सभी हमारा सहयोग करिएगा, तभी आनंद आएगा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार, मैं हूं सोनाली राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा। अन्याय का जवाब तलवार से ही नहीं, साहस, बुद्धिमत्ता और संकल्प से भी दिया जाता है। गौंड लोक आख्यान के महान योद्धा राजा हीरा खान सिंह छत्री की यही कहानी रविवार को ट्राइबल म्यूजियम के मंच पर जीवंत हुई। जननायक समारोह के आखिरी दिन पर प्रस्तुत नृत्य नाट्य में राजा हीरा खान सिंह के संघर्ष, शौर्य और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी गई। लड़ाई की को 40 से अधिक कलाकारों ने करीब 10 दृश्यों के जरिए मंचित किया। कथा के अनुसार राजा हीरा खान सिंह राजा कारीकामा के पुत्र थे। कारीकामा की हत्या राजा तपोसिरिया के सैनिक कर देते हैं। इस घटना का साक्षी उनका घोड़ा गिद्ध, बाय, बछेड़ा, राई, रोजिन बनते हैं। इसी घटनाक्रम के बीच हीरा खान सिंह का जन्म होता है। आगे चलकर हीरा खान को पता चलता है कि उनके पूर्वजों के साथ अन्याय हुआ था, तो वे सच जानने और न्याय पाने के लिए संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। राजा तपे सीरिया से उनका युद्ध होता है और बुद्धिमत्ता से, साहस कौशल से तपे सीरिया को हराकर पूर्वजों के अपमान का प्रतिशोध लेते हैं। वे निर्देशन नवीन सिंह ने किया, संगीत कुलदीप सारवा का रहा, आलेख योगेश त्रिपाठी ने तैयार किया। भारतीय संस्कृति, देशभक्ति और कला को समर्पित एक खूबसूरत शाम वंदे मातरम रविवार को रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप सभागार में सेलिब्रेट की गई। नटराजन परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी की ओर से आयोजित प्रस्तुति में 5 से 55 साल के 250 कलाकारों ने मंच पर एक साथ हिस्सा लिया। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का समर्पित कार्यक्रम का हर एक क्षण भारतीय संस्कृति, देश प्रेम, विविधता और राष्ट्रीय एकता से ओतप्रोत नजर आया। इसके बाद कार्यक्रम में वंदे मातरम का विशेष समूह गान हुआ, जिसमें लगभग 250 कलाकारों ने एक साथ वंदे मातरम गाया। फिर अलग अलग भारतीय नृत्य शैलियों और देशभक्ति पर आधारित नृत्य प्रस्तुतियां रखी गईं। सुरों की महफिल से रविवार को राजधानी की शाम सजी। रविंद्र भवन में सदाबहार नगमों की प्रस्तुति के साथ हिंदी सिनेमा के गायकों और उनके ही गीतों से श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान 50, 60 और 70 के दशक की धुनें गूंजी तो हर उम्र के श्रोता पुरानी यादों में खो गए। अंजनी सभागार में रविवार शाम कार्यक्रम की शुरुआत हुई। संगीतकार केदार सिंह चौहान ने लाइव म्यूजिक अरेंजमेंट दिया। गीतकार अली शाहिद ने तू ही मेरी शब सुबह है छेड़ा। तलत हसन का कभी तन्हाइयों में भी, फरत खान का ए दिल मुझे बता दे, मलय श्रीवास्तव का रिम झिम गिरे सावन और डॉक्टर रोहित का मेरे दिल ने तड़प के साथ सीधा दिल में उतर गया। यहाँ कीर्ति सूद, डॉक्टर मणि सक्सेना, सैयद मजहर अली, राजेश भट्ट और नुशूर अहमद की कव्वाली पर्दा है पर्दा ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अंतरिक्ष सिर्फ रॉकेट, ग्रह और तारों की कहानी नहीं है। अंतरिक्ष में तापमान और दबाव बदलने पर चीजें कैसे व्यवहार करती हैं, रॉकेट उड़ता कैसे और अंतरिक्ष में वस्तुओं के साथ क्या होता है, इन सवालों के जवाब बच्चों को किताबों से नहीं बल्कि प्रयोग करके समझाए गए। मौका था आंचलिक विज्ञान केंद्र में 19 से 23 अगस्त तक आयोजित तृतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 के कार्यक्रमों का। आखिरी दिन रविवार को बच्चों ने बनाए और साथ ले जाएं एक्टिविटी में साइंस मॉडल खुद तैयार किए। इससे उन्हें किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को सिर्फ देखने के बजाय उसे बनाकर और प्रयोग करके समझने का मौका मिला। राखी पर अब गिफ्ट का मतलब सिर्फ मिठाई, कपड़े या पारंपरिक उपहार नहीं रह गया है। लोग ऐसे गिफ्ट तलाश रहे हैं जो उपयोगी होने के साथ अलग हों और जिनमें देने वाले की पसंद और अपनापन भी नजर आए। अब महिला उद्यमियों के इनोवेटिव और पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स फेस्टिव गिफ्टिंग की नई पसंद बनकर उभरे हैं। मानस भवन में 4 दिवसीय राखी रनवे में यह खास ट्रेंड देखने को मिला। यहाँ महिलाओं ने फैशन, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, लाइफ स्टाइल और पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स के साथ ऐसे आइडिया भी पेश किए जिन्हें क्रिएटिव डिजाइन से जोड़ा गया था।
हिंदी भवन में रविवार को 31वीं पावस व्याख्यानमाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में साहित्य, अध्यात्म और सामाजिक समरसता पर बात हुई। अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने की। कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश देवदत्त माधव धर्माधिकारी ने न्याय का अनकहा सफर पुस्तक और अक्षरा का कैलाश चंद्र पंत विशेषांक का लोकार्पण किया। तुलसी साहित्य अकादमी में रविवार को सृजन श्रृंखला 60 के तहत पंडित हरिशंकर दुबे के काव्य संग्रह शिव विविधावली का लोकार्पण हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अशोक निर्मल, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सज्जन लाल भट्ट, डॉक्टर राजेश तिवारी और संयोजक सुरेश बटवा रहे। शास्त्रीय संगीत के रागों से अमृत वर्षणी रागमाला दृश्या वाकिफ कराएगी। इस किताब का विमोचन किया गया। यह इंजीनियर कृष्ण फड़के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक में रागों के आरोह अवरोह, वादी, संवादी और गायन समय की विस्तृत जानकारी दी गई है। युवा चित्रकार नीलिमा चौहान द्वारा राजपूत शैली में बनाए गए आकर्षक चित्र भी शामिल हैं। समारोह में पंडित बलवंत पौराणिक, वीणा खाड़ेकर और हेमंत मुक्तिबोध सहित कई संगीत प्रेमी उपस्थित थे। तो ये थी आज की परिक्रमा। सुनते रहिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: दीन मोहम्मद, लेखक, रसोईया और राजाओं का शैम्पूइंग सर्जन। 1794 में पटना के एक व्यक्ति ने अंग्रेजी साहित्य के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। शेख दीन मोहम्मद ने द ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद प्रकाशित की, जिससे वे अंग्रेजी भाषा में किताब लिखने वाले पहले भारतीय लेखक बन गए। लेकिन उनकी असाधारण कहानी प्रिंटिंग प्रेस से बहुत दूर शुरू हुई थी। मात्र 10 वर्ष की आयु में वे ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सर्जन के सहायक के रूप में शामिल हुए और अंततः कैप्टन के पद तक पहुंचे। 1784 में वे आयरलैंड के कॉक शहर गए, जहां उन्होंने एक आयरिश महिला के साथ भागकर शादी की और 1807 में लंदन आने से पहले 2 दशक एक रियासत के प्रबंधन में बिताए। वहां वे खानपान की दुनिया के पद प्रदर्शक बने और 1810 में हिंदुस्तानी कॉफी हाउस खोला, जो लंदन का पहला भारतीय मालिकाना हक वाला रेस्टोरेंट था। भारत से लौटे अमीर अंग्रेजों के लिए इसे भारत के एक टुकड़े के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें बांस की बेत वाले सोफे और हुक्का पीने के लिए विशेष कमरे थे, जिसने नशे के अधिकार को एक उच्च सामाजिक शिष्टाचार में बदल दिया। हालांकि उनका सबसे दिलचस्प परिवर्तन ब्राइटन के तट पर हुआ। खुद को शैम्पूइंग सर्जन के रूप में नया नाम देते हुए उन्होंने ब्रिटेन को औषधीय वाष्प स्नान और मालिश की भारतीय चिकित्सीय कला से परिचित कराया। उनके उपचार इतने लोकप्रिय हुए कि उन्हें राजा जॉर्ज चतुर्थ और विलियम चतुर्थ के निजी सर्जन के रूप में नियुक्त किया गया। आज ब्रिटिश इतिहास में उनकी विरासत इतनी महत्वपूर्ण है कि उनकी कहानी यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता परीक्षा का हिस्सा है। ये साबित करता है कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अंग्रेजी भाषा पर महारत हासिल की, अंततः उसी ने ब्रिटिश संस्कृति के मर्म को परिभाषित किया।

जोसेफ एमिन, लंदन की सड़कों से आज़ादी के सपने तक का सफ़र। अगस्त 1751 में जोसेफ एमिन नाम का एक व्यक्ति लंदन के वापिंग बंदरगाह पर उतरा, जिसके पास संपत्ति के नाम पर केवल 4 शर्ट और 4 मोटे अंत वस्त्र थे। वे दोहरी मार झेला हुआ एक शरणार्थी था, जो पहले फारसी अत्याचारियों से बचकर कलकत्ता भागा और फिर कलकत्ता से लंदन पहुंचा। एमिन एक ऐसे सपने के साथ आया था जो असंभव लगता था। वे अपने प्रिय आर्मेनिया को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी लोकतांत्रिक आदर्शों का उपयोग करना चाहता था। जीवित रहने के लिए इस भावी विद्वान ने ड्रूरी लेन में एक ईंट ढोने वाले मजदूर, एक कुली और यहाँ तक कि एक किराने की दुकान पर अकुशल सहायक के रूप में काम किया। वह लंदन की सड़कों पर बेसहारा था और उसने घर लौटने के लिए अपने पिता के पैसे लेने से इनकार कर दिया था। फिर एक रविवार की दोपहर सेंट जेम्स पार्क में उसकी किस्मत बदल गई। वहां उसकी मुलाकात एडमंड बर्क नामक एक युवा आयरिश वकील से हुई। बर्क ने उसके भीतर एक तड़प को पहचाना और उसे अपने संरक्षण में ले लिया, जहां उन्होंने एमिन को राजनीतिक दर्शन और अंग्रेजी कुलीन वर्ग से परिचित कराया। एमिन का परिवर्तन बिजली की गति से हुआ। ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड और कम्बरलैंड के समर्थन से उन्होंने वूलविच की रॉयल मिलिट्री अकेडमी में दाखिला लिया और ज्ञानोदय यानी इनलाइटमेंट के सैनिक बनने का प्रशिक्षण लिया। अंततः वे अंग्रेजी सेना में शामिल हुए, फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़े और जॉर्जिया में एक राजनयिक बने, जहां उन्होंने अपने साथी आर्मेनियाई लोगों को स्वतंत्र करने के साहसी प्रस्ताव पेश किए। जोसेफ एमिन दुनिया के दो छोरों के बीच एक सेतु थे। 1792 की उनकी आत्मकथा में दर्ज उनका जीवन ये सिद्ध करता है कि लंदन में रहने वाले शुरुआती भारतीय केवल नौकर नहीं थे, बल्कि वे दूरदर्शी थे जिन्होंने शहर के क्रांतिकारी विचारों में अपनी मातृभूमि के नक्शे को फिर से लिखने के औजार देखे थे।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आजाद हिंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को इतिहास का प्यार भरा नमस्कार।
1: आजाद हिंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को तारीख का प्यार भरा नमस्कार।
0: अच्छा तारीख, एक बात बताओ, क्या तुम्हें राम रेखा की याद है?
1: हाँ, उस वीर क्रांतिकारी को कौन भूल सकता है। इतिहास, प्रथम विश्व युद्ध का समय था। अमेरिका की गदर पार्टी की लहर पूरे अमेरिका और कनाडा में फैल रही थी। राम रेखा उस ब्रिगेड के सदस्य थे जिसे गदर पार्टी ने पूरब में विद्रोह भड़काने के लिए तैयार किया था।
0: अच्छा।
1: और तुम तो जानते ही हो, गदर पार्टी साहित्य भेजकर, आदमी भेजकर और हथियार भेजकर पूरा प्रयत्न कर रही थी कि पूर्वी देशों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भूमिका रच दी जाए।
0: हाँ, इन लोगों को निर्देश देने के लिए गदर पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ता पंडित सोहनलाल पाठक पहले ही अमरीका से चल पड़े थे। बर्मा के मांडले नगर में उन्हें राम रेखा और उनके साथियों से मुलाकात करनी थी। राम रेखा के ब्रिगेड में कुल 4 भारतीय क्रांतिकारी साथी थे, जयपुर के मुस्तफा हुसैन, लुधियाना के अमर सिंह, फैजाबाद जिले शहजादपुर के अली अहमद सादिक और होशियारपुर से खुद राम रेखा।
1: नियत तिथि पर नियत स्थान पर राम रेखा के ब्रिगेड से पंडित सोहनलाल पाठक के साथ मुलाकात हुई। पंडित सोहनलाल पाठक ने उन्हें आवश्यक निर्देश और कार्य योजना समझाई, पर दुर्भाग्य से क्रांति का प्रचार कार्य करते हुए पंडित सोहनलाल पाठक बर्मा में ही गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें मृत्युदंड दिया गया। बर्मा के गवर्नर जनरल ने पंडित पाठक के सामने शर्त रखी, यदि तुम माफी मांग लो तो प्राण दान दे दिया जाएगा। प्रत्युत्तर में पंडित पाठक ने एक ऐतिहासिक जवाब दिया, जुल्म और अन्याय अंग्रेजों की तरफ से हो रहा है, माफी मांगनी हो तो गवर्नर साहब को माफी मांगनी चाहिए, ना कि मुझको।
0: उन्हें जनवरी 1916 में फांसी पर लटका दिया गया। फांसी के तख्ते पर खड़े पंडित पाठक से पुनः माफी मांगने को कहा गया तो अमर शहीद सोहनलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब जरा भी देर मत करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करने दो और अमृतसर का यह नवयुवक क्रांतिकारी वतन से मीलों दूर देश के लिए शहीद हो गया। पंडित सोहनलाल पाठक की शहादत राम रेखा ब्रिगेड के दिलों में अमर प्रेरणा बन करके नया उत्साह भर गई।

0: पंडित पाठक ने भारतीय सेनाओं को विद्रोह के लिए उकसाने के लिए राम रक्खा को एक सशक्त तर्क दे दिया था, जिसे वे भारतीय सेनाओं के बीच पहुंचकर बड़ी शिद्दत के साथ दोहराया करते थे। भाइयों, आप अंग्रेजों के लिए क्यों फिजूल में जान देते हो? यदि तुम्हें जान देनी ही है तो देश के लिए मरो। तुम्हारी भुजाओं के बल से देश को आजादी मिले, यही अच्छा है। राम रक्खा के उद्बोधन का बड़ा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा था।
1: हाँ, राम रक्खा ब्रिगेड वर्मा के मांडले नगर में विद्रोह की नई योजना में संलग्न हो गई। क्रांतिकारी मुस्तफा हुसैन ने प्रस्ताव रखा कि आने वाली बकरीद को हम अंग्रेजों पर हमला करके उन्हें भारी नुकसान पहुँचाएंगे। सभी ने इस प्रस्ताव को अपना पूर्ण समर्थन दिया। योजना का कार्यभार मुस्तफा हुसैन को ही सौंप दिया गया। वैसे भी राम रक्खा की तरह ही मुस्तफा हुसैन भी अत्यंत तेज तर्रार क्रांतिकारी थे। वे अपनी पहचान छिपाने में माहिर थे। कहीं वे अपना नाम मूलचंद बताते तो कहीं महमूद जफर।
0: सन 1915 की बकरीद का दिन निश्चित कर राम रक्खा ब्रिगेड अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने में जुट गई। भारत, वर्मा और सिंगापुर के क्रांतिकारियों से सक्रिय संपर्क बनाए हुए ये लोग बर्मा स्थित अंग्रेजी फौज के भारतीय अफसरों एवं सैनिकों को विद्रोह के लिए तैयार करने लगे।
1: राम रक्खा ब्रिगेड ने विद्रोह के लिए बकरीद का दिन निश्चित तो कर दिया था, पर इसके लिए पर्याप्त मात्रा में हथियारों की आवश्यकता थी, क्योंकि हथियारों की तैयारी समय पर पूरी नहीं हो सकी थी। अतः विद्रोह की तारीख आगे दिसंबर तक बढ़ा दी गई। सोचा, दिसंबर में अंग्रेजों का बड़ा त्योहार क्रिसमस पड़ता है। अंग्रेजों के इस बड़े त्योहार बड़े दिन के रोज ही विद्रोह की शुरुआत करके अंग्रेजों का कत्लेआम किया जाएगा और इस तरह भारत पर बलपूर्वक अधिकार जमाने का बदला ले लिया जाएगा।
0: इस योजना को सफल बनाने के लिए फौज को विश्वास में लेना भी जरूरी था। इसके लिए मुश्तबा हुसैन के फौज के एक सूबेदार के साथ के संबंधों का उपयोग किया गया। सूबेदार इस बात के लिए राजी हो गया कि जब फौज को बर्मा के बाहर भेजने की आज्ञा दी जाए तो वे उस आज्ञा को मानने से इनकार करते हुए विद्रोह कर देगा।
1: आखिर वह दिन भी आ गया। फौज को एक नए मोर्चे पर जाने का आदेश हुआ। सूबेदार ने ये आदेश मानने से इनकार कर दिया, पर फौज विद्रोह नहीं कर पाई। कारण, वहाँ भारी संख्या में अंग्रेजों की गौरी सेना तैनात थी। सूबेदार का कोर्ट मार्शल हुआ, उसे गोली से उड़ा देने के आदेश हुए। सूबेदार टारगेट पर खड़ा था, भारी संख्या में गोरे सिपाहियों के पहरे में शूटर निशाना साधे खड़ा था। तभी सूबेदार ने चिल्लाकर कहा, मुझे अपनी मौत का कोई अफसोस नहीं है। मैं जानता हूँ मेरा कोई हिंदुस्तानी भाई मेरी मौत का बदला अवश्य लेगा।
0: सूबेदार शहीद हो गया। उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए योजना बनाई गई। जिस गोरे कमांडेंट ने सूबेदार को गोली मारी, उसके अर्दली को सूबेदार की मौत का बदला लेने के लिए तैयार किया गया। कमांडेंट के हिंदुस्तानी अर्दली ने अगले ही दिन कमांडेंट को गोली से उड़ाकर अपने हिंदुस्तानी भाई की अंतिम इच्छा पूरी करके उसकी मौत का बदला ले लिया।
1: अपने मालिक की हत्या करने के जुर्म में अर्दली का कोर्ट मार्शल हुआ और उसे भी गोली से उड़ा दिया गया। होने वाला विद्रोह तो दबा दिया गया, पर सूबेदार द्वारा आदेश की अवज्ञा और अर्दली द्वारा अपने ही अधिकारी कमांडेंट की हत्या करना खतरे की बड़ी चुनौती थी। सो अंग्रेज सेना सतर्क हो गई। खुफिया तंत्र को इस सारे षड्यंत्र की तहकीकात जानने और इसके पीछे उत्तरदायी क्रांतिकारियों को शीघ्रता से पकड़ने के आदेश दे दिए गए।
0: सारा खुफिया तंत्र तहकीकात में जुट गया। शीघ्र ही उन्होंने पता लगा लिया कि सारे षड्यंत्र के पीछे क्रांतिकारियों का एक गुट है। शीघ्र ही सुराग लगाकर इन क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हो गई। एक एक करके राम रक्खा ब्रिगेड के चारों सदस्य मुश्तबा हुसैन, अमर सिंह, अली अहमद सादिक और राम रक्खा गिरफ्तार कर लिए।

0: 1917 में मांडले षड्यंत्र केस की सुनवाई प्रारंभ हुई। अंग्रेज सरकार के पास षड्यंत्र के ठोस सबूत थे। राम रखा और उनके साथियों ने षड्यंत्र की बात गर्व के साथ स्वीकार की और इसे अपना नैतिक अधिकार बताया। न्यायाधीश ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह के षड्यंत्र के जुर्म में चारों क्रांतिकारियों राम रखा, मुश्तबा हुसैन, अमर सिंह और अली अहमद सादिक को मृत्युदंड सुनाया। बाद में गवर्नर जनरल की आज्ञा से मृत्युदंड आजीवन कारावास में बदल दिया गया। आजीवन कारावास के लिए चारों क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया।
1: राम रखा को अंडमान की सेलुलर जेल में रखा गया। राम रखा शरीर से काफी हष्टपुष्ट तो थे ही, इरादों के भी पक्के थे। उन्हें अन्याय जरा भी बर्दाश्त नहीं होता था, चाहे अन्याय किसी के भी विरुद्ध क्यों न हो।
0: आजीवन कारावास के दौरान उन्हें जो भी काम दिया जाता वे पूरी ईमानदारी से नियत समय पर पूरा कर देते।
1: कारावास में कैदियों के साथ अन्याय और जुल्म होना तो सामान्य बात थी। जब जेल अधिकारियों का अत्याचार बर्दाश्त से बाहर हो गया तो राम रखा ने जेल के अधिकारियों के अत्याचार के खिलाफ अनशन प्रारंभ कर दिया। जेल अधिकारियों और डॉक्टरों ने नली डाल करके उनके पेट में भोजन पहुंचाने के अथक प्रयत्न किए, पर वे सफल नहीं हो सके। उनके सभी प्रयत्न निष्फल हो गए। राम रखा अनशन पर डटे रहे और संघर्ष करते रहे।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की, और गीत लिए गए थे स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जारी ऑडियो एल्बम जन गर्जे से।
3: और अब दीजिए हमें इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: जोआओ डी बैरोस ब्रिटिश और बर्मी साम्राज्य के बीच एक पुर्तगाली जमींदार। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय इतिहास के सबसे विस्फोटक शरणार्थी संगठनों में से एक को संभालने के लिए पुर्तगाली मूल के एक जमींदार पर भरोसा किया था। ये कहानी है जोआओ डी बैरोस की, जिनकी चटगांव सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित जागीर ब्रिटिश कंपनी और विस्तारवादी बर्मी साम्राज्य के बीच एक उच्च स्तरीय राजनयिक गतिरोध का केंद्र बन गई थी। ये नाटक सन 1785 में शुरू हुआ, जब अराकान पर बर्मी आक्रमण के बाद हजारों शरणार्थी ब्रिटिश कब्जे वाले चटगांव की ओर भागने लगे। इन हताश लोगों में केवूटी जैसे उच्च पदस्थ राजनीतिक विद्रोही और अराकान के दिवंगत राजा का परिवार भी शामिल था। तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर

चार्ल्स क्रॉफ्ट्स उलझन में थे। वे इन शरणार्थियों को जिले के कम आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में बसाने के लिए संभावित श्रम शक्ति के रूप में चाहते थे, लेकिन उनके पास उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य संसाधन नहीं थे। लिमिटेड राज की स्थानीय सहयोगियों पर निर्भरता को दर्शाते हुए क्रॉफ्ट्स ने इन शाही शरणार्थियों को जोआओ डी बैरोस के घर में ठहराया। एक पुर्तगाली जमींदार के पास उन्हें रखकर कंपनी डी बैरोस को एक मानव ढाल और प्रशासनिक बफर के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि बर्मी जनरल वानकेचा, जिसने अभी अभी अराकान जीता था, इस व्यवस्था से नहीं डरा। उसने क्रॉफ्ट्स को धमकी भरे पत्रों की एक श्रृंखला भेजी, जिसमें केवुटी और उनके अनुयायियों को तुरंत सौंपने की मांग की गई। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ जब अंग्रेजों ने बर्मी जनरल की धमकी को हल्के में लिया? क्रॉफ्ट्स ने शुरू में चटगांव बटालियन का एक हिस्सा नाफ नदी के मुहाने पर भेजा, लेकिन प्रांत के सुदूर कोनों में अनिश्चित काल के लिए सेना रखने का खर्च वो नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने जल्द ही उन्हें वापस बुला लिया। कमजोरी के इस संकेत को देखकर वानकेचा ने कंपनी के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और कंपनी की कई बंगाली प्रजा को मार डाला। शरणार्थियों को जल्द ही एहसास हो गया कि जोआओ डी बैरोस की शरण स्थली केवल खोखलेवादों का एक जाल थी। वे पहाड़ियों में भाग गए। केवुटी को अंततः बर्मी लोगों ने पकड़ लिया और मार डाला। अपनी मृत्यु से पहले उसने ब्रिटिश शासन पर एक मार्मिक आरोप लगाया। उसने कहा, जो लोग सुरक्षा के लिए भागे थे, उन्हें वो सुरक्षा और संरक्षा नहीं मिली जिसकी वे अंग्रेजों से उम्मीद कर रहे थे। डी बैरोस की देखरेख में मौजूद लोगों की रक्षा करने में विफलता के विनाशकारी परिणाम हुए। सुरक्षा की उम्मीद खो चुके कई शरणार्थी जीवित रहने के लिए लुटेरे और डाकू बन गए। इसी अराजकता के कारण सन 1787 में एक ब्रिटिश नागरिक जेम्स रवि की कुख्यात हत्या हुई। जोआओ डी बैरोस की कहानी हमें एक दिलचस्प सबक सिखाती है। विचारों के साम्राज्य में जब कोई राज्य अपने सबसे कमजोर मेहमानों की रक्षा करने में विफल रहता है, तो वो केवल अपना सम्मान ही नहीं खोता, वो अपनी सीमाओं पर व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता भी खो देता है।

0: नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदी के महान लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हैं। ये हिंदी के पहले रचनाकार थे श्रोताओं, जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। उनकी व्यंग रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी पैदा ही नहीं करती, बल्कि उन्हें सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा कर देती हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग असंभव ही है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को हरिशंकर परसाई जी ने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने हमेशा विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है और उनकी भाषा शैली में भी श्रोताओं एक खास प्रकार का अपनापन नजर आता है। चलिए श्रोताओं, अब सबसे पहले हम बात करते हैं हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय के बारे में।
0: हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी नामक गांव में हुआ था। गांव से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे नागपुर चले गए। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए हिंदी की परीक्षा पास की और कुछ दिनों तक उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन प्रारंभ कर दिया और फिर जबलपुर से साहित्यिक पत्रिका वसुधा का प्रकाशन भी किया, परंतु घाटा होने के कारण उसे उन्होंने बंद कर दिया।
1: श्रोताओं, हरिशंकर परसाई जी ने खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते हुए मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को बहुत ही निकटता से पकड़ा। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन था, जिसमें पाठक यह महसूस करता था कि लेखक उसके सामने ही बैठा हुआ है।
0: मात्र 18 वर्ष की ही उम्र में हरिशंकर जी ने जंगल विभाग में नौकरी की। वे खंडवा में 6 माह तक बतौर अध्यापक भी नियुक्त हुए थे। उन्होंने 2 वर्ष यानी 1941 से 1943 में जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य का अध्ययन किया। 1943 से हरिशंकर जी वहीं मॉडल हाई स्कूल में अध्यापक हो गए।
1: और श्रोताओं, इसके बाद हरिशंकर परसाई जी ने जबलपुर शहर में सन 1945 से लेकर के 1946 के आसपास एक छोटे अखबार प्रहरी में लिखना शुरू कर दिया और परसाई जी की पहली रचना स्वर्ग से नर्क जहां तक है, जो कि मई 1947 में प्रहरी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ पहली बार जमकर के लिखा था।
0: वर्ष 1952 में हरिशंकर परसाई जी ने मॉडल हाई स्कूल जबलपुर की सरकारी नौकरी छोड़ दी और वर्ष 1953 से 1957 तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। 1957 में उन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। जबलपुर से वसुधा नामक की साहित्यिक मासिक पत्रिका भी हरिशंकर परसाई जी ने ही निकाली थी। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री ज्ञान रंजन जी का कहना है कि यदि आज परसाई जी होते तो बहुत से लेखक अपनी पोथियां छपवाते हुए भी उनसे आंख नहीं मिला सकते थे। श्रोताओं, सुप्रसिद्ध साहित्यकार त्रिलोक सिंह जी का कहना है कि परसाई जी ने जो कहा वो किया और परसाई जी को साफ गोई पसंद थी और वो बिल्कुल साफ बोलते थे। सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार परसाई जी ने व्यंग को मनोरंजन के परकोटे से बाहर निकालते हुए लोगों की आंखें खोलने और कान खड़े करने का बाण बनाया है।
1: तो श्रोताओं, ये तो था हरिशंकर परसाई जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। चलिए अब हम बात करते हैं उनके साहित्य परिचय के बारे में। हरिशंकर परसाई जी पाठकों के लेखक थे और उन्हें लेखक बनाने में सर्वाधिक योगदान अखबारों का ही था। उनकी कलम की धार को साहित्यकार बहुत देर से समझ पाए। कबीर जी हरिशंकर परसाई जी के गुरु थे। परसाई जी कहते थे व्यंग तो उनकी स्प्रिट है और स्प्रिट शब्द का प्रयोग भी उन्होंने ही किया है। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय सारे देश में आदर्शवादिता का जज्बा कायम था। लोगों के नए नए अरमान थे, वे देश और साहित्य के लिए समर्पित थे।
0: प्रहरी अखबार में हरिशंकर परसाई जी की रचना पैसे का खेल प्रकाशित हुई और इसके बाद धोखा, भीतर के घाव, भूख के स्वर, स्मारक, जिंदगी और मौत, दुख का ताज जैसे एक से बढ़कर एक उनकी रचनाएं प्रकाशित हुईं, जो कि बहुत भाव प्रधान थी, जिनमें गरीबी की छाप स्पष्ट दिखाई देती थी। नौकरी से त्याग पत्र देकर हरिशंकर परसाई जी ने कम साधन होते हुए भी लेखन के क्षेत्र में पदार्पण किया, जो साहित्यकार गरीबों और पिछड़ों के लिए चिंतन करता है और उनके हितों को ध्यान में रखकर लेखन कार्य करता है, वो ही दूरदृष्टि का मालिक होता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्रोताओं, धार्मिक खोखला पाखंड हरिशंकर परसाई जी के लेखन का पहला प्रिय विषय था। हरिशंकर परसाई जी कार्ल मार्क्स से ज्यादा प्रभावित थे। परसाई जी की प्रमुख रचनाओं में सदाचार का ताबीज प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जिसमें रिश्वत लेने देने और मनोविज्ञान को उन्होंने प्रमुखता के साथ उकेरा है। और जिस तरह से अर्जुन को चिड़िया की एक आंख दिखती थी, ठीक उसी तरह से परसाई जी को शोषितों की कतार दिखती थी।
0: जिस स्थान पर अमन चैन हो वहां पुलिस वाले कैसे अशांति फैला रहे हैं और कैसे भ्रष्टाचार फैल रहा है, इसे लेकर परसाई जी की रचना इंस्पेक्टर माता दीन लोकप्रिय रचनाओं में से एक है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि परसाई जी की रचना पहले के समय में भी प्रासंगिक थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। परसाई जी के लेखन से पता चलता है कि परसाई जी की दृष्टि कितनी साफ थी। वो चीजों के आर पार देखते थे। उनकी निगाह स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भी रहती थी।
1: व्यंग लेखन में वे किसी को बख्शते नहीं थे। उनका व्यंग तिल मिला देने वाला होता था। परसाई जी ने व्यंग को हिंदी लेखन में प्रतिष्ठा दिलाई। उनका लेखन सामाजिक घटनाओं पर आधारित रहता था। कुछ लोग इसे तत्कालीन लेखन मानते थे और कहते थे कि परसाई जी को कुछ कालजयी लिखना चाहिए, यानी शाश्वत साहित्य। और इस पर परसाई जी का कहना था, मैं शाश्वत साहित्य रचने का संकल्प लेकर के लिखने नहीं बैठा हूं। जो अपने युग के प्रति ईमानदार नहीं रहता, वे अनंत काल के प्रति कैसे हो लेता है, मेरी समझ से परे है ये चीज।
0: श्रोताओं, परसाई जी ने अपनी नौकरी छोड़कर लिखना शुरू किया। नौकरी छोड़ते ही तमाम परेशानियां आईं, लेकिन वे कभी भी विचलित नहीं हुए। वो हमेशा ही लिखते रहे। फिर तो ऐसा हुआ कि जिस अखबार और पत्रिका में उन्होंने लिखा उसका सर्कुलेशन बढ़ गया। परसाई जी जबलपुर रायपुर से निकलने वाले अखबार देशबंधु में पाठकों के प्रश्नों के उत्तर देते थे और उस स्तंभ का नाम था पूछिए परसाई से। पहले तो इस स्तंभ में हल्के फुल्के इश्किय और फिल्मी सवाल ही पूछे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे परसाई जी ने लोगों को गंभीर सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों की ओर आकर्षित किया। दायरा अंतर्राष्ट्रीय हो गया। ये सहज शिक्षा थी। लोग उनके सवाल जवाब पढ़ने के लिए अखबार का इंतजार करने लगते थे।
1: हाँ, परसाई जी कहते थे कि मैं सुधार के लिए नहीं बदलने के लिए लिखता हूँ। वे यह भी मानते थे कि सिर्फ लेखन से क्रांति नहीं होती, लेकिन हाँ, उनकी भावभूमि जरूर बन सकती है। वे कहते थे कि मुक्ति कभी अकेले नहीं होती। नौजवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है, मेरे बाद की और उसके बाद की ताजा ओजस्वी तरुण पीढ़ी से भी मेरे संबंध है। नए से नए लेखक से मेरी दोस्ती है। मैं जानता हूं कि इसमें से कुछ कॉफी हाउस में बैठ करके कॉफी के कप में सिगरेट बुझाते हुए कविता और कविता की बात करते हैं। मैं इन तरुणों से कहता हूं कि अपने बुजुर्गों की तरह अपनी दुनिया को छोटी मत करो। यह मत भूलो कि इन बुजुर्गों साहित्यकारों में अनेकों ने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे वर्ष जेल में गुजारे हैं।
0: उन्होंने कहा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी और दर्जनों ऐसे कवि हैं जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़े। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां जो फांसी पर चढ़े, वे भी कवि थे। लेखक को कुछ हद तक एक्टिविस्ट होना चाहिए। सुब्रमण्यम भारती कवि और एक्टिविस्ट दोनों ही थे। दूसरी बात ये कि कितने ही अंतर विरोधों से ग्रस्त है ये विशाल देश, और कोई देश अब तक अकेले अपनी नियति नहीं तय कर सकता। सब कुछ अंतरराष्ट्रीय हो गया है। ऐसे में देश और दुनिया से जुड़े बिना एक कोने में बैठे कविता और कहानी में ही डूबे रहोगे तो अपनी सोच को सीमित ही रख पाओगे।
1: श्रोताओं, एक बात बताऊं आपको, प्रेमचंद जी के बाद हिंदी के दूसरे लोकप्रिय लेखकों में हरिशंकर परसाई जी सबसे अग्रणी हैं। दोनों की लेखकीय प्रतिष्ठा पाठकों की ओर से आई है और पाठकों ने उन्हें बहुत सराहा है, परंतु साहित्य कीर्ति धारकों की निगाह में इनकी कद्र कुछ दिन बाद हुई। श्रोताओं, परसाई जी के व्यंग लेखों को नई दुनिया, देशबंधु, नवीन दुनिया, अमर उजाला, नवयुग, हिंदी करंट जैसे अखबार और पत्रिकाएं, सारिका, हिंदुस्तान, धर्मयुग, कल्पना आदि ने खूब छापा है।
0: सारिका पत्रिका के संपादक मानते थे कि परसाई जी के कॉलम छपने से पत्रिका के प्रसार की संख्या बढ़ती है। अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे प्रकाशकों ने परसाई जी की पुस्तिकाएं छापनी शुरू की, जो रचनावली तक जारी रही। उनकी मृत्यु के बाद भी प्रकाशकों की राय में परसाई जी की किताबों और उनकी रचनावली की बिक्री लगातार बढ़ी। पाखंड, बेईमानी आदि पर परसाई जी ने अपने व्यंगों से गहरी चोट की।
1: तो श्रोताओं, ये तो परिचय था हरिशंकर परसाई जी की साहित्य शैली का। चलिए अब कुछ बात करते हैं उनकी भाषा शैली के बारे में। परसाई जी बोल चाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते थे। परसाई जी की भाषा में व्यंग की प्रधानता थी और उनके एक एक शब्द में व्यंग के तीखेपन को स्पष्ट देखा जा सकता था। जैसे, इस देश में बुद्धिजीवी शेर हैं, पर वे सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं। वाह, क्या बात है। अच्छी आत्मा फोल्डिंग कुर्सी की तरह होनी चाहिए, जरूरत पड़ी तब फैला करके बैठ गए और नहीं तो मोड़ करके कोने में टिका दी।
0: क्या बात है। श्रोताओं, हरिशंकर परसाई जी ने हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया। परसाई जी की अलग अलग रचनाओं में ही नहीं बल्कि किसी एक रचना में भी भाषा, भाव और भंगिमाओं के अनुसार अलग अलग रूप और अनेक स्वर देखे जा सकते हैं। प्रसंग बदलते ही उनकी भाषा शैली में जिस तरह सहजता से भाव बदलते जाते हैं, जिससे एक व्यंग उद्देश्य की भी पूर्ति होती है, परसाई जी की ये कला सबको चकित कर देती थी।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्रोता, परसाई जी की एक रचना की यह पंक्तियां कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर में सूफियाना अंदाज है, तो वहीं दूसरी ओर ठेठ सड़क छाप दवा फरोश की यह बाकी अदा भी दर्शनीय है कि निंदा में विटामिन और प्रोटीन होते हैं। निंदा खून को साफ करती है, पाचन क्रिया ठीक करती है और बल और स्फूर्ति देती है। निंदा से मांसपेशियां पुष्ट होती हैं और निंदा पायरिया का तो शर्दिया इलाज है।
0: श्रोताओं, संतों का प्रसंग आने पर हरिशंकर जी का शब्द वाक्य संयोजन और शैली सभी कुछ एकदम बदल जाता है। उसका एक उदाहरण सुनिए। संतों को परनिंदा की मनाही होती है, इसीलिए वे स्वनिंदा करके स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं। मौसम कौन कुटिल खलकामी, ये संत की विनय और आत्म स्वीकृति नहीं है बल्कि टॉनिक है। संत बड़ा काइया होता है, हम समझते हैं कि वो आत्म स्वीकृति कर रहा है, पर वास्तव में वो विटामिन और प्रोटीन खा रहा है।
1: वाह, क्या बात है। और श्रोताओं, एक अन्य रचना में वे पैसे में बड़ा विटामिन होता है लिख करके ताकत की जगह विटामिन शब्द में एक प्रभाव पैदा कर देते हैं। जब वे लिखते हैं कि उनकी बहू आई और बिना कुछ कहे दही बड़े डाल करके झम से लौट गई, तो इस झम से लौट जाने की ही झम झम पायल बजाती हुई नई नवेली बहू द्वारा तेजी से थाली में दही बड़े डाल करके लौटने की समूची क्रिया साकार हो जाती है।
0: श्रोताओं, ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज इस देश में ऐसा कोई लेखक दिखाई नहीं देता जो ऐसा साहित्य सृजित करे जो कि आम आदमी के सिर चढ़कर बोले। कवि नागार्जुन ने भी परसाई जी पर एक कविता लिखी थी, वाणी ने पाए प्राणदान। श्रोताओं, उस रचना की एक पंक्ति है, सदियों तक कुंद नहीं होंगे गुरु परसाई के वचन बाण।
1: श्रोताओं, बाबा नागार्जुन शब्द पारखी थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि भारत में शब्द वचन बनकर के प्रमाणिक होते हैं, इसलिए उन्होंने परसाई जी के वाक्यों को शब्द बाण की उपमा दी थी। जैसे ये पंक्ति, किसी निर्देश पर चलना नहीं स्वीकार मुझको, नहीं है पद चिन्ह का आधार भी दरकार मुझको, ले निराला मार्ग उस पर सींच जल कांटे उगाता, और उनको रौंदता हर कदम में आगे बढ़ता, शूल से है प्यार मुझको फूल पर कैसे चलूं मैं, फूल पर कैसे चलूं मैं, फूल पर कैसे चलूं।
0: और इसके आगे वो लिखते हैं, बांध बाती में हृदय की आग, चुप जलता रहे जो, और तम से हार कर चुपचाप सिर धुनता रहे जो, जगत को उस दीप का सीमित निबल जीवन सुहाता, ये धधकता रूप मेरा विश्व में भय ही जगाता, प्रलय की ज्वाला लिए हूँ दीप बन कैसे जलूं मैं, प्रलय की ज्वाला लिए हूँ दीप बन कैसे जलूं मैं, जग दिखाता है मुझे रे राह मंदिर और मठ की, एक प्रतिमा में जहां विश्वास की हर सांस अटकी, चाहता हूं भावना की भेंट मैं कर दूं अभी तो, सोच लूं पाषाण में भी प्राण जागेंगे कभी तो, सोच लूं पाषाण में भी प्राण जागेंगे कभी तो, पर स्वयं भगवान हूं इस सत्य को कैसे छलूं मैं, इस सत्य को कैसे छलूं मैं।
1: वाह क्या बात है। श्रोताओं, परसाई जी विशेषकर व्यंग लेखक थे, पर उनका व्यंग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, उन्होंने अपने व्यंग के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर खींचा है जो हमारे जीवन को दुभर बना रही हैं। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण पर करारा व्यंग किया है जो हिंदी व्यंग साहित्य में अनूठा है।
0: हरिशंकर परसाई जी अपने लेखन को एक सामाजिक कर्म के रूप में परिभाषित करते हैं। उनकी मान्यता है कि सामाजिक अनुभव के बिना सच्चा और वास्तविक साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता। सामाजिक विसंगतियों के प्रति गहरा सरोकार रखने वाला ही लेखक सच्चा व्यंगकार हो सकता है। परसाई जी सामयिक समय का रचनात्मक उपयोग करते हैं। उनका समूचा साहित्य वर्तमान से मुठभेड़ करता हुआ दिखाई देता है। परसाई जी ने हिंदी साहित्य में व्यंग विधा को एक नई पहचान दी और उसे एक अलग रूप में प्रदान किया। इसके लिए हिंदी साहित्य उनका हमेशा ऋणी रहेगा।
1: श्रोताओं, परसाई जी को बहुत पुरस्कार और बहुत सम्मान भी मिले। चलिए कुछ थोड़ी सी चर्चा उनके बारे में भी करते हैं। परसाई जी को उनकी कृति विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। परसाई जी को शरद जोशी सम्मान से भी नवाजा गया।
0: और श्रोताओं, आइए अब उनकी रचनाओं की बात करते हैं। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव और दो नाक वाले लोग, ये उनके कहानी संग्रह हैं।
1: और श्रोताओं, परसाई जी के जो व्यंग संग्रह हैं, वे हैं वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, और स्मरण में जो है वो है तिरछी रेखाएं, और जो उनके उपन्यास हैं वो हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल।
0: आइए अब हम आपको परसाई जी के निबंध संग्रह के बारे में बताते हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, और अंत में प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, तुलसीदास चंदन घिसे, एवं हम एक उम्र से वाकिफ हैं।
1: श्रोताओं, परसाई जी के कुछ व्यंग इस प्रकार हैं। अमरीकी शासक हमले को सभ्यता का प्रसार करते हैं, बम बरसाते हैं और मरने वाले सोचते हैं कि सभ्यता बरस रही है।
0: इस देश के बुद्धिजीवी शेर हैं, पर वे सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं।
1: नशे के मामले में हम बहुत ऊंचे हैं। दो नशे खास हैं, हीनता का नशा और उच्चता का नशा, जो बारी बारी से चढ़ते रहते हैं।
0: सरकार कहती है कि हमने चूहे पकड़ने के लिए चूहेदानियां रखी हैं, और एक आध चूहेदानी की हमने जांच भी की, उसमें घुसने के छेद से बड़ा छेद पीछे से निकलने के लिए है। चूहा इधर से फंसता है और उधर से निकल जाता है।
1: वाह क्या बात है, पिंजड़े बनवाने वाले और चूहे पकड़ने वाले चूहों से मिले हुए हैं। वे इधर हमें पिंजरा दिखाते हैं और उधर चूहों को बड़ा छेद दिखाते हैं। हमारे माथे पर सिर्फ चूहे दानी का खर्च बढ़ रहा है।
0: जो पानी छान कर पीते हैं वे आदमी का खून बिना छना ही पी जाते हैं।
1: बिल्कुल, बेइज्जती अगर दूसरों की भी शामिल कर लें तो आधी इज्जत बच जाती है।
0: मानवीयता उन पर रम के किक की तरह चढ़ती उतरती है, उन्हें मानवीयता के फिट आते हैं।
1: श्रोताओं, अपनी हास्य व्यंग रचनाओं में सभी के मन को भा लेने वाले हरिशंकर परसाई जी का निधन 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में हुआ और अंत में उनकी कविता क्या किया आज तक क्या पाया।
0: मैं सोच रहा सिर पर अपार, दिन मास वर्ष का धरे भार, पल प्रतिपल का अंबार लगा, आखिर क्या पाया तो क्या पाया।
1: जब तान छिड़ी मैं बोल उठा, जब थाप पड़ी मैं डोल उठा, औरों के स्वर में स्वर भरकर अब तक गाया तो क्या गाया।
0: सब लुटा विश्व को रंक हुआ, रीता तब मेरा अंक हुआ, दाता से फिर याचक बनकर कण कण पाया तो क्या पाया।
1: जिस ओर उठी उंगली जग की, उस ओर मुड़ी गति भी पग की, जग के अंचल में बंधा हुआ खिंचता आया तो क्या आया।
0: जो वर्तमान ने उगल दिया, उसको भविष्य ने निगल लिया, है ज्ञान सत्य ही श्रेष्ठ किंतु जूठन खाया तो क्या खाया।
1: वाह, जूठन खाया तो क्या खाया। श्रोताओं, ऐसे थे महान साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी। ये कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगले सप्ताह हम एक और नए साहित्यकार के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विवेकानंद गुजरात भ्रमण समाप्त कर बंबई और पुणे होकर महाबलेश्वर गए। लिमड़ी के राजा ठाकुर साहब से महाबलेश्वर में स्वामी जी की अचानक भेंट हुई थी। लिमड़ी में स्वामी जी ने राजभवन में निवास किया था। महाबलेश्वर में अचानक भेंट होने के कुछ ही दिनों बाद वे लिमड़ी के राजा के घर चले गए। ठाकुर साहब अति विद्वान सज्जन और स्वामी जी के दीक्षित शिष्य थे। उन्होंने यूरोप के अनेक देशों का भ्रमण किया था और दो बार अमेरिका भी गए थे। ठाकुर साहब ने स्वामी जी को अपने राज्य में ले जाकर वहीं बहुत दिनों तक रखना चाहा था, किंतु स्वामी जी ने उनके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा,
1: नहीं ठाकुर साहब, अभी नहीं, क्योंकि मुझे एक व्रत का पालन करना होगा। अभी मेरे लिए विश्राम करना असंभव है। फिर भी यदि कर्म से छुटकारा मिलने पर विश्राम पाने का अवसर मिलेगा तो आपके यहाँ अवश्य आऊंगा।
2: स्वामी जी के जीवन में ये अवसर फिर कभी नहीं आया। वे थोड़े दिन ठाकुर साहब के साथ महाबलेश्वर में बिताकर उनके साथ ही पुणे लौट गए। वहाँ लगभग एक हफ्ता रहे। उनकी इच्छा थी कि पुणे से हैदराबाद होते हुए रामेश्वरम जाएं, पर ये हो नहीं पाया और वे पुणे से बंबई होते हुए मध्य प्रदेश के खंडवा नगर में आ गए। शायद शिप्रा के तट पर उज्जैनी और नर्मदा के तट पर तीर्थ स्थानों के आकर्षण से ही वे खंडवा गए थे। वहाँ वे लगभग तीन हफ्ता ठहरे।
0: खंडवा में किसी परिचित के नहीं रहने से इधर उधर घूमते घूमते वे जब श्री हरिदास चट्टोपाध्याय नामक एक वकील के घर के सामने आए, ठीक उसी समय वकील साहब ने भी कचहरी से अपने घर लौटने के समय देखा कि दरवाजे पर एक साधु आए हुए हैं। प्रथम दर्शन में अन्य लोगों की भांति ही चट्टोपाध्याय महाशय ने भी सोचा कि ये घुमक्कड़ साधुओं में से ही कोई एक है, किंतु दो चार बातें करने के बाद ही उन्हें समझते देर न लगी कि वे असाधारण प्रतिभावान पंडित हैं। अतएव उन्होंने स्वामी जी को अपने घर में आतिथ्य ग्रहण करने को कहा और स्वामी जी के सहमत होने पर उन्हें वहां रखकर अपने आत्मीय जनों के साथ उनकी सेवा में लग गए।
2: खंडवा के बंगाली समाज के लोग स्वामी जी का शास्त्र ज्ञान और अंग्रेजी साहित्य में पांडित्य देखकर सहज ही उनकी ओर आकर्षित हुए। स्वामी जी के चरित्र की मधुरता ने भी उनको सर्व जनप्रिय बना दिया। उनके गृह स्वामी हरिदास बाबू ने इस सर्वगुण संपन्न सन्यासी को नगर वासियों में परिचित करा देने के लिए स्वामी जी को खुली सभा में व्याख्यान देने को कहा। इस प्रस्ताव से स्वामी जी पहले तो सहमत नहीं हुए। वे गुरु शिष्य की भांति आपसे निकटता के सहारे व्यक्तिगत चर्चा के ही पक्षधर थे। विशेषकर उन्होंने बताया कि वक्ता सुलभ स्वरों को ऊपर नीचे करने आदि के कौशल में वे अभ्यस्त नहीं हैं। इसके बावजूद हरिदास बाबू द्वारा आग्रह किए जाने पर उन्होंने कहा कि उपयुक्त संख्या में श्रोताओं के उपस्थित होने पर वे भाषण देने का प्रयास करने को तैयार हैं। किंतु हरिदास बाबू के लिए भी उस छोटे शहर में श्रोता एकत्र करना संभव नहीं हो पाया और भाषण नहीं हुआ।
0: उसी समय दीवानी अदालत के जज श्री माधव चंद्र बंदोपाध्याय ने एक दिन स्वामी जी के सम्मानार्थ स्थानीय बंगालियों को अपने घर में भोज दिया। भोजन के पहले और बाद का समय सत चर्चा में व्यतीत करने के उद्देश्य से स्वामी जी अपने साथ उपनिषद का एक खंड ले गए थे। निमंत्रित लोगों के एकत्र होने पर उन्होंने कई द्रुह श्लोकों को अत्यंत सरल भाषा में सबको समझा दिया। इन श्रोताओं में बाबू प्यारीलाल गांगुली नामक एक वकील संस्कृत के पंडित के रूप में ख्यात थे, इसलिए वे प्रश्न करने के लिए प्रस्तुत हुए। स्वामी जी ने उनके प्रत्येक प्रश्न का ऐसा सरल और सुस्पष्ट उत्तर दिया कि वकील साहब ने संतुष्ट होकर और ज्यादा प्रश्न नहीं किया तथा पाठ समाप्त हो जाने पर हरिदास बाबू के कानों में कहा, स्वामी जी को देखकर ही लगता है समय आने पर ये एक विश्वविख्यात व्यक्ति होंगे।
2: शिकागो धर्म सभा में योगदान करने की जो कामना स्वामी जी के मन में जूनागढ़ और पोरबंदर में अंकुर के रूप में प्रकट हुई थी, वो यहाँ और भी बड़े आकार में विकसित हुई। उन्होंने सुना था कि अगले वर्ष 1839 ईस्वी में इस सभा का अधिवेशन होगा और विश्व के विविध धर्मों के प्रतिनिधि उसमें भाग भी लेंगे। इसी से इस विषय की चर्चा में उन्होंने हरिदास बाबू को एक दिन कहा,
1: कोई यदि मेरे यातायात का खर्च दे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं जाने को तैयार हूँ।
0: मध्य भारत में खंडवा छोड़कर कुछ उत्तर की ओर जाने के समय उन्हें कई कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ा। भिन्न भिन्न जाति की विभिन्न प्रकृति के लोगों के बीच वे गए, जो अत्यंत असभ्य और अतिथि सत्कार विमुख हैं, एक मुट्ठी भिक्षा चाहने पर देते नहीं ठहरने की जगह मांगने पर डांट फटकार देते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि कई दिनों तक निर्जल निराहार रहने के बाद थोड़ा कुछ सामान्य भोजन कर शरीर रक्षा करनी पड़ी। उन्हीं दिनों उन्होंने एक परिवार में कई दिनों तक वास किया था और इन उपेक्षित लोगों के हृदय की श्रेष्ठता देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए थे। संभवतः इस घटना और इस प्रकार की अन्य कई घटनाओं से उपेक्षित जातियों में भी अच्छाई का अंकुर देखकर उन लोगों की उन्नति के लिए वे इतनी तीव्रता से जुट गए थे। परिव्राजक जीवन में एक बार स्वामी जी के मन में विचार जगा कि सिद्धि लाभ के लिए उन्होंने संसार का त्याग किया है। घर घर भिक्षा मांगने और जगह जगह घूमने मात्र से ये उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। अपने एक गुरु भ्राता को लिखित उनके एक पत्र में ये भाव व्यक्त हुआ है।
1: मैं निर्लज्ज भाव से घूम घूम कर दूसरों के घरों में भोजन करता हूँ और इससे विवेक को कष्ट भी नहीं होता, बिल्कुल एक कौवे की तरह। अब और भिक्षाटन नहीं करूंगा। मुझे खिलाने से गरीबों को क्या लाभ, बल्कि एक मुट्ठी चावल बचने पर वे अपने बेटे बेटियों को तो खिला सकते हैं। यदि भगवान लाभ ही ना हुआ तो ये शरीर रखने से क्या लाभ।
2: इन्हीं दिनों स्वामी जी के जीवन में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। स्वामी जी एक दिन दूर तक फैले हुए एक घने जंगल में रास्ता पार करते समय सोचते रहे, निराहार एवं तपस्या में देह त्याग होने से क्या हानि है। ऐसा विचार करते हुए वे सारा दिन पैदल चलते रहे। रास्ते में एक मुट्ठी अन्न भी नहीं मिला। संध्या होने पर वे थके शरीर से एक पेड़ के नीचे ही सो गए। उनका मन भगवत चिंतन में निमग्न था और आंखें लक्ष्यहीन रूप से सुदूर की ओर देख रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक बाघ उन्हीं की ओर आ रहा है। धीरे धीरे आगे आकर वो समीप में ही बैठ गया, मानो छलांग लगाने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। उस समय स्वामी जी सोचते रहे,
1: वाह ये तो खूब हुआ, हम दोनों ही जन तो भूखे हैं। इधर मुझे इस देह में तो ज्ञान लाभ हुआ नहीं और इसके द्वारा संसार के किसी का कल्याण होने की भी तो संभावना नहीं देखता हूं। अतएव इस देह के द्वारा यदि इस भूखे पशु की भूख मिट जाए तो क्या बुरा।
0: रंच मात्र चंचलता व्यक्त किए बिना वे उसी प्रकार सोए रहे और प्रतीक्षा करने लगे कि कब वो बाघ छलांग मारकर उन पर टूट पड़ता है। किंतु थोड़ी देर बाद किसी अज्ञात कारण से वो बाघ दूसरी ओर घूमकर तेजी से चला गया। स्वामी जी तब भी सोचते रहे कि संभवतः वह लौटेगा, इसलिए वे प्रतीक्षा करने लगे, किंतु वो नहीं लौटा। वो रात उन्होंने भगवत चिंतन में उस पेड़ के नीचे ही काटी। प्रातःकाल में ईश्वर के विधान से एक दूसरी ओर उनका मन आकृष्ट हुआ। वे ईश्वर की अशेष करुणा की बात को सोचते हुए कृतज्ञ हृदय से गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर हुए। परवर्ती काल में बातों के क्रम में इस घटना का उल्लेख करते हुए समय भी उस समय की अनुभूति का पूर्ण रहस्य या गंभीरता उनके मुंह से कभी व्यक्त नहीं हुई।
2: और एक बार क्लांत और थके होने पर भी वे खाली पेट लंबी राह पर चले जा रहे थे। ग्रीष्म काल का सूर्य आग बरसा रहा था और राह चलना क्रमशः असंभव था, तथापि आखिरी प्रयास कर वे दूरस्थ एक पेड़ के तले पहुंचे और वहीं लेट गए। शरीर उस समय चेतना रहित हो गया था, आगे चल नहीं पा रहा था। तभी अंधकार में अचानक प्रकाश छटक जाने की भांति उनके मन में एक विचार उदित हुआ। ये तो सच बात है कि आत्मा में अनंत शक्ति है, शरीर उस पर अधिकार जमा लेगा, ये कैसी बात है, मैं निर्बल कैसे हो सकता हूँ। ये सोचते ही उनकी देह में नई शक्ति का संचार हो गया, उनके मन की अचेतनता दूर हो गई, इंद्रियों ने भी प्रतिक्रिया दिखाई और वे पुनः इस संकल्प के साथ राह पर चलने लगे कि इस प्रकार दुर्बलता के हाथों आत्मसमर्पण करना ठीक नहीं। उनके परिव्राजक जीवन में ऐसी घटनाएं और भी घटी थीं और इनका उल्लेख करते हुए उन्होंने कैलिफोर्निया में एक भाषण देने के क्रम में कहा था,
1: कितनी ही बार मैं निराहार रहकर शत विक्षत पांवों से क्लांत देह लेकर मृत्यु के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, कितनी ही बार दिन पर दिन मुट्ठी भर अन्न नहीं पाने से राह चलना असंभव हो जाता था। उस समय क्लांत शरीर से किसी वृक्ष की छांव में लेट जाता और प्रतीत होता कि प्राण वायु निकलती जा रही है, बातें नहीं कर पाता था, विचार करना भी असंभव हो जाता और ऐसे में मन में ये भाव उठता कि मुझे कोई भय नहीं, तृष्णा नहीं, सोहम सोहम। सारी प्रकृति में ये क्षमता नहीं कि मुझे मसल डाले। प्रकृति तो मेरी दासी है, हे देवादिदेव, हे परमेश्वर, अपनी महिमा प्रकट करो, स्वराज्य में प्रतिष्ठित हो, विरत मत हो, तभी मैं पुनः शक्ति प्राप्त कर उठ खड़ा होता। इसी से मैं आज भी जीवित हूं और यहां उपस्थित हूं।
0: खंडवा छोड़ने के पूर्व हरिदास बाबू ने स्वामी जी से और भी कुछ दिनों तक रह जाने के लिए विशेष अनुरोध किया था, किंतु स्वामी जी ने कहा,
1: तुम सब मेरी इतनी सेवा शुश्रूषा करते हो कि तुम लोगों को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती, किंतु मुझे रहना तो नहीं है। मैं तीर्थ भ्रमण को निकला हूं, रामेश्वर तक जाना ही होगा। मैं यदि इस प्रकार दीर्घकाल हर जगह बिताऊं तो फिर मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा।
0: हरिदास बाबू ने जब समझ लिया कि स्वामी जी किसी तरह भी नहीं रुकेंगे, तब अपने बंबई निवासी एक भाई के नाम एक पत्र देकर कहा,
3: मेरा भाई श्री छविलदास जी से आपका परिचय करा देगा, लगता है कि वे आपकी सहायता कर सकेंगे। वस्तुतः स्वामी जी, आपका भविष्य अत्यंत उज्जवल है।
0: स्वामी जी ट्रेन से बंबई के लिए रवाना हो गए।
2: जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में बंबई पहुंचकर स्वामी जी बैरिस्टर श्री रामदास छबिलदास के घर आए और अन्य स्थानों की भांति यहां भी शीघ्र ही विद्वत समाज में सुविख्यात हो गए। एक दिन किसी नेता के घर पर उनके जाने पर उक्त सज्जन ने उन्हें अखबार का एक विशेष भाग उन्हें पढ़ने को दिया। उसमें छपा था कि लड़कियों की सहमति से शादी की उम्र निर्धारित करने के लिए एक नया विधेयक एज ऑफ कंसेंट बिल प्रस्तावित हुआ है और बंगाल का शिक्षित वर्ग उसके विरोध में आंदोलन कर रहा है। इस समाचार से स्वामी जी ने लज्जा से सिर झुका लिया और तीव्र एवं स्पष्ट शब्दों में बाल विवाह के विरुद्ध अपना युक्तिपूर्ण मत प्रकट किया।
0: बंबई में रहते समय अचानक उनकी भेंट काली यानी अभेदानंद से हो गई। अभेदानंद जी कहते हैं कि
4: उस समय स्वामी जी का हृदय जैसे अग्नि कुंड की भांति हो गया था। अन्य कोई विचार नहीं, केवल कैसे भारत की प्राचीन आध्यात्मिकता की फिर प्रतिष्ठा होगी, दिन रात यही सोचते। उन दिनों स्वामी जी को देखने पर वे एक प्रचंड आंधी की तरह लगते।
0: उनके हृदय की उत्कंठा देखकर अभेदानंद भी विचलित हो गए थे और स्वामी जी ने स्वयं भी उनसे कहा था,
1: काली, मुझ में इतनी शक्ति और ऊर्जा एकत्र हो गई है कि लगता है मैं फट जाऊंगा।
0: जो लोग अमेरिका जाने के पूर्व स्वामी जी के चिंतन के विकास की गति को लक्ष्य करना चाहते हैं, उनके लिए स्वामी जी के 22 अगस्त और 20 सितंबर के दोनों पत्र विशेष मूल्यवान हैं। प्रथम पत्र के एक अंश में लिखा है जो उन्होंने जूनागढ़ के दीवान जी को लिखा था,
1: देश के इन भागों में ये देखकर मुझे बड़ा दुख है कि संस्कृत तथा अन्य विद्याओं के ज्ञान का बड़ा अभाव है। देश के इस भाग के निवासी स्नान खान पान संबंधी स्थानीय अंधविश्वासों को ही अपना धर्म समझते हैं और यही उनका सारा धर्म है। सामान्य लोग वेदों और हिंदू धर्म के नाम पर उन्हें निरर्थक हास्यपूर्ण कुरीतियां एवं मूर्खताएं सिखा रही हैं। इन कलयुगी राक्षसों से भगवान इनकी रक्षा करें।
0: दूसरा पत्र खेतड़ी निवासी पंडित शंकरलाल को लिखा गया है,
1: हम लोगों को विदेशों की यात्रा करनी चाहिए। यदि हम अपने को एक सुसंगठित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि दूसरे देशों में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था चल रही है, और साथ ही हमें मुक्त हृदय से दूसरे राष्ट्रों से विचार विनिमय करते रहना चाहिए। किस हास्यास्पद दशा को हम पहुंच गए हैं। यदि कोई हमारे पास गरीब पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति आता है तो छोटी बीमारी की तरह हम उसके स्पर्श से दूर भागते हैं, परंतु जब उसके सिर पर विदेशी थोड़ा पानी डालकर उसका धर्म परिवर्तन कर देता है और उसे पहनने के लिए एक कोट मिल जाता है, फिर चाहे वो कितना ही फटा पुराना क्यों ना हो, तब चाहे वो किसी कट्टर से कट्टर हिंदू के कमरे के भीतर पहुंच जाए, उसके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं। आइए देखिए तो सही, दक्षिण भारत में ये विदेशी लोग क्या गजब कर रहे हैं। ये लोग सर्वहारा लोगों को लाखों की संख्या में बदल रहे हैं। हे भगवान, मनुष्य कब दूसरे मनुष्यों से भाईचारे का बर्ताव करना सीखेंगे।
0: एक मजेदार घटना सुनाता हूं। सन 1892 ईस्वी के सितंबर मास में बंबई से पुणे जाने वाली रेलगाड़ी के एक दूसरी श्रेणी के डब्बे में स्वामी जी बैठे थे। डब्बे में और भी 3 महाराष्ट्रीय युवक यात्री थे। उनमें घोर तर्क युद्ध छिड़ा था। तर्क का विषय था सन्यास। 2 युवक रानडे आदि सुधारकों के स्वर में स्वर मिलाकर सन्यास की व्यर्थता तथा उनके दोषों का प्रदर्शन कर रहे थे। तीसरे व्यक्ति उनके मतों का खंडन कर भारत के प्राचीन सन्यास की महिमा का गुणगान कर रहे थे। ये युवक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही थे। पास बैठे हुए सन्यासी विवेकानंद इन तर्करत युवकों की युक्ति व उक्तियों को ध्यान से सुन रहे थे। अंत में लोकमान्य तिलक का पक्ष लेकर वे भी तर्क युद्ध में सम्मिलित हो गए। इस अंग्रेजी जानने वाले सन्यासी की प्रखर प्रतिभा से वे युवकगण उनकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुए। स्वामी जी ने धीर भाव से समझा दिया कि सन्यासियों ने ही भारत के विभिन्न प्रांतों में भ्रमण करते हुए जातीय जीवन के उच्च आदर्शों का समस्त भारत में प्रचार किया है। भारतीय सभ्यता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति ये सन्यासी ही है, जो शिष्य परंपरा द्वारा भारतीय जीवन के आदर्श की रक्षा विघ्न बाधाओं के बीच में से इतने दिनों तक करता आया है। हाँ, ये अवश्य सत्य है कि ढोंगी व स्वार्थी व्यक्तियों के हाथों बीच बीच में सन्यास लांछित तथा विकृत हुआ है, परंतु किसी विशेष व्यक्ति के ढोंग के लिए भारत के समस्त सन्यासी संप्रदाय को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं।
2: इस विद्वान सन्यासी की वाक्पटुता और गंभीर पांडित्य को देखकर लोकमान्य तिलक बड़े मुग्ध हुए और स्वामी जी को अपने घर लेवा ले गए। स्वामी जी भी तिलक जी की प्रखर प्रतिभा और उनका वेद और शास्त्रों पर अधिकार देखकर आनंदित हुए और हर्ष के साथ उनके ही घर रहने लगे। दोनों आपस में वेदों के गहन अर्थों की चर्चा कर बड़े तृप्त होते थे। इस प्रकार पुणे के तिलक भवन में कुछ दिन व्यतीत कर स्वामी जी ने कोल्हापुर की ओर प्रस्थान किया।
0: अन्य स्थानों की भांति कोल्हापुर का शिक्षित समुदाय भी स्वामी जी के गुणों पर मुग्ध हुआ था। खासकर उनकी कठिन विषय को परिष्कृत और हृदयग्राही शब्दों में प्रकट करने की क्षमता ने सबको आकृष्ट किया था। इसी से उन लोगों ने स्थानीय राजा रामीय परिषद में उनके व्याख्यान का आयोजन किया था। स्वामी जी ने 1.5 घंटे तक भाषण दिया। इसमें उन्होंने कहा था,
1: मैं उस धर्म का अनुयायी हूं, बौद्ध धर्म जिसकी विद्रोही संतान है और ईसाई धर्म जिसका अकुशल अनुकरण मात्र। यूरोप के लोग भला धर्म कैसे समझेंगे, वे तो विलासिता के पीछे दौड़ते हैं।
0: श्रोताओं में से किसी एक ने कहा, मांसाहारी धर्म को क्या समझेंगे। स्वामी जी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा,
1: नहीं नहीं, तुम्हारे प्राचीन ऋषिगण मांसाहारी थे, क्या तुमने अपने उत्तर रामचरित में इसे नहीं पढ़ा।
0: तब उन्होंने उस ग्रंथ से कुछ श्लोक उद्धृत किए जिनमें मांसाहार का स्पष्ट उल्लेख है। ये सुनकर किसी किसी श्रोता के मन में स्वामी जी की जाति के संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ, किंतु इस विषय में उनसे प्रश्न करने का साहस किसमें था।
2: कोल्हापुर से स्वामी जी बेलगांव गए। वहां वे श्री भाटे महोदय के घर ठहरे। पहले तो घर वाले या शहर के अन्य लोग उनकी प्रतिभा को पहचान नहीं पाए, परंतु प्रथम दिन से ही ऐसी घटनाएं घटने लगी कि लोग उनकी बातचीत के ढंग से और सर्वोपरि उनके ज्ञान से आकर्षित हो गए। बेलगांव में भाटे परिवार के सुपुत्र प्रोफेसर G.S. भाटे ने अपने संस्मरण में लिखा है,
1: स्वामी जी की उपस्थिति बेलगांव शहर में भली भांति ज्ञात हो जाने के बाद प्रतिदिन उनके पास जब अनेक लोगों का आगमन होता, तब ये देखकर हम लोगों को बड़ा आश्चर्य होता कि घोर तर्क वितर्क के समय भी स्वामी जी की प्रसन्नता सदा स्थिर बनी रहती। वे कभी क्रुद्ध नहीं होते। जवाब देने में अत्यंत निपुण होने पर भी वे दूसरों को कभी आहत नहीं करते। एक दिन वाद विवाद के समय मैंने स्वामी जी में जो धीरता देखी थी, उससे हम लोगों का खूब मनोरंजन हुआ था। उस समय बेलगांव में
3: एक कार्यपालक अभियंता थे। सभी विषयों में सुपंडित के रूप में उनकी ख्याति थी। उन दिनों के अनेक लोगों की भांति बाहर से ये खूब कट्टर होने पर भी भीतर से संदेहवादी और पश्चिम जगत के विज्ञान के भगत थे। दर्शन और विज्ञान के विषय में उनकी जो जानकारी थी उसकी अपेक्षा स्वामी जी में कहीं अधिक थी। इसके फलस्वरूप तर्क करते समय स्वभावतः वे अपना मिजाज खराब कर अभद्रता दिखाने लगे, पर स्वामी जी मृदुल मुस्कान के साथ कहते, कहने दो उन्हें, मुझे कोई आपत्ति नहीं।
0: पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने दरिद्रता को देखा व समझा था। भारत का परिभ्रमण करते समय उन्होंने देखा था कि विराट जनसमूह का भाग्य यथार्थतः उनके समान ही है, और उन्होंने जाना था कि भारत का जनगण दरिद्र होने पर भी धर्म विमुख नहीं है। हाँ, वो धर्म कई क्षेत्रों में प्राणहीन आचार मात्र रह गया है, तथा धनी और दरिद्र, ऊंच और निम्न जाति के बीच जो विशाल भेद है उसे दूर करने में धर्म प्रयत्नशील नहीं हुआ है, बल्कि धर्म के नाम पर प्रचारित रीति नीति पुरोहित वर्ग के हाथों में पड़कर इस अलगाव का कारक बन गया है और उसके स्थायित्व के लिए युक्ति लगा रहा है। इस लंबे भ्रमण काल में अधिकतर उन्होंने मात्र कमर में वस्त्र लपेटकर सन्यासी के वेश में ही व्यतीत किया था, और उनके साथ होता था श्री राम कृष्ण का चित्र, एक प्रतिगीता और एक लाठी। तथापि उनके मन में था अटूट ईश्वर विश्वास, अपनी जन्मभूमि के प्रति असीम प्रेम और जनगण के प्रति निश्चल अनुराग।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: तो श्रोताओं, हमारी सुबह की सभा यहीं संपन्न होती है। आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए दोपहर की सभा का। सुनते रहिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
2: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार का सरोदवादन और उसके बाद प्रस्तुति होगी पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन की। तो आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार का सरोदवादन।

0: और श्रोताओं, डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार के सरोद वादन को सुनने के बाद अब बारी है पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन की।
1: तीन तल में बंदिश, सब सखिया जाओ प्रभु के दर्शन।

0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित श्रीनिवास जोशी का गायन। आज का कार्यक्रम भारत भारती यहीं तक। अब दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
2: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनिए देशभक्ति गीत।

और आइए श्रोताओ, देशभक्ति गीतों के इस कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसके बोल हैं, क्या समझते हो कि हम खेल का डर करते हैं, हम जो करते हैं उसे होके निडर करते हैं।

और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति कव्वाली। ना सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज, हंसते हंसते हमें जालिम ना रुलाना हरगिज।

और लीजिए अब सुनिए ये देशभक्ति रचना, आओ वीरो समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा, शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए सुनिए तेरी अमृत आराधना, भारत न खो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना, भारत न खो जाए कहीं।

हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं, कायरों से आज तक ये काम है शामिल नहीं, आज मिटने को न हो जो वो दिल नहीं। हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं। आइए सुनते हैं इसी गीत को।

देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। आइए सुनते हैं गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की इस रचना को।

कहते हैं अलविदा इस जहान को, जाकर खुदा के घर फिर आया ना जाएगा। कहते हैं अलविदा इस जहान को।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत प्रमिला के साथ। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
3: अतुल्य भारत।
2: श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन,
4: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, घाटों की नगरी वाराणसी, मंदिरों का शहर वाराणसी, एक धार्मिक स्थल वाराणसी। वाराणसी है ही ऐसा, इसे जितना जाना जाए उतना कम है। इसलिए आज हम आपको परिचित करा रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ खास खास साहित्यकारों से।
2: श्रोताओं, साहित्य विद्या की ही एक शाखा है, और विद्या की देवी है सरस्वती।
4: बिल्कुल,
2: बिना सरस्वती की कृपा के साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता। ये कृपा व्यक्ति पर भी होती है और स्थान पर भी। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर साहित्य की फसल खूब लहलहाती है।
4: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा।
2: हाँ, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में सरस्वती की कृपा का सिंचन कुछ अधिक ही होता है।
4: जी, वाराणसी के संदर्भ में बात करें तो यह बात साफ दिखाई देती है कि प्रयाग में सरस्वती आज भले ही अदृश्य हो गई हो, पर उसकी धारा गंगा में जरूर मिलती है और बहती हुई वाराणसी तक पहुंचती है, और शायद यहाँ आकर खाली भी हो जाती है।
2: श्रोताओं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी की। माँ सरस्वती की कृपा से वाराणसी में साहित्य की जो अक्षय खदान खुदी हुई है, उसके एक चमचमाते रत्न हैं कबीरदास जी। भारत में तो शायद ही कोई हो जिसने इनका नाम न सुना हो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको पसंद है वे। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले ये निर्गुण संत वाराणसी से लगे लहरतारा नाम के स्थान पर एक जुलाहे के घर में पले बढ़े।
4: पर शायद ईश्वर से योग की प्यास पिछले जन्मों से ही लिखा कर लाए थे वे, सो बालपन में ही गुरु की खोज में निकल पड़े। किसी ने कहा, रामानंद से बढ़कर कोई गुरु नहीं। पर वे जल्दी किसी को शिष्य बनाते नहीं हैं। बस फिर क्या था, कबीर तो कबीर थे, और कबीर के नाम का अर्थ होता है महान।
2: पता चला कि बाबा रामानंद जी मुंह अंधेरे ही गंगा स्नान को आते हैं। फिर क्या था, कबीर जी चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। अंधेरे में बाबा को दिखा नहीं तो उनका पैर कबीर जी की छाती पर पड़ गया। बाबा चौंक उठे, ये क्या, ये तो कोई मानव तन है। एकदम से पीछे हटे और बोले, राम राम बोल बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी।
4: बस फिर क्या था, कबीर बोले, अपना शिष्य बना लीजिए बाबा। कहते हुए कबीर ने उनके पांव पकड़ लिए। श्रोताओं, आपने कबीर को थोड़ा भी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि निर्गुण संत होने के बावजूद कबीर की रचनाओं में राम का नाम बार बार आया है। चलिए उनकी कुछ चौपाइयां हम आपके ध्यान में लाते हैं।
2: कबीरा कोता राम का, मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेहणी जित खींचे तित जाऊं, दुल्हिन गावहूं मंगल चार, तोरे घर आए राजा राम भरतार। और इसी तरह एक और चौपाई है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पाश।
4: श्रोताओं, कबीर व रामानंद के संबंध में एक मुहावरा सामने आता है, गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला शकर बन गया। एक घटना हम आपको बताते हैं।
2: एक बार की बात है, रामानंद जी मंदिर में राम जी की पूजा कर रहे हैं। बाहर कबीर और उनके दूसरे शिष्य बैठे हैं। रामानंद जी राम का श्रृंगार कर रहे हैं। जब मुकुट पहना दिए तो ध्यान आया कि माला पहनाना तो भूल ही गए। माला छोटी थी, मुकुट के ऊपर से पहना ही नहीं जा सकती थी, पर मुकुट उतारना निषिद्ध था। गुरु क्या करें, चिंतित हो उठे वे।
4: बस फिर क्या था, बाहर बैठे कबीर निर्गुण के ध्यान में डूबे हुए थे और आंखों से सारा तमाशा देख रहे थे। सहसा बोल उठे, गुरुजी माला का गांठ खोल करके पहना दीजिए राम जी को, और फिर दोबारा गांठ लगा दीजिए।
2: ये सुनते ही रामानंद जी सन्न रह गए। उन्होंने बाहर आते ही कबीर जी को गले से लगा लिया। आखिरकार ये सिद्ध हो चुका था कि निर्गुण और सगुण इनमें कोई भेद नहीं।
4: बिल्कुल,
2: तभी तो कुछ लोग कबीर जी की भक्ति को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं।
4: हाँ, वे समझ ही नहीं पाते कि जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसके प्रति कबीर का इतना अनुराग कैसे? कैसे वे उनके वियोग के बावले हो जाते हैं? कैसे वे कहते हैं कि गोविंदा गुनगाइए? कैसे वे कहते हैं कि हरि जननी मैं बाकुल तेरा? जब हरि निर्गुण है तो उसके गुण कैसे गाए जा सकते हैं? जब उसका कोई शरीर ही नहीं है तो वे माता कैसे हो गया?
2: ये सब हृदयहीन बौद्धिक व्याख्याएं हैं। निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं बल्कि गुणातीत है। उसमें गुणों की कमी नहीं, परंतु उसे गुणों में बांधा भी नहीं जा सकता। अगर सगुण से कबीर जी का इतना ही बैर होता तो रामानंद जी जैसे एक सगुण उपासक को वे अपना गुरु कैसे बनाते?
4: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर आप सुन रहे हैं अतुल्य भारत, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी के कुछ खास साहित्यकारों की, और इसी श्रृंखला में अब हम चर्चा करते हैं तुलसीदास की। कबीरदास के संदर्भ में निर्गुण सगुण की जो चर्चा चली उसे पूर्ण विराम दिया तुलसीदास ने। उन्होंने साफ कह दिया कि निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा।
2: तुलसीदास जी का रिश्ता वाराणसी से बहुत गहरा रहा है। उनका जन्म वैसे तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, पर उनकी कर्मभूमि वाराणसी ही थी। जन्म का नाम था रामबोला और उनके गुरु थे नरहरिदास।
4: जी हाँ, नरहरिदास रामानंद के शिष्य परंपरा में थे। वहीं रामानंद जो कबीर के गुरु थे, अनाथ रामबोला को उन्होंने ही अपनाया और तुलसीदास नाम दिया, और उन्होंने अयोध्या में उन्हें आरंभिक शिक्षा भी दी। पर उच्च शिक्षा के लिए वे अपने इस होनहार शिष्य को वाराणसी भेजना चाहते थे।
2: श्रोताओं, इससे आप तो समझ ही सकते हैं कि वाराणसी उस समय शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था।
4: बिल्कुल।
2: हाँ, तो वाराणसी में नरहरिदास के एक मित्र थे, शेष सनातन। नरहरिदास ने तुलसीदास जी को आगे की पढ़ाई के लिए उन्हीं के पास भेज दिया। शेष सनातन महान विद्वान थे। उनके सानिध्य में तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, चारों वेद, छह वेदांग और छह दर्शनों की शिक्षा पाई।
4: 15-16 सालों की पढ़ाई के बाद तुलसीदास अब पुराने तुलसीदास नहीं रहे। वे प्रकांड विद्वान बन चुके थे और उनका श्रेय जाता है भोलेनाथ की इस नगरी को। इसके पास वे वापस लौट आए, पर अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक बार फिर वाराणसी लौटे।
2: इस बार की उपलब्धि विद्या नहीं बल्कि भक्ति थी। आज जहां पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, उसी स्थान पर हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और वो भी एक प्रेत की कृपा से। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन एक पेड़ पर जल चढ़ाया करते थे। इस पेड़ के भीतर एक प्रेत रहा करता था, तो प्रसन्न होकर उसने ही तुलसीदास जी को वो विधि बताई कि हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे।
4: लेकिन तुलसीदास की इच्छा तो राम से मिलने की थी, तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि राम जी के दर्शन तो उन्हें चित्रकूट में होंगे। यह एक लंबी कहानी है, अतः विषयांतर से बचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।
2: गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। वही वाल्मीकि जी जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी, लेकिन लगता है कि बाद में जब संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं रही, तब वाल्मीकि जी ने ही हिंदी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में फिर से जन्म लिया।
4: खैर, इस नए रामायण की रचना तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से राम की जन्मभूमि अयोध्या में और अयोध्या की ही बोली अवधि में की। वैसे वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और चाहते तो संस्कृत में राम कथा लिख करके विद्वानों की वाहवाही लूट सकते थे, पर उनका उद्देश्य तो राम की कथा जनता को सुनाना था, सो उन्होंने जनता की ही भाषा चुनी।
2: रामचरितमानस के आरंभ और अंत की तिथियां भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई थी। आपने सुना है कि तुलसीदास जी ज्योतिष शास्त्र में माहिर थे, तो इस ग्रंथ की रचना मंगलवार के दिन रामनवमी को शुरू की गई, ग्रह नक्षत्रों की उसी स्थिति में जिसमें राम जी का जन्म हुआ था।
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसका समापन विवाह पंचमी पर हुआ। यह वह तिथि थी जब राम व जानकी का विवाह हुआ था।
2: अब गोस्वामी तुलसीदास जी की मंजिल एक बार फिर वाराणसी थी। उन्हें अपनी रचना शिव पार्वती जी को सुनानी जो थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, लेकिन वाराणसी के ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके एक लोक भाषा अवधि में की थी।
4: वहां के पंडितों का दावा था कि ईश्वर की कृपा सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों को ही मिलती है। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण जैसे संस्कृत ग्रंथों के ढेर के नीचे अवधि में रचित रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रख करके बाहर से ताला लगा दिया।
2: और श्रोताओं, सुबह जब ताला खोलकर देखा गया तो पाया गया कि रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित था और उसके नीचे शिव जी के हस्ताक्षर थे। यहाँ तक कि बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष भी सुना। शिव जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना पर अपनी मोहर लगा दी थी।
4: खैर, ये तो कुछ किंवदंतियां हैं। अपने जीवन का अंतिम समय तुलसीदास ने वाराणसी में ही बिताया, पर दार्शनिक तथ्य इसमें यह है कि वे अपने जीवन का अंत वाराणसी में करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। असी घाट पर उन्होंने देह त्यागा। इस संबंध में भी एक रोचक कथा मिलती है।
2: जब गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के असी घाट पर निवास कर रहे थे तो जीवन की संध्या बेला में कलयुग ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे अपनी अर्जी राम जी के दरबार में लगाएं। ये अर्जी ही उनकी विनय पत्रिका है। राम जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं।
4: श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका वाराणसी के असी घाट पर ही रची गई थी। इसकी भाषा थी ब्रज भाषा और ये उनकी अंतिम कृति थी। उत्कृष्टता के विद्वान रामचरितमानस के बाद उन्होंने विनय पत्रिका को ही लिखा था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अतुल्य भारत, और अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। वाराणसी से संबंधित आधुनिक कालीन साहित्यकारों की बात करें तो पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है।
4: बिल्कुल,
2: उन्हें आधुनिक हिंदी का आदि पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी की नींव डालने वालों में वे प्रमुख थे।
4: श्रोताओं, आपको बता दें कि हिंदी की अनेक बोलियों में एक बोली का नाम है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं। कोरवी इसलिए क्योंकि इसका जन्म कुरुक्षेत्र के इलाके में हुआ, वही कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ। वही कुरुक्षेत्र जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
2: तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जब विकास हो रहा था तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हुए, जैसे अवध में अवधि, ब्रजभूमि में ब्रज, हमारे मालवा क्षेत्र में मालवी, कुरुक्षेत्र में कौरवी। श्रोताओं, ये लिस्ट काफी लंबी है जिसमें लगभग 19 बोलियां आती हैं, लेकिन इन 19 बोलियों में से साहित्य में ज्यादातर प्रयुक्त हुए अवध और ब्रज।
4: और वजह यह थी कि शुरुआती रचनाएं ज्यादातर भक्ति परक थी। राम के भक्तों ने अवधि व कृष्ण के भक्तों ने ब्रज का प्रयोग किया। आगे चलकर रीतिकाल में अवधि का जन्म भी ब्रज ने ही ले लिया, क्योंकि बिहारी धनानंद जैसे कवि श्रृंगार रचनाओं के लिए ब्रज ज्यादा उपयुक्त थी।
2: इस भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने की पुरानी परिपाटी जो थी,
4: बिल्कुल,
2: जबकि अवधि में राम जानकी के अनुराग का वर्णन अत्यंत मर्यादा के साथ किया गया है। प्रसंगवश तुलसीदास जी की कविता यहाँ पर याद आती है।
4: कौन सी कविता?
2: राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, ताते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही।
4: वाह,
2: ये प्रसंग उस समय का है जब राम जानकी जी का विवाह हो रहा था। माता जानकी भगवान श्री राम को देखना चाहती हैं, पर देखें कैसे, लोकलाज और मर्यादा की दीवार जो सामने है। तो उन्होंने अपने कंगन में लगे नग में राम जी की छवि देखी,
4: लेकिन हाथ हिला नहीं सकती थी, क्योंकि यदि ऐसा किया तो राम की छवि हट जाएगी। पलके भी नहीं झपका सकती थी, क्योंकि इतनी देर के लिए राम पलकों से ओझल हो जाएंगे। इसलिए वे अपना हाथ स्थिर कर लेती हैं और पलके नहीं गिराती।
2: धन्य धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने मर्यादा के साथ इतनी सुंदर श्रृंगारिक रचना की। श्रृंगार का मर्यादित रूप भी कितना सुंदर हो सकता है,
4: बिल्कुल,
2: ये आज के कलाकारों को इनसे सीखने की जरूरत है।
4: जी हाँ, खैर, जब बाहर तेंदु का अवतरण इस दुनिया में हुआ तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का बोलबाला था, लेकिन भारतेंदु महसूस कर रहे थे कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के लिए यह भाषा उपयुक्त नहीं है, इसके लिए खड़ी बोली अधिक उपयुक्त है। सो उन्होंने विशेषकर गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को आगे बढ़ाया।
2: चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार मात्र ही नहीं थे, बल्कि साहित्यकारों की पूरी मंडली रखते थे, इसलिए उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया।
4: सन 1850 में जन्मे भारतेंदु बचपन से ही पैसे को पैसा नहीं समझते थे। खूब संपदा विरासत में मिली थी तो दीपक में तेल की जगह वे इत्र जलाया करते थे। पूछा जाता तो कहते कि इस धन ने मेरे पुरखों को जलाया है, अब मैं इसे जला रहा हूं। लेकिन उनका यही स्वभाव हिंदी साहित्य की फसल सींच गया।
2: उन्होंने अपना निजी पैसा खर्च करके साहित्यकारों को उसी तरह आश्रय दिया जिस तरह कभी राजे महाराजे किया करते थे। आज हिंदी में जितनी भी विधाएं हम देखते हैं उनमें से अधिकतर की नींव उन्होंने ही डाली। नाटक, निबंध, पत्रकारिता, कविता कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। खास करके नाटकों के विकास के लिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हमेशा याद रखा जाएगा।
4: जी हाँ, श्रोताओं, आप जानते हैं कि नाटक पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए लिखे जाते हैं, और इन्हें खेलने के लिए रंगमंच की भी जरूरत होती है। लेकिन भारतेंदु के समय में हिंदी में रंगमंच ना के बराबर थे, सो भारतेंदु ने ना केवल नाटक लिखे बल्कि उन्हें खेलने के लिए मंचों की भी स्थापना की। वे अच्छे अभिनेता व निर्देशक भी थे, सो वे अपने लिखे नाटकों में अभिनय भी करते थे और निर्देशन भी करते थे।
2: श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता की नींव भी भारतेंदु जी ने ही डाली थी। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। भारतेंदु जी को केवल एक साहित्यकार समझना उनके प्रति अन्याय होगा। हम तो कह सकते हैं कि वे पूरा एक युग थे, इसलिए हिंदी साहित्य में उनका काल भारतेंदु काल कहलाता है।
4: हाँ, एक साहित्यकार के होने के साथ साथ भारतेंदु एक राष्ट्रभक्त भी थे। उन्हें अंग्रेजों के शोषण से बड़ी पीड़ा पहुंचती थी, जिसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, खास करके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील दर्पण में तो उस काल का पूरा भारत ही देखा जा सकता है।
2: राष्ट्रभाषा की अवधारणा संभवतः सबसे पहले उन्होंने ही दी। अपनी भाषा को हेय मानकर विदेशी भाषा के पीछे भागने की प्रवृत्ति से उन्हें दुख पहुंचता था। इसलिए तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल। अर्थात जो समाज अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर पाता, उसकी स्वयं की उन्नति भी नहीं हो पाती।
4: वाराणसी में स्थित काशी नगरी प्राचीरणी सभा आज हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना की कहानी भी बड़ी ही रोचक है।
2: सन 1893 की बात है। वाराणसी के क्विंस कॉलेज में नवी कक्षा के तीन छात्र श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह देख रहे थे कि अंग्रेजी और फारसी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल तो लोग बड़े फक्र के साथ करते हैं, परंतु हिंदी का इस्तेमाल करने में खुद को हेय समझते हैं।
4: हाँ, सो हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना अपने छात्रावास के बरामदे में बैठकर की। इसकी बैठक वाराणसी के घुड़साल में होती थी। इसकी खुद की इमारत तो बाद में जाकर के बनी है।
2: इस सभा ने हिंदी की जो सेवा की उसकी गिनती भी करना मुश्किल है। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी और उर्दू का प्रचलन था, जबकि आम जनता की भाषा हिंदी थी। संयोग से मदन मोहन मालवीय भी तब तक इस सभा से जुड़ चुके थे, तो इसीलिए इन लोगों के प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू के साथ ही हिंदी का ज्ञान भी अनिवार्य कर दिया गया।
4: हिंदी की तितर बितर पांडुलिपियों को ढूंढ कर प्रकाशित करने का जो काम नागरी सभा ने किया, उसका मूल्यांकन करना भी संभव नहीं है हमारे लिए। इसके संग्रहालय में आज हिंदी भाषा की लगभग 15,000 हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं।
2: और आलम यह है कि अगर आप हिंदी विषय में शोध कर रहे हैं तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की लाइब्रेरी में जाए बिना आपका काम नहीं चलने वाला।
4: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है अतुल्य भारत और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ महान साहित्यकारों के बारे में। और इसी कड़ी में अगला नाम है जयशंकर प्रसाद का। साल 1885 हिंदी के लिए एक दुखद साल था। मात्र 34 साल की उम्र में भारतेंदु दुनिया छोड़कर के चले गए, लेकिन इसके 5 साल बाद ही वाराणसी के ही सुगनी साहू के घर में मानो उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। इस बार उनका नाम था जयशंकर प्रसाद, लेकिन इस बार भगवान ने उन्हें एक साधारण घर में पैदा किया था। पिछले जन्म में तो उन्होंने बहुत पैसा उड़ाया था, शायद इसीलिए उन्हें इस बार एक गरीब घर में जन्म लेना पड़ा।
2: अभी 8वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे प्रसाद कि पिता चल बसे। अब दुकान भी संभालनी थी, पढ़ाई छूट गई, पर साहित्य की ललक मन में थी। घर में रहकर पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन खुद साहित्यकारों की अगली पंक्ति में पहुंच गए। आज हालत यह है कि 8वीं दर्जा पास प्रसाद की रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और उनकी एक एक कविता पर लोग PhD कर रहे हैं।
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हिंदी नाटकों की बात करें तो पहला युग यदि भारतेंदु युग है तो दूसरा युग प्रसाद युग है।
2: बिल्कुल ठीक
4: बात, साफ है। भारतेंदु के ही समान प्रसाद भी युग पुरुष थे, खास करके नाटक व कविता के क्षेत्र में तो उनका कोई सानी नहीं था।
2: भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही तरह प्रसाद जी में भी राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और उनकी ये राष्ट्रभक्ति ही उनकी रचनाओं में बखूबी देखने को मिलती है।
4: जिस जमाने में अंग्रेज भारत के पढ़े लिखे लोगों को यह घुट्टी पिला रहे थे कि भारत तो शुरू से ही दीनहीन, पिछड़ा व दरिद्र रहा है और ये अंग्रेज ही हैं जो इस देश की तरक्की कर रहे हैं। तो उस जमाने में प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से यह दिखाया कि नहीं, प्राचीन काल से ही भारत एक महान एवं ओजस्वी देश है।
2: उन्होंने पश्चिमी विद्वानों द्वारा परोसा गया ये इतिहास नहीं माना कि सिकंदर ने भारत को हराया था। अपने चंद्रगुप्त नाम के नाटक में उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया कि भारत विजय का सपना देखने वाला सिकंदर इसलिए भारत के किनारे से ही लौट गया क्योंकि वो भारत की शक्ति को जान गया था।
4: बिल्कुल ठीक। और इसी नाटक में प्रसाद ने वह प्रसिद्ध गीत भी लिखा है जो आजादी की लड़ाई के लिए भारतीय लोगों का उद्बोधन गीत बन गया था। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं।
2: हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस गीत को गा देने से देशभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी।
4: हाँ, अगर कविताओं की बात करें तो प्रसाद को हिंदी छायावाद काव्यधारा के संस्थापकों में से एक माना जाता है। कामायनी नाटक उनका महाकाव्य तो न केवल छायावाद का बल्कि आधुनिक हिंदी का भी महाकाव्य है। यह महाकाव्य जीवन दर्शन से भरपूर है। इसकी अनेक पंक्तियां जीवन के अंधेरे पलों में राह दिखाती हैं।
2: इनमें से कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं।
4: जी।
2: प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद ने ये बताया कि विनाश से ही सृजन होता है। जब फूल बासी हो जाते हैं तो वे झड़ जाते हैं और फिर नए फूल एक बार फिर से निकलते हैं।
4: मैं रीति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। लज्जा सर की इन पंक्तियों में महाकवि का संदेश है कि लज्जा नारियों में शालीनता उत्पन्न करती है और उन्हें अनेक परेशानियों से बचाती है।
2: इसी सर्ग में वो विश्व प्रसिद्ध काव्य पंक्ति भी है जिसे अपने निबंधों में लिखते हुए हम बड़े हुए हैं, जिसका उपयोग वक्ता सभा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए करते हैं। तो लीजिए, आप पर भी अपनी छाप छोड़ने के लिए हम भी इसे आपको सुना देते हैं।
4: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष श्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
2: एक जमाने में संस्कृत भाषा में लिखा गया था कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः। इसके बाद प्रसाद जी ने ये पंक्तियां लिखकर समाज में स्त्रियों का महत्व बताया। अब कुछ बातें कामायनी के मूल संदेश की भी कर लेते हैं श्रोताओं।
4: बिल्कुल।
2: इस काव्य में महाकवि का संदेश है समरसता, संतुलन और समन्वय। मध्यम मार्ग की वकालत की गई है इसमें। अति से बचो, अति भोग से बचो, नहीं तो प्रकृति के कहर से बच नहीं पाओगे, ऐसा बताया गया है इसमें। आज जबकि हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया प्रकृति बार बार कर रही है, तो इन संदेशों को ग्रहण करने की कुछ ज्यादा ही जरूरत है हमें।
4: श्रोताओं, अब हम क्षमा चाहते हैं आपसे। सोचते हम यह रहे थे कि इस कार्यक्रम में वाराणसी के अधिक से अधिक साहित्यकारों के बारे में जानकारी आपको दे दें, लेकिन क्या करें, कबीर, तुलसी, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद जैसे युग पुरुषों पर चंद बातें करते करते हम भावनाओं में बह गए। अतः शेष बचे लोगों के लिए कुछ एक के बारे में कुछ खास बातें बताकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं।
2: श्रोताओं, एक जमाने में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चंद्रकांता कार्यक्रम आपको याद होगा। ये कार्यक्रम चंद्रकांता नामक जिस उपन्यास पर आधारित था, उसके लेखक देवनंदन खत्री वाराणसी के ही निवासी थे और उन्हें हिंदी में मिस्ट्री नॉवेल्स का जन्मदाता कहा जाता है।
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, राधा कृष्ण दास, मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी साहित्यकारों ने ही वाराणसी शहर को इज्जत बख्शी है।
2: श्रोताओं, चलिए अब मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी कुछ चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और हिंदी उपन्यास का पूरा एक काल ही प्रेमचंद काल कहलाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। 1930 के दशक में लिखा गया ये उपन्यास भारत के गांवों की इतनी संपूर्ण तस्वीर खींचता है कि इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य तक कहा गया है।
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। इसके रूसी रूपांतरण पर तो रशिया का सबसे बड़ा साहित्यकार पुरस्कार तक मिल चुका है। एक किसान होरी की कहानी है इसमें, जिसके जीवन काल की केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि घर के आंगन में एक गाय हो।
2: उसकी ये महत्वाकांक्षा पूरी होती भी है और नहीं भी। वो कर्जदार हो जाता है, किसान से मजदूर हो जाता है और अंत में दम तोड़ देता है। भारत के किसान की बेबसी और लाचारी अगर आपको देखनी हो तो गोदान उपन्यास आप अवश्य पढ़ें। होरी जब मरता है तो ऐसा लगता है कि हमारे भीतर भी कुछ दरक गया।
4: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम अतुल्य भारत। आज का विषय था वाराणसी से जुड़े हुए कुछ साहित्यकारों के बारे में चर्चा। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
2: और कंचन राजानी के।
4: अब हमें आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
0: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं झूला गायन, जिसे पेश कर रही हैं आस्था गोस्वामी।
2: आज की मेरी प्रस्तुति में मैं मुख्य रूप से झूले गाऊंगी, वो ब्रज का झूला हो या नंदगांव का झूला हो या पूरब का झूला हो। तो देर विल बी अ वैरायटी ऑफ झूलास एंड लेस ऑफ कजरीज। तो सबसे पहले मैं एक झूले का पद आपको सुना रही हूँ, जो कि राग देश में मैंने उसको सुरबद्ध किया है, और बोल है, चलो पिया वाही कदंब तल झूलें।

को बड़े प्रेम से सजाया है और बलराम और मोहन को उस पर विराजित करके उन्हें वो झूला झुला रही हैं। तो नंदगांव का ये एक झूला मेरी अगली प्रस्तुति है।

ब्रज के बाद अब मैं आपको पूरब में ले चलती हूँ और पूरब की एक चीज सुनाती हूँ। रंग अभी झूले का ही रहेगा। ये राग गौड़ मल्हार पर आधारित है बंदिश। ऋतु भी मल्हार गाने की ही है, इसीलिए इस बंदिश

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया झूला गायन, जिसकी प्रस्तुतकर्ता थी आस्था गोस्वामी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उम्र या को छोड़ो।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रेम पत्र, एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मन में मीठी तरंगे दौड़ पड़ती हैं। ऐसा लगता है मानो सरगम के सातों सुर मन की वीणा पर एक साथ झनक उठे हों, जैसे बसंत ऋतु की कोयल ने तड़प कर कुहू भरी हो, जैसे पपीहे ने बादलों को आवाज दी हो और जैसे सूखी धरती पर मेघ बरस पड़े हों। होता तो यह एक कागज का टुकड़ा ही है, पर इसे खोलते हुए हाथ कांपने लगते हैं। हर एक अक्षर आवाहन सा करता हुआ लगता है। न जाने किस लोक की महक समेटे रहता है यह कागज का टुकड़ा। इस दुनिया के किसी भी सुगंध में वो पागलपन कहां, वो मादकता कहां। हम में से बहुतेरे लोगों ने अपनी किशोर अवस्था में यह पागलपन अवश्य किया होगा, और क्यों ना करें। अजी कच्ची उम्र का यह विहल आनंद जीवन में दोबारा भला कहां मिलने वाला है। पर कुछ ऐसे भोले सनम भी होते हैं जिन्हें प्रेम पत्र लिखना उनके लिए पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। वो गणित के कठिन से कठिन सवालों को चुटकियों में हल कर लेते हैं, पर दिल के कागज पर प्रेम की यह पहेली हल करने में मात खा जाते हैं। तो लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है एक ऐसे ही भोले सनम की दास्तां, जो प्रेम पत्र लिखने की ऐसी कोशिश करता है कि उसमें वो फंसता ही चला जाता है।
2: बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, तुमको मुझसे प्यार है।
3: क्या बात है, आज मेम साहब का मिजाज बड़ा आशिकाना हो रहा है।
4: क्यों, क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ?
3: अरे नहीं, अभी तो हजार जाने तुम पे कुर्बान। एक बार बंद समर कर निकल जाओ कहीं ना, तो मनचलों के सीने पे सांप लौट जाए।
4: और
3: क्या?
4: नहीं नहीं, कुछ और कहो ना मेरी तारीफ में।
3: क्या सूझी थी मुझे जो मैंने आग में हाथ डाल।
4: क्या कहा, जरा जोर से कहना तो।
3: अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अगर मांग में सिंदूर न भरो तुम, तो न जाने कितने लड़के तुम्हें प्रेम पत्र लिखने के लिए कलम में स्याही के बजाय अपना लहू डाल दे।
4: सच? मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा, पर ये बताओ जी, आज तक तुमने क्यों नहीं लिखा मुझे कोई प्रेम पत्र?
3: क्या प्रेम पत्र? मैं? अरे जिंदगी में कभी जो काम नहीं किया वो काम मैं अब।
4: जिंदगी में शादी भी तो नहीं किया थे तुम? हर काम इंसान कभी ना कभी पहली बार ही करता है।
3: हाँ?
4: और सच पूछो तो ऐसे इंसान से लव लेटर पाने का मजा ही कुछ और है। उसके लव लेटर की भला क्या अहमियत, जो दुकान के कैश मेमो की तरह हमेशा ही काटता रहता है। हाँ जी, अब तो तुम्हें मेरे लिए एक प्रेम पत्र लिखना ही होगा। और वो जो खूबियां अभी अभी तुमने बताई थी ना मेरी, उनकी लिस्ट और बढ़ानी होगी।
3: मगर मेम साहब, ऐसे कैसे लिखा जा सकता है प्रेम पत्र? इसके लिए जुदाई होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, मन में कसक होनी चाहिए, पर आप तो हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहती हैं। ऐसे में वो सेंटीमेंट्स कहां से लाऊं मैं?
4: तो ठीक है जी, उसका भी इंतजाम किए देती हूँ मैं। रिंकू को लेकर मायके चली जाती हूँ।
3: क्या?
4: और क्या, फिर जब आप प्रेम पत्र लिखकर गुहार लगाएंगे ना, तभी लौटूंगी मैं। पपीहे की तरह पीव पीव करना, तभी झलक दिखलाएगी आपकी ये सावन की घटा।
3: अरे अरे, ऐसा जुल्म ना करिए श्रीमती जी। लीजिए, मैं आपके जाए बिना ही आपको प्रेम पत्र लिख देता हूँ। लिख देता हूँ कि मुझे आपसे बेहद बे इंतहा मोहब्बत है। हाँ, मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। और ये लीजिए मेरी सिग्नेचर, नीरज वशिष्ठ। बिल्कुल पक्की रसीद है ये। अब तो मैटर सॉल्व हो गया ना।
4: वाह रे मेरे कारोबारी सनम, और वाह रे आपका प्रेम पत्र, जैसे किसी कंपनी का वारंटी कार्ड भर रहे हो। अरे दिल की डीलिंग बिजनेस की तरह नहीं की जाती है। जब आप सच्चे दिल से पूरी सही फीलिंग के साथ लिखेंगे ना, तभी ये कस्टमर आपकी बात पर यकीन करेगा। और ये फीलिंग मैं आपको देकर ही मानूंगी। अरे मैके की जर्नी अब मेरी फाइनल है, कोई हाई कोर्ट कोई सुप्रीम कोर्ट इसमें अब दखल नहीं कर सकता है।
3: हे भगवान, आज सुबह सुबह किस गलत गली में घुस गया। त्रियाहट ने तो दशरथ की भी मिट्टी पलीत कर दी थी यार। त्राहिमाम प्रभु, इस मुसीबत से बाहर निकालो।
1: तो श्रोताओं, इस तरह से नीरज की धर्म पत्नी रितु त्रिया हट कर बैठती है कि उसका पति उसे प्रेम पत्र लिखे। शादी के 5 साल गुजर चुके हैं। पहाड़ी झरने की तरह गरजता प्यार तूफानी दौर से गुजर चुका है और अब तो नदी सागर में समा चुकी है, जहां का पानी शांत व ठहरा हुआ है। रितु इस पानी को पहाड़ पर चढ़ाना चाहती है। नीरज की हालत खराब है, रितु उलाहने देती है, नीरज धीरज का परिचय देता है। एक तरफ तलवार थी तो दूसरी तरफ ढाल। अब सुनिए आगे क्या होता है उन दोनों की दास्तान।
4: सुनो जी, मम्मी का फोन आया है।
3: क्या?
4: उनका बीपी है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
3: अरे,
4: बोली है कि जल्दी आ जाओ।
3: क्या यार, अभी हाल तक तो सब ठीक था और अब यकायक
4: ये। अरे यकायक ही तो सब होता है पति देव। अब देखो, यकायक ही मुझे मायके भी जाना पड़ेगा, पर मेरे पीछे मेरी उस ख्वाहिश का ध्यान जरूर रखना पति देव। नहीं तो अब मायका ही होगा मेरा परमानेंट ठिकाना, फिर ना कहना कि
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा जुल्म ना करो मेरी जान मुझ पर। आपके बिना तो मुझे एक पल भी पहाड़ लगता है यार। आप कहती हैं कि
4: डिसीजन फाइनल है, जाना तो होगा ही, पर वापसी आप पर डिपेंड करती है।
3: कैसे?
4: जितनी जल्दी आपका प्रेम पत्र मुझे मिलेगा उतनी ही जल्दी मेरी रवानगी डलेगी वहाँ से।
3: क्या टेलीफोन से काम नहीं चलेगा?
4: हरगिज नहीं, रिटर्न एविडेंस बर्बल से ज्यादा पावरफुल होता है।
3: एसएमएस?
4: बिल्कुल नहीं, मुझे डिटेल्ड ब्यौरा चाहिए। मेरे बिना कैसा लगा तुम्हें, कैसे तुम्हारे दिन गुजरे, कैसी रातें गुजरी, कैसी नींद आई और कितना याद किया तुमने मुझे, तुम्हारे पूरे एहसास चाहिए मुझे। मेरी यही वापसी की टिकट होंगे, समझे?
3: इतना कुछ लिखना होगा प्रेम पत्र में? ब्योरे वार दास्तान, वेरी डिफिकल्ट, हॉरिबल।
4: ताजमहल बनवाने से ज्यादा तो मुश्किल नहीं है।
3: अरे ताजमहल कोई शाहजहां ने अपने हाथों से थोड़ी ही बनाया था यार। बादशाह सलामत थे, वो हुक्म दे दिया और बन गया ताजमहल। तुम कहो तो मैं भी किसी एक्सपर्ट से लेटर।
4: हे राम, कैसा जमाना आ गया है अब, प्रेम पत्र भी लिखवाने के लिए लोग एक्सपर्ट के पास जाना चाहते हैं। शेरो शायरी तो फीस चुकाकर मिल ही जाती है, और अब ये लव लेटर भी। वाह जी वाह। पर सुनो जी, मैं बता देती हूँ, कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी इस मामले में। अगर ब्लैक लिस्टेड हो गए ना आप, तो टेंडर भी भरने को नहीं मिलेगा। काम पूरा करने की बात ही छोड़िए। सुनो जी, अपना ख्याल रखना। और हाँ, सुबह जल्दी उठकर घूमने जरूर जाना, ताजी हवा खाना, पर नजर नीचे रखना। हाँ, और सुनो, नौकरानी को मैंने मना कर दिया है, जवान जहान है, क्या ठिकाना उसका।
3: क्या? अब घर का झाड़ू पोछा भी मैं करूंगा क्या, क्या, क्या, क्या?
4: अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छे पति का धर्म है।
3: अरे यार, तुम्हारे अलावा मेरी इज्जत को भला और किससे खतरा हो सकता है। एक मिनट, ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हो रहा है।
4: जा तो मैं रही हूँ जी। हाँ। पर मुझे ना बड़ी रुलाई छूट रही है, मन कर रहा है कि उतर पड़ूं गाड़ी से। सच तुम्हारे बिना रहने का सोचकर ही जी घबराने लगता है।
3: अरे तो उतर पड़ो। इतना प्यार हमारी आंखों में उमड़ रहा है, इसके आगे भी प्रेम पत्र की जरूरत लगती है क्या तुम्हें?
4: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आज दिल से नहीं दिमाग से काम लेने की जरूरत है। पक्का इरादा, कड़ा अनुशासन। रिंकू को भी मैं इसलिए साथ लेके जा रही हूँ जिससे तुम्हें तन्हाई शिद्दत से महसूस हो।
3: तुम औरतें तो यार इतनी दूर तक कैसे सोच लेती हो? बाप रे, मैं तो सोच रहा था कि मेरा भार हल्का करने के लिए तुम रिंकू।
4: हाँ, और क्या, अरे भार हल्का ही तो हो रहा है तुम्हारा भाई, अकेले जन का काम रहेगा, चटपट निपटा लेना तुम। और फिर तन्हा बैठकर लव लेटर लिखना, और जब वो लव लेटर पूरा हो जाए ना तो मुझे पोस्ट कर देना।
3: सफर में अपना ख्याल रखना, पहुंचते ही फोन करना।
5: पापा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।
4: गाड़ी तो छोड़ो, स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी छोड़ो।
3: अरे बेटा रिंकू, मम्मी को तंग ना करना, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करना।
4: बाय
5: बाय
4: बाय।
1: रितु के जाने के बाद नीरज के एक दो दिन तो बड़ी मस्ती में गुजरे। जब चाहो खाओ, जब चाहो सो, जब चाहो उठो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रितु होती तो कहती, यह ना करो, यह ना खाओ, अब टीवी बंद कर दो, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। कच्ची नींद में उठा देती और कहती, फ्रेश होकर टहलने निकलो। जिंदगी जैसे जेल मैनुअल पर चल रही थी, पर अब आजादी की हवा में सांस लेने का मौका मिला था। लेकिन नहीं, अजी अकेलेपन की आजादी डराने वाली थी। भला शमशान की शांति भी किसी को अच्छी लगती है? नीरज को आटे दाल का भाव याद आ रहा था। अब सुनिए आगे की दास्तान।
3: यार चाय की पत्ती कहाँ रखी है? पानी उबला जा रहा है। ये औरतें बिना चाय चीजें ना जाने कहाँ कर रखती है। आया आया भाई आया, तुम्हें भी यार अभी बजना था। हेलो, अच्छा अब जाके फोन करने की फुर्सत मिली मैम साहब को। धन्य भाग मेरे जो आपको मेरी याद आई। क्या शेर? नहीं नहीं, सवा शेर कहिए जनाब। क्या क्या कह रही हैं? यही काबिलियत में लव लेटर लिखने में भी? अरे क्या यार, मेरी अग्नि परीक्षा क्यों ले रही है पत्नी जी? हैं? नहीं, मैं पार न कर पाऊंगा इसे। क्या कहती हैं? उसके बिना आप नहीं आएंगे, करना ही पड़ेगा। अरे यार, हम पतियों के लिए तो होम मिनिस्ट्री ही सुप्रीम कोर्ट है, कोई मर्सी अपील भी नहीं होती इसके फैसले पर। ओके ठीक है ठीक है, करता हूँ यार, करता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, बाय बाय बाय बाय।
1: रितु को गए हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। नीरज समझ चुका था कि उसकी मोम सी रितु अब आयरन लेडी बन चुकी है, जिसकी निगाह अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर थी, और वो लक्ष्य था प्रेम पत्र। प्रेम पत्र लिखना ही पड़ेगा, कोशिश करता है नीरज, और वो पूरा ब्योरा लिखने बैठ जाता है। आप भी सुनिए क्या लिखा उसने अपने प्रेम पत्र में।
3: मेरी प्राणेश्वरी, तुम्हें गए अभी 4 दिन ही हुए हैं। इन 4 दिनों में ही मुझे तुम्हारी कीमत पता लग गई। तुम्हारे रखे सामान किचन में मिलते ही नहीं थे, अब जाकर कुछ कुछ उनकी लोकेशन समझ में आने लगी है। कल की बात है, दाल फ्राई करते हुए मेरे चेहरे पर घी का छींटा पड़ गया। रोटियां नक्शों की तरह बनती हैं, फूलती भी नहीं, कच्ची रह जाती हैं। नतीजा ये होता है कि ठीक से पचती भी नहीं, खट्टी डकारें आती रहती हैं। हाँ, तुम्हारे पीछे एक बड़ा नुकसान हो गया। कल नमक ढूंढ रहा था तो अचार की भरनी गिरकर टूट गई। कितनी मेहनत से डाला था तुमने। अदरक तुमने फ्रिज में ऐसे रखे थे जैसे कोई लॉकर में ब्लैक मनी रखता है, और अंत में इनकम टैक्स वालों की तरह रेड करके निकालना पड़ा मुझे। गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, इसलिए कोने वाली होटल से एक खाना मुकर्रर कर दिया है। दुआ करना सेहत सलामत रहे। सब्जी वालों को पता नहीं कैसे टैकल करती थी तू, मुझे तो सब दिन दहाड़े लूट लेते हैं। तुम होती तो ऐसा ना हो। छत पर कपड़े फैलाए थे, क्लिप लगाना भूल गया था, सब उड़ गए। सच, तुम्हारे बिना समझ में आता है कि बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। अरे हाँ, तुम्हारी मम्मी का क्या हाल है? अब तो उनका बीपी नॉर्मल होगा। रिंकू शैतानी तो नहीं करती? हाँ, तो ये रहा तुम्हारा रिटर्न टिकट। तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है, अब लौट आओ। तुम्हारा पत्नी पलायन पति।
1: कुछ ही दिनों के बाद नीरज को अपने प्रेम पत्र का जवाब मिल गया। आंखों में खुशी और दिल में उत्साह था। इकलौती पत्नी का पहला पहला पत्र था। खोलकर पढ़ा उसने।
4: वाह रे मेरे भोले सनम, आपके लव लेटर ने तो बड़ा ही मायूस किया। वादा वफा न रहा। ये आपने लव लेटर लिखा है कि डायरी? मैंने तो दिल का हाल बयान करने के लिए लिखा था और आपने गृहस्थी का हाल बयान कर दिया। ये लव लेटर नहीं, ये रोज नामचा है। क्या मेरी कीमत बस इतनी ही है कि मैं आपकी गृहस्थी चलाती रहूं? सोचा था कि जुदाई में आप मजनू बन जाएंगे, पर आप तो नहीं। नहीं नहीं, ये रिटर्न टिकट वैलिड नहीं है। इसके सहारे सफर करना बेटिकट सफर करने जैसा होगा। एक बार आप फिर कोशिश कीजिए। मम्मी का बीपी पहले भी ठीक था, हाँ अब जरूर बढ़ गया है। सोचती हैं कि मैं लड़कर आई हूं आपसे। आप सेहत का ख्याल रखिएगा और इज्जत का भी। आपके लव लेटर के इंतजार में, आपकी ऋतु।
1: प्रेम पत्र को पढ़कर के नीरज की हवा खराब हो गई। जिसे ब्रह्मास्त्र समझकर चलाया था वो तो लकड़ी का तीर निकला। अब क्या करे, वह इस कला में माहिर न था। सोचा क्यों ना अपने दोस्त अशोक की मदद ली जाए। आखिर दोस्त वही होता है ना जो मुसीबत में काम आए। तो नीरज पहुंच गया अशोक के घर उससे सलाह लेने।
6: कौन? अरे नीरज तू भाई, सुबह सुबह यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए?
3: अरे यार, भीतर तो आने थे पहले कि दरवाजे पर ही पूरा इंट्रोगेशन कर डालेगा।
6: आना आना, बैठ। क्या लेगा तू? अरे श्यामा, जरा दो कप चाय तो पिलाना गर्मा गर्म।
3: यार चाय वाय तो बनती रहेगी, पर इस वक्त मैं बड़ी मुसीबत में हूँ।
6: क्या हो गया तुझे कि सांड को तूने लाल कपड़ा दिखा दिया जो जान बचा कर यहाँ भागा है?
3: अरे यार, सांड से पीछा छुड़ाना तो फिर भी आसान है, पर ये प्रेम पत्र।
6: प्रेम पत्र यानी कि लव लेटर? वाह यार, किसकी मती मारी गई है जो तुझ जैसे शादीशुदा को लव लेटर लिखेगा?
3: भाई मती किसी और की नहीं, मेरी खराब हो रही है। समझ में नहीं आता कि कैसे प्रेम पत्र लिखूं मैं, जिस काम का कोई तजुर्बा ही नहीं है वो आखिर। यार मैं।
6: वाह भाई वाह, तो ये बात है। भाभी कहाँ है जो तू?
3: वो मायके गई हुई है बाल गोपाल को लेकर।
6: और तू मौके का खूब फायदा उठा रहा है, प्रेम पत्र लिख रहा है?
3: नहीं नहीं,
6: अब जब प्रेम का पत्र है तो प्रेमिका भी तो होगी ना कहीं ना कहीं। बच्चू आने दे भाभी को, फिर देख मैं किस तरह।
7: लीजिए भाई साहब, चाय लीजिए।
6: खैर ये ले, पहले चाय पी ले तू, फिर तुझे पानी पिलाता हूँ जीवा।
3: अरे कोई प्रेमिका प्रेमिका नहीं है यार, तो? तेरी भाभी को ही प्रेमिका बनने का जुनून सवार हुआ है।
6: अच्छा?
3: हाँ, वो बोलती है मुझे प्रेम पत्र लिखो तब लौटूंगी मैं। अब तू ही बता यार, मैं क्या करूं?
6: ओ, तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया?
3: तूने बताने कब दिया? एकदम से राशन पानी लेकर चढ़ बैठा मेरे ऊपर।
6: खैर खैर, बोल दोस्त, क्या मदद मांगता है तू?
3: यार एक चिट्ठी लिखी थी उसे, जवाब में लिखती है फीलिंग के साथ लेटर लिखो तब लौटूंगी। अब तू ही बता के।
6: ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम कर।
3: हाँ,
6: एक हिट आइडिया देता हूँ तुझे।
3: बता यार।
6: कुछ फिल्में देख डाल, कुछ शेर और शायरी की किताबें पढ़ डाल।
3: हाँ।
6: किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा रख आंखों के सामने।
3: हाँ।
6: क्योंकि जब खूबसूरती सामने होगी तो अल्फाज खुद ब खुद निकलने लगेंगे। बस तैयार हो जाएगा तेरा प्रेम पत्र।
3: थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक्स। अब बाद में मिलता हूँ तुझसे।
6: पहले चाय तो खत्म कर ले भाई।
3: तो वो तू पी लेना। बाय एंड अगेन थैंक यू यार।
6: बाय बाय।
1: नीरज के हाथ फार्मूला लग चुका था, बस उसका इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए थी। अशोक का एक एक शब्द उसने पकड़ा। अशोक ने कहा था कि फिल्में देखो, शेर व शायरी की किताबें पढ़ो, खूबसूरत लड़की का चेहरा अपनी आंखों के सामने रखो। अब उसने कई फिल्में देख डाली। नई फिल्में उसको जमी नहीं, तो उसने पुरानी फिल्मों का सहारा लिया। शेर व शायरी की किताबें भी कई पढ़ी, पर बेचारा खूबसूरत लड़की कहां से लाता? अकल काम नहीं कर रही थी। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। मार्केट जाकर के एक खूबसूरत सा पोस्टर उठा लाया और दीवार पर चस्पा कर दिया। साथ ही एक सुगंधित लेटर हेड भी ले आया, जिसके एक कोने पर दो दिल बने हुए थे और दिल में एक तीर चुभा हुआ था। सारी सामग्री इकट्ठी करके अब वो लव लेटर लिखता है। आइए आप भी सुने उसका लव लेटर।
3: हा हा हा हा, ये पोस्टर भी लग गया। आप ठीक है। इसकी खूबसूरत आंखों में डूबकर, गुलाब की कली जैसे इसके होठों को देखकर, खिलती धूप सी इसकी मुस्कुराहट में नहाकर, हाँ, अब लव लेटर लिखने की फीलिंग पैदा की जा सकती है भीतर से। एक काम और करता हूँ, बाजार से रंगीन लेटर पैड और खरीद कर लाता हूँ, वही जिस पर तीर से बिंधे हुए दिल बने रहते हैं, जिससे भीनी भीनी खुशबू आती रहती है, तब प्यार का एहसास और भी घना हो सकेगा। बिल्कुल कंफर्म रिटर्न टिकट बनेगा तब, कोई वेटिंग शेटिंग नहीं। अब हो गया प्रणेश्वरी तुम्हारा लव लेटर तैयार। एक बार पढ़ तो लूं, कैसी फीलिंग आती है। प्रिय प्रणेश्वरी, तुम्हें जाने आरजू कहूं या आरजू ये जहां कहूं, तुम ही बता दो मुझे, मैं तुम्हें क्या कहूं। तुम्हारी झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को मन करता है। जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है मानो कोई कानों में मीठी मीठी मिश्री खोल रहा हो। जब तुम कुछ बोलती हो तो दिल में सितार बजता है। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे काल में जो डिंपल पड़ता है वो तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। तुम्हारे बिना ना नींद आती है ना चैन आता है, दिल तुमसे मिलने को बेचैन हो उठता है। चांद में तुम नजर आती हो, सितारों में तुम नजर आती हो, रोटी में तुम, खाने की हर बोटी में तुम। जिस शक्ल को भी देखता हूं बस तुम्हारी ही शक्ल दिखती है। जुदाई के पल अब बर्दाश्त नहीं होते हैं। अब तुम ही बताओ कब मिलेंगे हम। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा प्राणों से भी प्यारा। आ रही है, आ रही है फीलिंग, आ रही है। अब एक बार अशोक को और दिखला देता हूं।
6: ये क्या लिखा है रे बुद्धू तूने? ऐसे भी कहीं प्रेम पत्र लिखते हैं? अरे मैंने तुझे फिल्में देखने के लिए कहा था, फिल्मों के गाने और डायलॉग चुराने के लिए नहीं। औरतें फौरन ताड़ लेती हैं कि बनाया जा रहा है उन्हें। अरे नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए इसमें
3: यार। नेचुरल एक्सप्रेशन ही बनता मुझसे तो तेरी मदद क्यों लेता? मानता हूं कि सब कुछ अननेचुरल है, पर करना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरी भाभी का कोप भवन टूटने वाला नहीं है।
6: अच्छा यार, एक काम कर तू।
3: बोल।
6: अभी तो रह नहीं दे तू उसे, मैं जरा फुर्सत निकाल कर आता हूँ तेरे पास, फिर मैं खुद बैठ कर लिखवा दूंगा तुझे। उसे भाभी को भेजना तू, पर ये जो एंटीसेंट लिखा है ना तूने,
3: हाँ।
6: इसे तो रहने ही दे, भगवान के लिए लव लेटर लिखे। अरे भाभी वापस तो नहीं आएगी, उल्टे तुझे नौटंकी की बात समझेगी।
3: आता हूँ भाई, आता हूँ। कौन टपक पड़ा यार? अरे तुम, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। अरे तुमने तो ठानी थी क्या?
4: ठानी तो बहुत जमकर थी, पर क्या करूं पतिदेव, आप पर तरस आ गया। और सच कहूं तो आपके बिना रह ही नहीं सकती हूं मैं। सोचना चाहिए था मुझे, आप जैसे भोले भाले आदमी भला क्या जाने प्रेम पत्र लिखना। सतयुग के पुरुष ठहरे आप, आज के छोरों जैसी लंपटता आप में कहाँ है भला।
3: क्या बात है। आपने अपना प्रण तोड़ दिया इस नाचीज के लिए।
4: मैं तो प्राण दे दूं पति देव, प्रण तो

0: कोप के गोले चल रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया था दिन भर में, आप भी सुनिए।
1: वाह रे मेरे भोले सनम, अच्छी वफा निभाई तुमने। तुम भी आखिर बाकियों की तरह ही निकले ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी, रंगोसी और।
2: अरे काहे मुहावरेदार गालियां दे रही हो भाई, साफ साफ बताओ कि क्या हो गया। सुबह सुबह की स्वच्छ ऋतु अचानक इतनी गर्जन तर्जन क्यों कर रही है?
1: अरे अपनी किस्मत को रो रही हूँ और क्या।
2: क्या?
1: अरे क्या समझा था तुम्हें, और तुम क्या निकले? कहते थे प्रेम पत्र लिखना ही नहीं आता, और यहाँ तो पूरा प्रेम सागर ही उमड़ा जा रहा है।
2: क्या कह रही हो?
1: ये देखो अपना कच्चा चिट्ठा, हाथ कंगन को आरसी क्या? अरे मेरे पीछे इश्क फरमा रहे थे तुम।
2: क्या कह रही हो?
1: सींग कटाकर बछड़े बन रहे थे तुम, तुम्हारा पाप तुम्हारे सामने है।
2: पाप? ओहो, तो ये बात है। अरे यार ये पाप नहीं, मेरा बेवकूफी नामा है बेगम। ये आपके लिए ही लिखा था मैंने, किसी और के लिए नहीं। आपके सर की कसम।
1: मेरे सर की कसम ना खाओ जी, खाना है तो उसी की कसम खाओ जो तुम्हारे सपनों की रानी है।
2: अरे तुम
1: उसकी इबारत पढ़ो ना तुम, खाने में तुम, खाने की हर बोटी में तुम। मुझे पागल समझा है क्या? 15 दिन बाद लौट कर आ रही हूँ मैं, और मैं मान लूं कि ये लाइन तुमने मेरे लिए लिखी है?
2: अरे हाँ जी, 100% ही तुम्हारे लिए लिखी थी यार। इमोशन पैदा करने के चक्कर में ये बेवकूफी हुई थी मेरे से। हाँ, दरअसल एक दिन पहले ही सपने में आई थी तुम।
3: बहुत अच्छे। हाँ, और ये तुम्हारी झील सी आंखों में डूब जाने को मन करता है, और थोड़ी सी भी गैरत बची हो ना तुम में तो तुम तालाब में जाकर डूब मरो, या मुझे डुबो दो और फिर मजे से रहना उसके साथ में।
2: अरे यार धर्म पत्नी जी, ये लाइन तो फिल्मों के चक्कर में आ गई यार। सच मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद नहीं बनाई है इसे।
1: और ये आगे भी तो देखो।
2: अरे
1: रहन दो, बस। अब एक झूठ छुपाने के चक्कर में 1000 झूठ मत बोलो जी, फंसते ही चले जाओगे तुम।
2: अरे यार कैसे तुम्हें समझाऊं प्राणेश्वरी, प्रेम पत्र लिखते समय ये सब झूठ सच लिखना पड़ता है यार, नहीं तो प्रेम पत्र का वजूद ही खत्म हो जाएगा दुनिया से। सब सच लिख दिया तो प्रेमिका पत्थर फेंक कर मारेगी अपने प्रेमी को।
1: अच्छा तुमने कहा और मैंने मान लिया है।
2: हाँ हाँ मान भी जाओ मेरी बात यार, ये लेटर मैंने तुम्हारे लिए ही लिखा था, तुम्हारे लिए ही लिखा था।
1: तुम मुझे बरगलाओ नहीं। और ये देखो ये तुम्हारा, ये क्या लिखा तुमने? जब तुम हंसती हो ना तो तुम्हारे गाल पर जो डिंपल पड़ता है ना, तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। तुम ही बताओ मेरी कचोरी जैसे गालों में कब डिंपल पड़ता है?
2: अरे यार।
1: और आगे ये देखो क्या लिखा है, चांद में तुम, सितारों में तुम, रोटी में तुम, आईने में तुम, हर शक्ल में तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है।
2: अरे क्या
1: बड़ी आंखें सेकी जा रही थी मेरे पीछे।
2: अरे यार
1: इश्क का भूत तो ये पोस्टर भी बयान कर रहा है, जिसे आंखें सेकने के लिए तुमने।
2: अरे यार इस पोस्टर में भी तो तुम ही हो जाने मन, जमीन पर आसमां में तुम ही हो जाने मन।
1: ओहो बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं मेरे सरकार, कहां तो प्रेम पत्र लिखने के नाम पर हाथ पांव ठंडे पड़े जा रहे थे, और कहां पूरे प्रेम कवि ही बन चुके हैं। किसका कमाल है ये बताओ मुझे? पर मुझे क्या, मैं तो वापस जा रही हूँ। नादान थी मैं जो तुम्हें भोला समझ बैठी। अरे तुम तो भेड़ की खाल में भेड़िया हो।
2: अरे जाने मन क्या।
1: अच्छा हुआ जो तुम्हारा असली रूप दिख गया, नहीं तो जिंदगी भर में इसी मुगालते में रहती कि मैं।
2: ऐसा जुल्म ना करो जी, तुम सुनो तो यार, एक काम करो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता?
1: बिल्कुल नहीं।
2: तो तुम अशोक को तुम बुला लो, तुम खुद तस्दीक कर लो अपने हिसाब से, जैसा तुम चाहो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा बीच में, चुपचाप बैठा रहूंगा यार, प्लीज। ऐसा
4: क्या हुआ भाभी, इतनी इमरजेंसी में आपने क्यों बुला लिया मुझे?
1: क्या कहूं भैया, कुछ दिनों के लिए मैं मायके क्या चली गई, इन्हें तो सिंह ही निकल आए। अरे आशिकी करना शुरू कर दिया, एक बेटी के बाप हैं पर हरकत
3: मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। तुम खुद ही देखो कैसा बेहुदा लव लेटर लिखा है इन्होंने अपनी उसको। अरे वो तो यकायक में आ गई और ये दे नहीं पाए उस कलमुही को, नहीं तो
4: ओहो तो ये बात है। अरे ये बुद्धू है भाभी, आपको वापस बुलाने के लिए न जाने क्या क्या बेवकूफियां करता रहा है ये। मुझे मालूम है इस लव लेटर के बारे में, मैंने ही तो कहा था इससे कि इसे पोस्ट ना करे। फंस गया बेचारा। अरे पोस्ट कर दिया होता आपको तो कम से कम आज आप इस बेचारे पर शक तो ना कर रही होती।
3: सच कह रहे हैं भैया आप, ये भी यही कह रहे थे पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ।
4: 100% सच कह रहा हूँ भाभी। आप चाहें तो श्यामा से कंफर्म कर लीजिए पूरा मैटर, उसे बताया है मैंने।
3: नहीं नहीं अब इसकी जरूरत नहीं है, सचमुच ये भोले सनम ही है। बेचारे इतना जुल्म सहते रहे मेरा, और मुझे माफ कर दो मेरे भोले सनम, माफ कर दो।
0: तो श्रोताओं ये था हमारा हास्य नाटक लव लेटर, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
5: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
6: मैं हूं मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
5: जो लौट के घर न आए।
7: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को मेरा शत शत प्रणाम।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

मैं अशोक चक्रधर FM रेडियो का अभिनंदन करता हूं जो 90.8 पर आप सुनते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इसका प्रसार और प्रचार निरंतर हो रहा है। ये रेडियो आज़ाद हिंद है। आज़ाद हिंद हमें याद दिलाता है नेताजी सुभाष की, याद दिलाता है हमारे स्वाधीनता संग्राम की, याद दिलाता है हमारे गौरव की। इस गौरवशाली परंपरा को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, हमारी शांतिकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। शुभ संध्या, संध्या वंदन।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के तीसरे सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक। देवता हैं आप्री सूक्त, इद्म अथवा समिद्ध अग्नि, नराशंस, इड, बहिर, दिव्य द्वार, ऊषा सानाक्ता, दिव्य होतागण, प्रचेतस। देवियां हैं सरस्वती, इड़ा, भारती, त्वष्टा, वनस्पति, स्वाहाकृति, और छंद है जगती।
1: समिद्धो अग्निर्निहितः पृथिव्यां प्रत्यं विश्वानि भुवनान्यस्थात् होता पावकः प्रदिवः सुमेधा देवो देवान्यज्यत्वग्निर्हन् प्रदीप्त अग्निदेव पृथ्वी पर स्थापित होकर समस्त लोकों में व्याप्त हैं। श्रेष्ठ बुद्धि वाले, पवित्र बनाने वाले, हविष्यान्न ग्रहण करने वाले तथा अत्यंत तेजस्वी एवं पूज्य अग्निदेव देवों की पूजा करें। नराशंसः प्रति धामान्यंजन तिस्रो दिवः प्रति महना स्वर्चिः घृतप्रुषा मनसा हव्यमुन्दन्मूर्धन्यज्ञस्य समनक्तु देवान्। सबके द्वारा स्तुत्य ये अग्निदेव पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश तीनों लोकों को अपने महान सामर्थ्य से प्रकाशित करते हुए स्नेहयुक्त मन से हविष्यान्न को ग्रहण करते हुए यज्ञ स्थल में अपने दिव्य प्रभाव को प्रकट करते हैं। ईडितो अग्ने मनसा नो अर्हन् देवान्यक्षि मानुषात् पूर्वो अद्य स आवह मरुतां शर्धो अच्युतमिन्द्रं नरो बर्हिषद् यजध्वम्। हे पूज्य अग्निदेव, हमारे हित साधन के लिए हमारे पूजन को स्वीकार कर मनुष्यों से पूर्व ही आप श्रेष्ठ मन से देवों की पूजा करें। हे अग्निदेव, सामर्थ्यवान मरुत देव तथा कभी भी परास्त न होने वाले इंद्रदेव को हमारे पास लाएं। हे मनुष्यों, यज्ञ स्थल में स्थापित अग्निदेव की उपासना करो। देव बर्हिवर्धमानं सुवीरं स्तीर्णं राये सुभरं वेद्यस्याम घृते नाक्तं वसवः सीद तेदं विश्वे देवा आदित्या यज्ञी यासः। हे कुशाओं में स्थित अग्निदेव, यज्ञ कुंड में बढ़ते हुए आप हमें वीर संतति तथा श्रेष्ठ धन प्रदान करें। हे वसुओं, आदित्यों तथा विश्वे देवों, घृत से संचित एवं फैलाए गए कुश पर आप स्थापित हों। विश्रयंता मुर्वीया हुयमाना द्वारो देवी ही सुप्रायणा नमोभिहि व्यच्यस्वतीर्वि प्रथंता मजुर्या वर्णम पुनाना यशसम सुवीरम। नमस्कार पूर्वक आवाहित होने वाला विस्तृत तथा सुखकर यह जो दिव्य द्वार यज्ञाग्नि है, मानव इसका सहारा ले और संपर्क जोड़ने वाला जीर्ण न होने वाला यह दिव्य द्वार श्रेष्ठ संतति एवं सुयश प्रदान करते हुए सतत विकासशील रहे।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के तीसरे सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम भक्ति संगीत में, जहां सुरों में बसते हैं भगवान के नाम और हर धुन में झलकती है भक्ति की भावना। आइए सुनते हैं ये कृष्ण भजन।

जीवन की चाल धीमी भी हो तो चलिए जरूर, क्योंकि रुक जाना सबसे बड़ी हार है। हर छोटा कदम भी मंजिल के करीब ले जाता है।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम भक्ति संगीत, और इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं समाप्त होता है। 90.8 MHz पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन, अनुशीलन और विश्लेषण के लिए वहां की पुरा संपदा और प्राचीन पौराणिक ग्रंथ व साहित्य आधारभूत सामग्री के रूप में काम आते हैं। ये एक वैज्ञानिक शोध होता है जिसमें साहित्य में प्रयुक्त शब्दों को उसके ऐतिहासिक संदर्भों और मूल रूप में जांच परखकर सांस्कृतिक मूल्यांकन किया जाता है। हस्तलिखित ग्रंथों की शुद्धता उसकी भाषा पर गंभीर विवेचन होता है कि नकल के दौरान कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। प्राच्य विद्या के ऐसे ही एक गंभीर अध्येता थे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जो प्राच्य विद्या के एक युगांतरकारी विद्वान के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पश्चिमी चिंतकों से अप्रभावित रहकर उन्होंने अपनी मौलिक मनीषा के बल पर स्थापनाएं प्रस्तुत की। 6 जुलाई सन 1837 को पश्चिमी भारत के रत्नागिरी जिले में स्थित मालवण में उनका जन्म हुआ। अरब सागर की लहरों से किलोलित ये समुद्री तट अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। उनके पिता मालवण के तहसीलदार के यहाँ मुंशी थे। उन दिनों मालवण में अधिक स्कूल नहीं थे। बड़ी कठिनाई से उनकी आरंभिक शिक्षा पूरी हुई। सौभाग्य से उनके पिता गोपाल भंडारकर का तबादला रत्नागिरी के राजस्व विभाग में हो गया। रत्नागिरी में उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। 1853 में रामकृष्ण भंडारकर ने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में उच्च अध्ययन के लिए दाखिला लिया। यहाँ उन्हें दादा भाई नौरोजी जैसे प्रतिभावान शिक्षक मिले, जिन्होंने उनके सोच और भारत की प्राचीन परंपराओं के प्रति उनके प्रेम को जागृत और पोषित किया। इसी के चलते उन्होंने अंग्रेजी साहित्य, गणित और प्राकृतिक विज्ञान में रुचि होते हुए भी संस्कृत और पाली भाषा में विशेष अध्ययन किया। इसके कारण उन्हें भारत के गौरवमयी अतीत के अध्ययन में बहुत सहायता मिली। सन 1862 में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की परीक्षा पहले बैच के छात्र के रूप में पास की, फिर वहीं से एमए की परीक्षा भी पास की। दोनों ही परीक्षाओं में वो प्रथम आए थे। कुछ समय तक सिंध के हैदराबाद और रत्नागिरी के राजकीय विद्यालय में वो हेडमास्टर रहे। इसके बाद एल्फिंस्टन कॉलेज में व्याख्याता के पद को सुशोभित किया। आगे चलकर पूना के डेकन कॉलेज में संस्कृत के पहले भारतीय प्रोफेसर बने। अब पूना ही उनके अध्ययन और गवेषणा का केंद्र बना, जहां उन्होंने अपने सपने साकार किए और इतिहास में शोध की उच्चतम परंपराएं स्थापित कीं।

15 जनवरी सन 1784 को कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। इसके माध्यम से पश्चिमी विद्वानों ने भारत के प्राचीन ज्ञान भंडार पर विधिवत अध्ययन प्रारंभ किए। 1804 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की शुरुआत हुई। इन संस्थाओं ने प्राचीन पांडुलिपियों की खोज, संग्रहण और संरक्षण का काम शुरू किया। 1821 को पूना में डेक्कन कॉलेज की शुरुआत हुई। इस संस्था को पेशवा द्वारा प्रदत्त धनराशि से संचालित किया जाता था। मूलतः संस्कृत के अध्ययन और शोध के लिए स्थापित इस संस्था में बाद में अंग्रेजी, पुरातत्व, समाज विज्ञान और इंडोलॉजी विषय जोड़े गए। डेक्कन कॉलेज में रामकृष्ण भंडारकर लगभग 13 वर्ष तक प्रोफेसर रहे। यहीं से उन्होंने भारतीय पौराणिक साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ किया। पुरातत्व विषय में उन दिनों विद्वानों को अधिक रुचि नहीं थी। ऐसे में रामकृष्ण ने पाली, मागधी, प्राकृत आदि भाषाओं का विधिवत अध्ययन करके उनके प्राचीन ग्रंथों की खोज और अनुसंधान का काम शुरू किया। प्राकृत भाषाओं की ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन कर शिलालेख, ताम्रपत्र और ताड़पत्रों पर उपलब्ध साहित्य पर काम आरंभ किया। वस्तुतः एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े यूरोपीय विद्वान साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से भारत की ज्ञान संपदा का आकलन कर रहे थे। इसके उलट रामकृष्ण भंडारकर ने संस्कृत और पाली भाषा के ज्ञान के सहारे 4000 वर्षों के भारत के गौरव साहित्य के हिंदू दर्शन और राष्ट्रवादी विचारों को प्रकाश में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। डेक्कन कॉलेज का पुरातत्व विभाग ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की खुदाई कर महत्वपूर्ण साक्ष्य भी एकत्रित करता था, जो आगे गवेषणा के काम में आते थे। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इसके महत्व को ध्यान में रखकर हस्तलिखित ग्रंथों की खोज और उनके संकलन का महत् कार्य रामकृष्ण भंडारकर को सौंपा। उन्होंने गहन शोध और परिश्रम से 5 विशाल खंडों में ये कार्य पूरा किया। ये ग्रंथ पुरातत्व के इतिहासकारों के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ हैं। 1883 में रामकृष्ण भंडारकर को वियना में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया। वहां पर उनके अध्ययन की गंभीरता और विश्लेषण से सभी लोग बहुत प्रभावित हुए तथा उन्हें CIE के सम्मान से विभूषित किया गया। ये फ्रेंच सम्मान विश्वव्यापी सहकारिता तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय और योगदान के लिए दिया जाता है। लंदन में आयोजित ओरिएंटल स्टडीज के सम्मेलन में भी पाश्चात्य विद्वानों ने उनके अध्ययन और स्थापनाओं की बहुत प्रशंसा की। एक शिक्षाविद के रूप में सन 1903 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें काउंसिल ऑफ इंडिया के सम्मानित सदस्य के रूप में नामित किया। सन 1911 में भी उन्हें सरकार ने विशेष सम्मान प्रदान किया।

रामकृष्ण भंडारकर एक पुरातत्ववेत्ता और शिक्षाविद के साथ साथ उच्च कोटि के चिंतक और समाज सुधारक भी थे। बंगाल के ब्रह्म समाज की तर्ज पर बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। वे इसके सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने सामाजिक सुधारों के आधार रूप में धार्मिक सुधारों की वकालत की। अपने विशद अध्ययन के आधार पर ही उन्होंने कहा कि रूढ़िवादी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग ही सुधारों का विरोध करते हैं, ग्रंथों में ऐसा कुछ भी नहीं है। वे जाति प्रथा के विरोधी तथा विधवा विवाह और महिला शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। सन 1885 में उन्होंने प्रसिद्ध समाज सुधारक वामन अबजी मोडक और न्यायमूर्ति राणा डे के साथ मिलकर महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था ने पूना में लड़कियों के लिए पहला देसी हाई स्कूल खोला। हुजूर पगा के नाम से ख्यात इस स्कूल का पाठ्यक्रम प्रगतिशील सोच पर केंद्रित था। रामकृष्ण भंडारकर कई उल्लेखनीय ग्रंथों के प्रणेता रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम से संस्कृत सीखने हेतु उन्होंने दो पाठ्य पुस्तक रची। बॉम्बे गजेटियर के लिए उनका योगदान दक्षिण भारत का इतिहास बहुत प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। सन 1876 में उन्होंने भवभूति के मालती माधव पर टीका लिखी, जो बहुत सराही गई। अपने तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ तरीके से अन्वेषित दक्षिण के सातवाहन के अलावा वैष्णव और अन्य संप्रदायों के इतिहास का उन्होंने पुनर्लेखन भी किया। वे ऐसे स्वदेशी इतिहासकार थे जिन्होंने राष्ट्रवादी चेतना के आलोक में हिंदू धर्म और दर्शन को परिभाषित किया। सन 1872 में आरंभ हुई भारतीय पुरावेत्ता शोध पत्रिका में उन्होंने कई निबंध लिखे, जो बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के लिए किया गया उनका काम भी महत्वपूर्ण है। वे इसके आरंभिक सदस्य थे। अपनी बौद्धिक यात्राओं में वे कई बार पश्चिम के विद्वानों से सैद्धांतिक बहस में उलझे और अपनी मान्यताओं को सही ठहराया। महाभारत और पतंजलि का काल निर्धारण भी उन्होंने ही किया। महाभारत के 1.5 लाख शब्दों का विवेचन और व्याख्या भी उनका महत्वपूर्ण काम है। उन्होंने इतिहासकार के भीतर वकील जैसी जिरह करने की प्रवृत्ति का विरोध किया और न्यायाधीश जैसी निष्पक्ष कठोरता पर बल दिया। उनका मानना था कि इतिहास का वर्णन उसी रूप में होना चाहिए जैसा वो वस्तुतः था। भारतीय प्राच्य साहित्य के इस महान विद्वान का 24 अगस्त सन 1925 को निधन हो गया। उनकी स्मृति में पुणे में स्थापित भंडारकर शोध संस्थान आज भी ज्ञान का पथ आलोकित कर रहा है। प्राच्य विद्या के ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए वैष्णव।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूं अभिजीत भट्टाचार्य और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी गुप्त धन। आइए सुनते हैं, सुनो कहानी में गुप्त धन की कहानी।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम में आपको सुना रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुप्तधन।

बाबू हरिदास का ईंटों का पजावा यानी भट्टा शहर से मिला हुआ था। आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य आते और पजावे से ईंट सिर पर उठाकर ऊपर कतारों से सजाते। एक आदमी पजावे के पास एक टोकरी में कौड़ियां लिए बैठा रहता था। मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कौड़ियां बांटता। ईंटें जितनी ही ज्यादा होती उतनी ही ज्यादा कौड़ियां मिलती। इस लोभ में बहुत से मजदूर बूते के बाहर काम करते। वृद्धों और बालकों को ईंट के बोझ में अकड़े हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य था। कभी कभी बाबू हरिदास स्वयं आकर कौड़ी वाले के पास बैठ जाते और ईंट लादने को प्रोत्साहित करते। ये दृश्य तब और भी दारुण हो जाता था जब ईंटों की कोई असाधारण आवश्यकता पड़ती। उसमें मजूरी दूनी कर दी जाती और मजूर लोग अपनी सामर्थ्य से दूनी ईंटें लेकर चलते। एक एक पग उठाना कठिन हो जाता। उन्हें सिर से पैर तक पसीने में डूबे पजावे की राख चढ़ाए ईंटों का एक पहाड़ सिर पर रखे बोझ से दबे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो लोभ का भूत उन्हें जमीन पर पटक कर उनके सिर पर सवार हो गया है। सबसे करुण दशा एक छोटे लड़के की थी जो सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दुगनी ईंटें उठाता और सारे दिन अविश्रांत परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता। उसके मुख पर ऐसी दीनता छाई रहती थी। उसका शरीर इतना क्रश और दुर्बल था कि उसे देखकर दया आ जाती थी। और लड़के बनिया की दुकान से गुड़ लाकर खाते और कोई व्यक्तिगत संग्राम में अपनी जिह्वा और बाहू के जौहर दिखाता। लेकिन इस गरीब लड़के को अपने काम से काम था। उसमें ना लड़कपन की चंचलता थी, न शरारत, न खिलंदड़पन। यहां तक कि उसके होठों पर कभी हंसी तक न आती थी। बाबू हरिदास को उसकी दशा पर दया आती। कभी कभी कौड़ी वाले को इशारा करते कि उस हिसाब से अधिक कौड़ियां दे दो। कभी कभी वे उसे कुछ खाने को भी दे देते। एक दिन उन्होंने उस लड़के को बुलाकर अपने पास बिठाया और उसके समाचार पूछने लगे। ज्ञात हुआ कि उसका घर पास ही के गांव में है। घर में एक वृद्धा माता के सिवाय कोई नहीं है और वृद्धा भी किसी पुराने रोग से ग्रस्त रहती है। घर का सारा भार इसी लड़के के सिर पर था। कोई उसे रोटियां बनाकर देने वाला भी न था। शाम को जाता तो अपने हाथों से रोटियां बनाता और अपनी मां को खिलाता था। जाति का ठाकुर था। किसी समय उसका कुल धन धान्य से संपन्न था। लेन देन होता था और शक्कर का कारखाना चलता था। कुछ जमीन भी थी, किंतु भाइयों की स्पर्धा और विद्वेष ने उसे इतनी हीनावस्था तक पहुंचा दिया था कि अब रोटियों के लाले पड़े थे। लड़के का नाम मगन सिंह था। हरिदास ने पूछा, गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते? मगन ने कहा, वाह, उनका वश चले तो मुझे मार डालें। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपए गड़े हैं। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, पुराना घराना है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तुम्हारी मां ने इस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा? मगन बोला, बाबूजी नहीं, एक भी पैसा नहीं। रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती। बाबू हरिदास मगन सिंह से इतने प्रसन्न हुए कि मजूरों की श्रेणी से उठाकर अपने नौकरों में रख लिया। उसे कौड़ियां बांटने का काम दिया और पजावे में मुंशी जी को ताकीद कर दी कि इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाइए। अनाथ के भाग्य जाग उठे। मगन सिंह बड़ा कर्तव्यशील और चतुर लड़का था। उसे कभी देर ना होती, कभी नागा ना होता। थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया। लिखने पढ़ने में भी कुशल हो गया। बरसात के दिन थे, पजावे में पानी भरा हुआ था, कारोबार बंद था। मगन सिंह 3 दिनों से गैर हाजिर था। हरिदास को चिंता हुई, क्या बात है, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? कई आदमियों से पूछताछ की पर कुछ पता ना चला। 4th दिन पूछते पूछते मगन सिंह के घर पहुंचे। घर क्या था, पुरानी समृद्धि का ध्वंसावशेष मात्र था। उनकी आवाज सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आया। हरिदास ने पूछा, कई दिन से आई नहीं, माता का क्या हाल है? मगन सिंह ने अवरुद्ध कंठ से उत्तर दिया, अम्मा आजकल बहुत बीमार हैं, कहती हैं अब ना बचूंगी। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी हैं, पर मैं संकोच के मारे आपके पास ना आता था। अब आप सौभाग्य से आ गए हैं तो जरा चलकर उसे देख लीजिए, आपकी लालसा भी पूरी हो जाए। हरिदास भीतर गए। सारा घर भौतिक निस्सारता का परिचायक था। सुर्खी, कंकड़ और ईंटों के ढेर चारों ओर पड़े हुए थे। विनाश का प्रत्यक्ष स्वरूप था। केवल 2 कोठरियां गुजरने लायक थीं। मगन सिंह ने 1 कोठरी की ओर उन्हें इशारे से बताया। हरिदास भीतर गए तो देखा कि
कि वृद्धा एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर पड़ी कराह रही है। उनकी आहट पाते ही आंखें खोली और अनुमान से पहचान गई। बोली, आप आ गए बड़ी दया की, आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी। मेरा नाथ बालक के नाथ अब आप ही हैं, जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है वो निगाह उस पर सदैव बनाए रखिएगा। मेरी विपत्ति के दिन पूरे हो गए, इस मिट्टी को पार लगा दीजिएगा। एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था, हदिन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली। पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ थाती धरती माता को सौंप दी थी। उसका बीजक बड़े यत्न से रखा था, पर बहुत दिन से उसका कहीं पता नहीं। मगन के पिता ने बहुत खोजा पर न पा सके, नहीं तो हमारी इतनी दशा हीन न होती। आज 3 दिन हुए वो मुझे बीजक आप ही आप रद्दी कागजों में मिल गया, तब से उसे छिपा कर रखे हूं। मगन बाहर है, मेरे सिरहाने जो संदूक रखी है उसी में वो बीजक है, उसमें सब बातें लिखी हैं, उसी से ठिकाने का भी पता चलेगा। अवसर मिले तो उसे खुदवा डालिए, मगन को दे दीजिएगा। यही कहने के लिए आपको बार बार बुलवाती थी, आपके सिवा मुझे किसी पर विश्वास न था। संसार से धर्म उठ गया, किसकी नियत पर भरोसा किया जाए। हरिदास ने बीजक का समाचार किसी से न कहा, नियत बिगड़ गई, दूध में मक्खी पड़ गई। बीजक से ज्ञात हुआ कि धन उस घर से 500 डग पश्चिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। हरिदास धन को भोगना चाहते थे, पर इस तरह कि किसी को कानो कान खबर ना हो। काम कष्ट साध्य था, नाम पर धब्बा लगने की प्रबल आशंका थी, जो संसार में सबसे बड़ी यंत्रणा है। कितनी घोर निष्ठा थी, जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे बच्चे की भांति पाला, उसके साथ विश्वासघात। कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहते रहे, अंत में कुतर्कों ने विवेक को परास्त कर दिया। मैंने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया और ना कभी करूंगा, क्या कोई ऐसा प्राणी भी है जो मनुष्य में एक बार भी विचलित ना हुआ हो? यदि है तो वो मनुष्य नहीं देवता है, मैं मनुष्य हूं, मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का दावा नहीं है। मन को समझाना बच्चे को फुसलाना है। हरिदास सांझ को सैर करने के लिए घर से निकल जाते, जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो मंदिर के चबूतरे पर आ बैठते और एक कुदाली से उसे खोदते। दिन में 2-1 बार इधर उधर ताक झांक करते कि कोई चबूतरे के पास खड़ा तो नहीं है। रात की निस्तब्धता में उन्हें अकेले बैठे ईंटों को हटाते उतना ही भय होता था जितना किसी भ्रष्ट वैष्णव को आमिष भोजन से होता है। चबूतरा लंबा चौड़ा था, उसे खोदते 1 महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय न हुई। इन दिनों उनकी दशा उस पुरुष की सी थी जो कोई मंत्र जगा रहा हो। चित्त पर चंचलता छाई रहती, आंखों की ज्योति तीव्र हो गई थी, बहुत गुमसुम रहते, मानो ध्यान में हो। किसी से बातचीत न करते, अगर कोई छेड़कर बात करता तो झुंझला पड़ते, पजावे की ओर बहुत कम जाते। विचारशील पुरुष थे, आत्मा बार बार इस कुटिल व्यापार से भागती। निश्चय करते कि अब चबूतरे की ओर न जाऊंगा, पर संध्या होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता, बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता। जैसे कुत्ता मार खाकर थोड़ी देर के बाद टुकड़े के लालच में जा बैठता है, वही दशा उनकी थी। यहां तक कि दूसरा मास भी व्यतीत हुआ। अमावस की रात थी, हरिदास मलिन हृदय में बैठी कालिमा की भांति चबूतरे पर बैठे हुए थे। आज चबूतरा खुद जाएगा, जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी, कोई चिंता नहीं। घर में लोग चिंतित हो रहे होंगे, पर अभी निश्चित हुआ जाता है कि चबूतरे के नीचे क्या है। पत्थर का तहखाना निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा, तहखाना ना मिले तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा ही धोखा है। कहीं सचमुच तहखाना ना मिले तो बड़ी दिल लगी हो, मुफ्त में उल्लू बनूं, पर नहीं, कुदाली खटखट बोल रही है। हाँ, पत्थर की चट्टान है, उन्होंने टटोल कर देखा, भ्रम दूर हो गया, चट्टान थी। तहखाना मिल गया, पर हरिदास खुशी से उछले कूदे नहीं। आज वे लौटे तो सिर में दर्द था, समझे थकान है, लेकिन ये थकान नींद से न गई। रात को ही उन्हें जोर से बुखार हो गया, 3 दिन तक ज्वर में पड़े रहे, किसी दवा से फायदा ना हुआ। इसी रुग्णावस्था में हरिदास को बार बार भ्रम होता था, कहीं ये मेरी तृष्णा का दंड तो नहीं है। जी में आता था मगन सिंह को बीजक दे दूं और क्षमा की याचना करूं, पर भंडा फोड़ होने का भय मुंह बंद कर देता था। न जाने ईसा के अनुयायी अपने पादरियों के सम्मुख कैसे अपने जीवन भर के पापों की कथा सुनाया करते थे।
हरिदास की मृत्यु के पीछे ये बीजक उनके सुपुत्र प्रभुदास के हाथ लगा। बीजक मगन सिंह के पुरखों का लिखा है, इसमें लेश मात्र भी संदेह न था। लेकिन उन्होंने सोचा, पिताजी ने कुछ सोचकर ही इस मार्ग पर पग रखा होगा। वे कितने नीति परायण, कितने सत्यवादी पुरुष थे, उनकी नियत पर कभी किसी को संदेह नहीं हुआ। जब उन्होंने इस आचार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती, कहीं ये धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतीत हो। शहर के रईसों को दिखा दूं कि धन का सदुपयोग क्यों कर होना चाहिए, बड़ों बड़ों का सिर नीचा कर दूं कोई आंख ना मिला सके, इरादा पक्का हो गया। शाम होते ही वे घर से बाहर निकले, वही समय था, वही चौकन्नी आंखें थीं और वही तेज कुदाली थी। ऐसा ज्ञात होता था मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही है। चबूतरे का धरातल पहले ही खुद चुका था, अब संगीन तहखाना था, जोड़ों को हटाना कठिन था, पुराने जमाने का पक्का मसाला था। कुल्हाड़ी उचट उचट कर लौट आती थी, कई दिनों में ऊपर की दरारें खुली लेकिन चट्टाने जरा भी ना हिली। तब वो लोहे की छड़ से काम लेने लगे, लेकिन कई दिनों तक जोर लगाने पर भी चट्टाने न खिसकी। सब कुछ अपने ही हाथों करना था, किसी से सहायता न मिल सकती थी। यहां तक कि फिर वही अमावस्या की रात आ गई। प्रभुदास को जोर लगाते 12 बज गए और चट्टाने भाग्य रेखाओं की भांति अटल थी। पर आज इस समस्या को हल करना आवश्यक था, कहीं तहखाने पर किसी की निगाह पड़ जाए तो मेरे मन की लालसा मन में ही रह जाए। वो चट्टान पर बैठकर सोचने लगे, क्या करूं, बुद्धि कुछ काम नहीं करती। सहसा उन्हें युक्ति सूझी, क्यों ना बारूद से काम लूं। इतने अधीर हो रहे थे कि कल पर इस काम को न छोड़ सके, सीधे बाजार की तरफ चले। 2 मील का रास्ता हवा की तरह तय किया, पर वहां पहुंचे तो दुकानें बंद हो चुकी थी। आतिशबाज हीले करने लगा, बारूद इस समय नहीं मिल सकती, सरकारी हुक्म नहीं है। तुम कौन हो, इस वक्त बारूद लेकर क्या करोगे? ना भैया, कोई वारदात हो जाए तो मुफ्त में बंधा बंधा फिरूं, तुम्हें कौन पूछेगा। प्रभुदास की शांत वृत्ति कभी इतनी कठिन परीक्षा में न पड़ी थी। वे अंत तक अनुनय विनय ही करते रहे, यहां तक कि मुद्राओं की सुरीली झनकार ने उसे वशीभूत कर दिया। प्रभुदास यहां से चले तो धरती पर पांव न पड़ते थे। रात के 2 बजे थे, प्रभुदास मंदिर के पास पहुंचे, चट्टानों की दराजों में बारूद रख पलीता लगा दिया और दूर भागे। एक क्षण में जोर का धमाका हुआ, चट्टान उड़ गई, अंधेरा गार सामने था, मानो कोई पिशाच उन्हें निगल जाने के लिए मुंह खोले हुए है। प्रभात का समय था, प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए थे। सामने लोहे के संदूक में 10,000 पुरानी मोहरे रखी हुई थी। उनकी माता सिरहाने बैठी पंखा जल रही थी। प्रभुदास ज्वर की ज्वाला से जल रहे थे, करवटें बदलते थे, कराहते थे, हाथ पांव पटकते थे, पर आंखें लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी। इसी में उनके जीवन की आशाएं बंद थी। मगन सिंह अब पजावे का मुंशी था, इसी घर में रहता था, आकर बोला, पजावे चलिएगा, गाड़ी तैयार कराऊं। प्रभुदास ने उसके मुख की ओर क्षमा याचना की दृष्टि से देखा और बोले, नहीं, आज मैं न चलूंगा, तबीयत अच्छी नहीं है, तुम भी मत जाओ। मगन सिंह उनकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने चला। 10 बजते बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गईं। माता ने उनकी ओर देखा तो शोक से विवल हो गईं। बाबू हरिदास की अंतिम दशा उनकी आंखों में फिर गई, जान पड़ता था ये उसी शोक घटना की पुनरावृत्ति है। वो देवताओं की मनौतियां मना रही थी, किंतु प्रभुदास की आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा अर्पण कर दी थी। उनकी स्त्री आकर उनके पैताने बैठ गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। प्रभुदास की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, पर वे आंखें उसी लोहे के संदूक की ओर निराशापूर्ण भाव से देख रही थी। डॉक्टर ने आकर देखा, दवा दी और चला गया, पर दवा का असर उल्टा हुआ। प्रभुदास के हाथ पांव सर्द हो गए, मुख निस्तेज हो गया, हृदय की गति मंद पड़ गई, पर आंखें संदूक की ओर से न हटी। मोहल्ले के लोग जमा हो गए, पिता और पुत्र के स्वभाव और चरित्र पर टिप्पणियां होने लगी। दोनों शील और विनय के पुतले थे, किसी को भूल कर भी कड़ी बात न कही। प्रभुदास का संपूर्ण शरीर ठंडा हो गया था, प्राण थे तो केवल आंखों में। वे अब भी उसी लोहे के संदूक की ओर सतृष्ण भाव से देख रही थी। घर में कोहराम मचा हुआ था, दोनों महिलाएं पछाड़े खा खा कर गिरती थी। मोहल्ले की स्त्रियां उन्हें समझाती थी, अन्य मित्रगण
आंखों पर रुमाल जमाए हुए थे। जवानी की मौत संसार का सबसे करुण, सबसे अस्वाभाविक और भयंकर दृश्य है। ये वज्राघात है, विधाता की निर्दय लीला है। प्रभुदास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया था, पर आंखें जीवित थी। वे अब भी उसी संदूक की ओर लगी थी। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था। सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती। इतने में मगन सिंह आकर खड़ा हो गया। प्रभुदास की निगाह उस पर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो उसके शरीर में फिर रक्त का संचार हुआ। अंगों में स्फूर्ति के चिन्ह दिखाई दिए। इशारे से अपने मुंह के निकट बुलाया, उसके कान में कुछ कहा। एक बार लोहे के संदूक की ओर इशारा किया और आंखें उलट गईं, प्राण निकल गए।

0: श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी गुप्तधन। फिर अपने अगले अंक में एक और कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र अपने किस्सा को संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है पंडित विनायक राव पटवर्धन पर केंद्रित कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के सभी कला प्रेमियों, संगीत साधकों और रसिकों का कला कल्लोनिनी के इस एपिसोड में स्वागत करती हूं। आज हमारे शब्दों में ग्वालियर घराने की शुद्धता है, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की तपोभूमि की सौंधी खुशबू है और नाट्य संगीत की वो अद्भुत ठसक है जिसे पूरी दुनिया पंडित विनायक राव पटवर्धन के नाम से जानती है।
1: पंडित विनायक राव पटवर्धन भारतीय शास्त्रीय संगीत का वो स्तंभ जिन्होंने न केवल रागों की शुद्धता को जीवित रखा बल्कि संगीत के शिक्षण को एक संस्थागत रूप देकर घर घर तक पहुंचाया। आज की ये विशेष प्रस्तुति उस महान विभूति की जीवन यात्रा, उनके कड़े रियाज, उनकी गुरु भक्ति और उनकी अमर गाथा को समर्पित है। तो चलिए श्रोताओं, समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 19वीं सदी के अंतिम दशक में।

0: तारीख 22 जुलाई 1888 और स्थान महाराष्ट्र का ऐतिहासिक शहर मिरज। मिरज जो अपनी मिट्टी में ही संगीत की तरंगें समेटे हुए था, जहां के तानपुरे पूरी दुनिया में अपनी गूंज के लिए जाने जाते थे, इसी मिरज के एक बेहद सुसंस्कृत और पारंपरिक चित्त पावन ब्राह्मण परिवार में बाल विनायक का जन्म हुआ।
1: विनायक के पिता और उनके चाचा संगीत के गहरे पारखी थे। विनायक का बचपन जब मिरज की गलियों में बीत रहा था, तो उनके कानों में हर समय तानपुरे का सुर और तबले की थाप गूंजती थी। बचपन से ही इस बालक की एकाग्रता अद्भुत थी। जब भी घर में या पास के मंदिर में भजन कीर्तन होता, विनायक खेल कूद छोड़कर घंटों वहां बैठ जाते और उनकी आंखें सम्मोहन में बंद हो जातीं। उनके चाचा ने भांप लिया था कि इस बालक के भीतर कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि संगीत का कोई महान साधक छुपा है।
0: लेकिन नियति ने इतनी कम उम्र में ही विनायक की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया। अनाथ बालक के सामने जीवन का अंधकार था, लेकिन उनके चाचा नारायण राव ने विनायक को अपनी संतान से बढ़कर पाला। नारायण राव खुद मिरज के प्रसिद्ध गायक पंडित बाल कृष्ण बुवा इचल करंजीकर के शिष्यों के संपर्क में थे। उन्होंने तय किया कि विनायक के जीवन की नैया को अगर कोई पार लगा सकता है तो वो संगीत है।
1: और तभी मिरज की उस पावन भूमि पर एक युगांतकारी घटना घटी। भारतीय संगीत के पुनरुद्धारक महान संगीत महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का मिरज आगमन हुआ। पलुस्कर जी उस समय पूरे भारत में संगीत के प्रचार प्रसार और उसे कुलीन समाज में सम्मान दिलाने के लिए एक महान अभियान पर निकले थे। जब नारायण राव बाल विनायक को लेकर पलुस्कर जी के सामने पहुंचे, तो पलुस्कर जी ने बालक के चेहरे के तेज और उसकी सुरीली आवाज को एक ही नजर में पहचान लिया।
0: जी हाँ, पलुस्कर जी ने कहा, ये बालक मुझे सौंप दो, ये संगीत की सेवा करेगा और पूरी दुनिया में ग्वालियर घराने का नाम रोशन करेगा। और इस तरह मात्र 9-10 वर्ष की आयु में विनायक राव पटवर्धन पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के प्रथम शिष्यों में शामिल हो गए। ये केवल एक गुरु शिष्य का मिलन नहीं था, बल्कि भारतीय संगीत के एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत थी।
1: श्रोताओं, उस दौर में गुरु के आश्रम में रहना कोई आसान काम नहीं था। वह महज एक संगीत विद्यालय नहीं, बल्कि एक कठोर तपोभूमि थी। विनायक राव को लाहौर के गंधर्व विद्यालय में ले जाया गया, जिसकी स्थापना पलुस्कर जी ने की थी। सुबह के ठीक 4 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही थी, बालक विनायक को अपने गुरु के साथ खरज यानी मंत्र सप्तक का रियाज करने बैठना पड़ता था। ठंड के दिनों में भी ठंडे पानी से स्नान करके सूती कुर्ता पहने तानपुरा लेकर बैठना और लगातार 4 घंटे तक केवल सा का अभ्यास करना, यह थी वो तपस्या जिसने विनायक राव के कंठ को फौलादी और सुरीला बनाया।
0: लाहौर का गंधर्व महाविद्यालय भारतीय संगीत के इतिहास का वो मील का पत्थर था, जहां पहली बार संगीत को किसी बंद कोठरी या राजा के दरबार से निकलकर एक आधुनिक पाठ्यक्रम के तहत ढाला जा रहा था। विनायक राव यहाँ न केवल संगीत सीख रहे थे, बल्कि वो संगीत के प्रशासनिक और सामाजिक दायित्वों को भी आत्मसात कर रहे थे। पलुस्कर जी अपने शिष्यों को केवल गायक नहीं, बल्कि संगीत का प्रचारक बनाना चाहते थे।
1: विनायक राव ने अपने गुरु के हर आदेश को शिरोधारी किया। रियाज के साथ साथ आश्रम की सफाई करना, गुरु के कपड़े धोना, भोजन की व्यवस्था करना और गंधर्व महाविद्यालय की पत्रिकाओं के संपादन में हाथ बटाना, विनायक राव हर काम में अव्वल रहते थे। इसी कठिन दिनचर्या ने उनके भीतर विनम्रता और अनुशासन का वो बीज बोया जो जीवन भर उनके साथ रहा। उन्होंने यहाँ रहकर संगीत के साथ साथ संस्कृत, साहित्य और कला के सैद्धांतिक पक्षों का भी गहन अध्ययन किया।
0: श्रोताओं, 20वीं सदी की शुरुआत में महाराष्ट्र में संगीत नाटक यानी म्यूजिकल थिएटर का दौर अपने चरम पर था। बाल गंधर्व जैसी विभूतियां मंच पर उतरती थीं, तो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाने का ये सबसे सशक्त माध्यम था। जब विनायक राव पटवर्धन की शिक्षा पूरी हुई तो उनके गुरु पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने उन्हें एक नया निर्देश दिया। उन्होंने कहा, विनायक जाओ और नाट्य मंच पर शास्त्रीय संगीत की ध्वजा फहराओ।
1: और फिर गुरु की आज्ञा पाकर विनायक राव पटवर्धन सुप्रसिद्ध गंधर्व नाटक मंडली में शामिल हो गए। मंच पर उनका आगमन किसी बड़े धमाके से कम नहीं था। उनकी बुलंदी, साफ और तीन सप्तकों में आसानी से घूमने वाली आवाज ने नाट्य प्रेमियों को दीवाना बना दिया। उन्होंने शाकुंतलम, सौभद्र, मृच्छकटिक और संशय कल्लोल जैसे नाटकों में मुख्य और महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। जब वे मंच पर गाते थे तो नाट्य गृह का एक एक कोना उनकी आवाज से गूंज उठता था। बिना किसी लाउड स्पीकर या माइक के हॉल के आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक उनकी तान का एक एक कण स्पष्ट सुनाई देता था।
0: बिल्कुल सही। श्रोताओं, जानते हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी? बाल गंधर्व जैसी महान हस्तियों के साथ मंच साझा करते हुए भी विनायक राव ने कभी अपनी शास्त्रीय शुद्धता से समझौता नहीं किया। वे नाटक के गीतों में भी ग्वालियर घराने की ताने, गमक और मीड़ का ऐसा बेजोड़ प्रयोग करते थे कि नाटक देखने आए आम लोग भी शास्त्रीय संगीत के रस में सराबोर हो जाते थे। उनके गाए हुए नाटक गीत आज भी मराठी संस्कृति का अनमोल हिस्सा हैं।
1: जब बात शास्त्रीय गायन की आती है तो पंडित विनायक राव पटवर्धन का नाम इतिहास में तराना विधा के पर्याय के रूप में दर्ज है। तराना जिसमें शब्दों के बजाय तनों, दरें, दानी, तदिम जैसे निरर्थक लगने वाले बोलों के जरिए राग के पूरे सौंदर्य को एक अत्यंत तेज गति में प्रस्तुत किया जाता है। यह किसी भी गायक के फेफड़ों, उसकी सांस के नियंत्रण और उसकी जीभ की गति की अंतिम परीक्षा होती है।
0: श्रोताओं, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार मानते थे कि विनायक राव जैसा तराना गायन किसी के बस की बात नहीं है। जब वे अपनी द्रुत लय में तराना शुरू करते थे तो उनकी उंगलियां तानपुरे पर उनके स्वर हवा की गति से मुकाबला करते थे, लेकिन इस गति में भी कहीं कोई कटुता नहीं होती थी। स्वरों का माधुर्य और ग्वालियर घराने की गरिमा पूरी तरह सुरक्षित रहती थी। भारत के महान संगीत समीक्षकों ने उन्हें तराना का जादूगर की उपाधि दी।
1: नाट्य मंच पर अपार सफलता, धन और कीर्ति कमाने के बाद भी विनायक राव के मन में एक छटपटाहट थी। उनके गुरु पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिर रहा था और लाहौर का गंधर्व महाविद्यालय भी कई संकटों से गुजर रहा था। विनायक राव को लगा कि उनकी कीर्ति तब तक अधूरी है जब तक वे अपने गुरु के मिशन को आगे नहीं बढ़ाते। सन 1932 में उन्होंने नाट्य दुनिया को अलविदा कह दिया, एक ऐसे समय पर जब वे सफलता के शिखर पर थे।
0: श्रोताओं, ये कितना बड़ा त्याग था। लोग पैसे और प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं और वहीं विनायक राव पटवर्धन ने पुणे का रुख किया और 8 मई 1932 को पुणे में भारतीय संगीत प्रसारक मंडल के तहत गंधर्व महाविद्यालय की पुनर्स्थापना की। ये कोई व्यवसायिक स्कूल नहीं था, बल्कि संगीत का ऐसा मंदिर था जहां गरीब से गरीब बच्चा भी आकर संगीत की शिक्षा प्राप्त कर सकता था।
1: विनायक राव खुद साइकिल चलाकर स्कूल आते थे। वे बच्चों को जमीन पर बैठकर सिखाते थे। उन्होंने संगीत के पाठ्यक्रम को इतना सरल और सुलभ बनाया कि आम परिवारों के बच्चे भी शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित होने लगे। उन्होंने संगीत शिक्षा के लिए राग विज्ञान नामक एक विशाल पुस्तक श्रृंखला लिखी। 7 भागों में प्रकाशित यह ग्रंथ आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थियों के लिए बाइबल माना जाता है। इसमें उन्होंने रागों के लक्षण, उनकी बंदिशें और उनकी बारीकियों को इतनी सरलता से समझाया है कि कोई भी जिज्ञासु इसे आसानी से समझ सकता है।
0: एक सच्चे गुरु की पहचान उसके अपने गायन से तो होती ही है, लेकिन इससे भी बड़ी पहचान इस बात से होती है कि उसने समाज को कैसे शिष्य दिए हैं। पंडित विनायक राव पटवर्धन इस मामले में बेहद भाग्यशाली और महान थे। उनके शिष्यों की सूची भारतीय संगीत जगत के दिग्गजों की सूची है। उनके सबसे प्रमुख और लाडले शिष्य थे पंडित डीवी पलुस्कर यानी दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर, जो उनके गुरु पलुस्कर जी के सुपुत्र थे।
1: जी हाँ, जब पलुस्कर जी का अवसान हुआ तो बालक दत्तात्रेय बहुत छोटे थे। विनायक राव ने अपने गुरु पुत्र को अपनी संतान की तरह पाला और उन्हें संगीत की वो बारीकियां सिखाई कि आगे चलकर पंडित डीवी पलुस्कर ने संगीत जगत में एक अमर स्थान बनाया। उनके अलावा पंडित विनायक राव के अन्य महान शिष्यों में पंडित नारायण राव व्यास, उनके बेटे पंडित राव पटवर्धन के साथ ही कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन्होंने देश विदेश में ग्वालियर घराने की गायकी को फैलाया।
0: पंडित विनायक राव पटवर्धन केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहे। आजादी के बाद जब भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित कर रहा था, तब भारत सरकार ने पंडित जी को एक सांस्कृतिक दूत के रूप में चुना। सन 1954 में वो एक भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में सोवियत संघ, पोलैंड और चीन की यात्रा पर गए।
1: सोवियत संघ के बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉलों में, जहां पश्चिमी ओपेरा और क्लासिकल संगीत सुनने वाली भीड़ बैठती थी, जब धोती कुर्ता पहने माथे पर तिलक लगाए इस भारतीय मनीषी ने तानपुरा संभाला और अपनी बुलंद आवाज में भारतीय रागों का चमत्कार दिखाया, तो विदेशी समीक्षक अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि बिना किसी भारी ऑर्केस्ट्रा के केवल एक कंठ और तीन तारों की झनकार से कैसे पूरे हॉल को सम्मोहित किया जा सकता है। इस तरह विनायक राव ने साबित कर दिया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की भाषा सार्वभौमिक है।
0: श्रोताओं, तात्कालीन सोवियत अखबारों और सांस्कृतिक पत्रिकाओं ने लिखा था कि पंडित जी का कंठ नियंत्रण मानव क्षमता से परे प्रतीत होता है। विदेशी मीडिया ने लिखा कि केवल एक तानपुरे और तबले की संगति में एक अकेला गायक पूरे हॉल को अपनी गूंज से भर देता है। उनकी आवाज में वो प्राकृतिक बल है जिसके आगे पश्चिमी ओपेरा गायक भी नतमस्तक हो जाएं। इसके साथ ही विदेशी संगीत पत्रिकाओं ने उनके ताल और लय के साथ खेले जाने वाली चक्करदार तानों की तुलना पश्चिमी क्लासिकल म्यूजिक के जटिल रिदम पैटर्न से की। उनके लय ज्ञान की बहुत प्रशंसा हुई।
1: और हम यहाँ आपको एक दिलचस्प किस्सा भी बताना चाहेंगे। हुआ यूं कि कार्यक्रम के बाद जब सोवियत नेता उनसे मिलने पहुंचे, तो उन्होंने अचरज में पंडित जी से पूछा था कि क्या आपने अपने मुंह या गले में कोई यांत्रिकी उपकरण यानी मैकेनिकल डिवाइस छिपा रखा है जो इतनी तेज गति से आवाज निकाल रहा है। और श्रोताओं, 1984 की इस यात्रा की कवरेज करते हुए सोवियत और पूर्वी यूरोपीय समाचार पत्रों ने पंडित विनायक राव पटवर्धन और उनके दल को प्राचीन भारतीय संस्कृति का जीवंत ध्वजवाहक करार दिया। मीडिया का कहना था कि भारत केवल दर्शन और अध्यात्म का देश नहीं है, बल्कि उसके पास संगीत की एक अत्यंत वैज्ञानिक, अनुशासित और समृद्ध परंपरा है।
0: पंडित जी का पूरा जीवन सादगी और उच्च विचारों का एक जीवंत उदाहरण था। अपार धन और सम्मान मिलने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। पुणे के लोग गवाह हैं कि पंडित जी जीवन के अंतिम पड़ाव तक एक साधारण नागरिक की तरह ही रहते थे। वो कभी किसी तामझाम या अहंकार में नहीं रहे। उनके घर का दरवाजा हर उस व्यक्ति के लिए खुला रहता था जो संगीत सीखने का इच्छुक हो।
1: और उनकी वैचारिक दृढ़ता ऐसी थी कि उन्होंने संगीत के व्यवसायीकरण का हमेशा विरोध किया। वे मानते थे कि संगीत एक विद्या है, कोई वस्तु नहीं जिसे बाजार में बेचा जाए। उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय के जरिए जो भी कमाया उसे वापस संगीत के विकास और गरीब छात्रों की फेलोशिप में लगा दिया। उनकी इसी निष्काम सेवा के कारण उन्हें संगीत जगत में एक संत का दर्जा प्राप्त था।
0: दोस्तों, पंडित जी को अनेक राष्ट्रीय सम्मानों और अलंकरणों से विभूषित किया गया। उसमें से यदि हम प्रमुख सम्मानों की बात करें तो 1964 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, 1962 में हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संगीत नाटक अकेडमी से, 1967 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अकेडमी का सर्वोच्च सम्मान रत्न सदस्य, 1972 में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से भी नवाजा गया।
1: दोस्तों, पंडित विनायक राव पटवर्धन जी ने अपने जीवन काल में रंगमंच, संगीत सम्मेलनों और आकाशवाणी पर कई ऐतिहासिक प्रस्तुतियां दी। गंधर्व नाटक मंडली के दिनों में उन्होंने बाल गंधर्व के साथ शाकुंतलम, सौभद्र, संशय कल्लोल और मृचकटिक जैसे ऐतिहासिक नाटकों में मुख्य भूमिकाएं निभाई और साथ में गाया।
0: 1930 से 1950 के दशकों में पंडित विनायक राव पटवर्धन और पंडित नारायण राव व्यास की जोड़ी शास्त्रीय संगीत सम्मेलनों में बहुत प्रसिद्ध थी। दोनों गुरु भाई मिलकर जब ग्वालियर घराने की बंदिशें और तराना गाते थे तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता था। इसके साथ ही ऑल इंडिया रेडियो के ऐतिहासिक आर्काइव में मौजूद सारंगी वादक उस्ताद सबरी खान और तबला वादक पंडित प्रेम वल्लभ जैसे दिग्गज संगीत दाताओं के साथ राग केदार, राग मालगुंजी, राग नायकी कांधड़ा जैसी कालजयी रिकॉर्डिंग्स आज भी संगीत प्रेमियों के लिए अनमोल धरोहर हैं। लेकिन श्रोताओं, समय की गति अबाध है। जो सुर उसे एक दिन अनंत के मौन में विलीन होना ही था, 23 अगस्त 1975 का वो दिन भारतीय संगीत इतिहास के लिए एक गहरा शोक लेकर आया। 77 वर्ष की आयु में सुरों के इस महान शिल्पी गंधर्व महाविद्यालय के इस अथक सारथी ने पुणे में अपनी अंतिम सांस ली।
1: विनायक राव पटवर्धन जी का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जगत में एक ऐसा सम्मानित स्थान था कि उनके समकालीन दिग्गज, उनके शिष्य और समकालीन संगीतकारों और दिग्गज संगीताचार्य उनका नाम अत्यंत श्रद्धा और आदर से लेते थे। ग्वालियर घराने की शुद्धता और गंधर्व महाविद्यालय के जरिए संगीत सेवा के लिए महान कलाकारों ने उनके बारे में क्या क्या कहा, अब हम आपको ये बताते हैं। मराठी नाट्य संगीत के महान ध्वजवाहक बाल गंधर्व का कहना था कि जब विनायक राव मंच पर गाते हैं तो वे केवल अभिनय या गाना नहीं गाते, बल्कि पूरे नाट्य गृह को शास्त्रीय संगीत की पवित्रता से भर देते हैं। उनकी आवाज को किसी बनावटी साधन की जरूरत नहीं, वह सीधे श्रोताओं के हृदय तक पहुंचती हैं।
0: और बाल गंधर्व जी, जिनके साथ विनायक राव जी ने गंधर्व नाटक मंडली में वर्षों काम किया, पटवर्धन जी की इस बात के मुरीद थे कि उन्होंने व्यवसायिक नाटमंच पर रहते हुए भी कभी अपने शास्त्रीय संगीत की शुद्धता से कोई समझौता नहीं किया। और भारतीय संगीत के महान गायक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने एक बार कहा था कि विनायक राव जी की आवाज में पहाड़ जैसी स्थिरता और बहती नदी जैसी शुद्धता है। तराना और द्रुत लय की गायकी पर उनका जो अधिकार है, वैसा हमारी पीढ़ी में किसी अन्य कलाकार के लिए हासिल करना असंभव है।
1: श्रोताओं, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के वरिष्ठ गुरु भाइयों के रूप में पंडित ओंकारनाथ ठाकुर और विनायक राव पटवर्धन जी ने देश भर में संगीत का प्रचार किया। ओंकारनाथ जी उनकी बेजोड़ लयकारी और तान की सटीकता की हमेशा सराहना करते थे और उनके शिष्य एवं गुरुपुत्र पंडित डीवी पुलस्कर तो उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते थे। वे कहते थे कि आज संगीत जगत में मैं जो कुछ भी हूँ उसका सारा श्रेय पंडित विनायक राव पटवर्धन जी को जाता है। मेरे पूज्य पिता के जाने के बाद उन्होंने न केवल मुझे संगीत सिखाया बल्कि एक पिता की तरह मेरा पालन पोषण भी किया। उनके जाने से ग्वालियर घराने का एक स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन क्या पंडित विनायक राव पटवर्धन सचमुच चले गए? नहीं, जब तक इस देश में गंधर्व महाविद्यालय की किसी शाखा में कोई छोटा बच्चा अपना पहला सा साधेगा, जब तक राग विज्ञान के पन्नों को पलटकर कोई शोधकर्ता किसी बंदिश की तान को सुधारेगा और जब भी भारतीय संगीत के इतिहास में तराना विधा की बात चलेगी, पंडित विनायक राव पटवर्धन अपने शुद्ध स्वरों और अपनी अमर विरासत के साथ हमारे बीच जीवित रहेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, सुर कभी मरते नहीं, वो केवल अपना माध्यम बदल लेते हैं। श्रोताओं, कला कल्लोलिनी के इस विशेष एपिसोड को अब हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और महान कला साधक की जिंदगी के अनमोल पन्नों के साथ। लेकिन इस कार्यक्रम के समापन से पहले हम अपने उन सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हैं जिनके मार्गदर्शन और प्रयास से ये कड़ियां आप तक पहुंच रही हैं।
1: इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा, और श्रोताओं मैं था आपके साथ दानिश,
0: और मैं थी मनीषा।
1: तो अब हमें दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला कल्लोलनी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आज की इस बैठक का समापन हम राग भैरवी से कर रहे हैं। एक भजन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और अंत में हम कीर्तन गाएंगे और कीर्तन में आप सभी हमारा सहयोग करिएगा, सभी आनंद आएगा।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं जननायक के दूसरे दिन की रेडियो रिपोर्ट।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में, जहां 22 अगस्त की शाम जननायक में राजा लोहगुंडी नृत्य नाट्य का मंचन किया गया।

जिसका निर्देशन किया सतीश व्याम ने। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में और सुनते हैं इस नृत्य नाट्य के संपादित अंश।

0: बिना बताए अपन दाई दादा ला कन्या हिरोली पहुंची से हरदी बाजार में। और बाजार ला देख के मने मन खुश हो रहे।
1: वाह, कितना सुंदर बाजार है।
2: हाँ हिरोली, सच
1: मैं तो गोद ना गुदवाऊंगी।
3: वहाँ देख,

0: ए, चलो चलो, अब बाजार बंद होगा।
1: अरे क्यों? अरे छोड़ ना, अब संझा हो रही है, चल चल चलते हैं।

0: किस राज्य से आए हो?
1: मेरा नाम हिरोली है, मैं यहीं पास के राज्य से आई हूँ और ये मेरी संगी सहेलियाँ हैं।
0: मेरे राज्य में बिना मेरी अनुमति के अपनी संगी सहेलियों के साथ घूमने का हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा।
1: जो भी हर्जाना होगा वो मैं अपने पिताजी से कह के भिजवा दूंगी।
0: रुपया पैसा हर्जाना नहीं लगेगा, हर्जाने के रूप में मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा।
1: छोड़ो मुझे।

0: मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। राजकुमारी हिरोली कहाँ है?
1: महाराज, राजकुमारी हिरोली को हरदीगढ़ के राजा राम दरबाई ने बंदी बना लिया है।
0: क्या? मैंने मना किया था, परंतु किसी ने मेरी बात नहीं मानी।
2: महाराज,
0: राजा लोहगुंडी तक इस घटना की सूचना शीघ्रातिशीघ्र पहुंचा दी जाए।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: ता भाई, महाराज की आज्ञा ला पाकर मंत्री या घटना की सूचना ला दसोरी द्वारा लोहरीपुर पहुंचाने के सुनिश्चित करते। और अब दसोरी चल दई से लोहरीपुर का, दिन के तपत घाम मा, रात के अंधियारी में, एक वन दुई वन तीन वन नखथेरे दादा, और जाए के सीधा पहुंचते राजा लोहगुंडी के महल में।
4: वहां जाने की हट छोड़ दो भैया।
5: सेनापति
6: जी। महाराज,
5: युद्ध की तैयारी करो, हरदीगढ़ पर चढ़ाई करनी है।
6: जो आज्ञा महाराज।
7: रुक जाओ सेनापति, सभी सैनिकों से कह दो कि हमारा कोई भी सैनिक इस युद्ध में भाग नहीं लेगा।
6: परंतु क्यों राजमाता?
7: सेनापति, लोहगुंडी नादान है, पर तुम तो समझदार हो, अपने राज्य की बर्बादी मैं नहीं होने दूंगी।
6: ठीक है राजमाता, जैसा आप कहें।
8: परंतु राजमाता ने इस प्रकार का आदेश क्यों दिया होगा?
9: महाराज, अब अकेले युद्ध कैसे लड़ेंगे, ना जाने अब क्या होगा।
8: क्या हुआ, सेनापति अभी तक क्यों नहीं आए?
10: महाराज, राजमाता का आदेश है कि सेनापति के साथ कोई भी सैनिक आपके संग युद्ध में नहीं जाएगा।
5: पर मैं अपने निर्णय पर अटल हूं, मैं हरदीगढ़ अवश्य जाऊंगा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद हिंद।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आजाद हिंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को इतिहास का प्यार भरा नमस्कार।
1: आजाद हिंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को तारीख का प्यार भरा नमस्कार।
0: अच्छा तारीख, एक बात बताओ, क्या तुम्हें राम रेखा की याद है?
1: हाँ, उस वीर क्रांतिकारी को कौन भूल सकता है। इतिहास, प्रथम विश्व युद्ध का समय था। अमेरिका की गदर पार्टी की लहर पूरे अमेरिका और कनाडा में फैल रही थी। राम रेखा उस ब्रिगेड के सदस्य थे जिसे गदर पार्टी ने पूरब में विद्रोह भड़काने के लिए तैयार किया था।
0: अच्छा।
1: और तुम तो जानते ही हो, गदर पार्टी साहित्य भेजकर, आदमी भेजकर और हथियार भेजकर पूरा प्रयत्न कर रही थी कि पूर्वी देशों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भूमिका रच दी जाए।
0: हाँ, इन लोगों को निर्देश देने के लिए गदर पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ता पंडित सोहनलाल पाठक पहले ही अमरीका से चल पड़े थे। बर्मा के मांडले नगर में उन्हें राम रेखा और उनके साथियों से मुलाकात करनी थी। राम रेखा के ब्रिगेड में कुल 4 भारतीय क्रांतिकारी साथी थे, जयपुर के मुस्तफा हुसैन, लुधियाना के अमर सिंह, फैजाबाद जिले शहजादपुर के अली अहमद सादिक और होशियारपुर से खुद राम रेखा।
1: नियत तिथि पर नियत स्थान पर राम रेखा के ब्रिगेड से पंडित सोहनलाल पाठक के साथ मुलाकात हुई। पंडित सोहनलाल पाठक ने उन्हें आवश्यक निर्देश और कार्य योजना समझाई, पर दुर्भाग्य से क्रांति का प्रचार कार्य करते हुए पंडित सोहनलाल पाठक बर्मा में ही गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें मृत्युदंड दिया गया। बर्मा के गवर्नर जनरल ने पंडित पाठक के सामने शर्त रखी, यदि तुम माफी मांग लो तो प्राण दान दे दिया जाएगा। प्रत्युत्तर में पंडित पाठक ने एक ऐतिहासिक जवाब दिया, जुल्म और अन्याय अंग्रेजों की तरफ से हो रहा है, माफी मांगनी हो तो गवर्नर साहब को माफी मांगनी चाहिए, ना कि मुझको।
0: उन्हें जनवरी 1916 में फांसी पर लटका दिया गया। फांसी के तख्ते पर खड़े पंडित पाठक से पुनः माफी मांगने को कहा गया तो अमर शहीद सोहनलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब जरा भी देर मत करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करने दो और अमृतसर का यह नवयुवक क्रांतिकारी वतन से मीलों दूर देश के लिए शहीद हो गया। पंडित सोहनलाल पाठक की शहादत राम रेखा ब्रिगेड के दिलों में अमर प्रेरणा बन करके नया उत्साह भर गई।

0: पंडित पाठक ने भारतीय सेनाओं को विद्रोह के लिए उकसाने के लिए राम रक्खा को एक सशक्त तर्क दे दिया था, जिसे वे भारतीय सेनाओं के बीच पहुंचकर बड़ी शिद्दत के साथ दोहराया करते थे। भाइयों, आप अंग्रेजों के लिए क्यों फिजूल में जान देते हो? यदि तुम्हें जान देनी ही है तो देश के लिए मरो। तुम्हारी भुजाओं के बल से देश को आजादी मिले, यही अच्छा है। राम रक्खा के उद्बोधन का बड़ा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा था।
1: हाँ, राम रक्खा ब्रिगेड वर्मा के मांडले नगर में विद्रोह की नई योजना में संलग्न हो गई। क्रांतिकारी मुस्तफा हुसैन ने प्रस्ताव रखा कि आने वाली बकरीद को हम अंग्रेजों पर हमला करके उन्हें भारी नुकसान पहुँचाएंगे। सभी ने इस प्रस्ताव को अपना पूर्ण समर्थन दिया। योजना का कार्यभार मुस्तफा हुसैन को ही सौंप दिया गया। वैसे भी राम रक्खा की तरह ही मुस्तफा हुसैन भी अत्यंत तेज तर्रार क्रांतिकारी थे। वे अपनी पहचान छिपाने में माहिर थे। कहीं वे अपना नाम मूलचंद बताते तो कहीं महमूद जफर।
0: सन 1915 की बकरीद का दिन निश्चित कर राम रक्खा ब्रिगेड अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने में जुट गई। भारत, वर्मा और सिंगापुर के क्रांतिकारियों से सक्रिय संपर्क बनाए हुए ये लोग बर्मा स्थित अंग्रेजी फौज के भारतीय अफसरों एवं सैनिकों को विद्रोह के लिए तैयार करने लगे।
1: राम रक्खा ब्रिगेड ने विद्रोह के लिए बकरीद का दिन निश्चित कर दिया था, पर इसके लिए पर्याप्त मात्रा में हथियारों की आवश्यकता थी। क्योंकि हथियारों की तैयारी समय पर पूरी नहीं हो सकी थी, अतः विद्रोह की तारीख आगे दिसंबर तक बढ़ा दी गई। सोचा, दिसंबर में अंग्रेजों का बड़ा त्योहार क्रिसमस पड़ता है। अंग्रेजों के इस बड़े त्योहार बड़े दिन के रोज ही विद्रोह की शुरुआत करके अंग्रेजों का कत्लेआम किया जाएगा और इस तरह भारत पर बलपूर्वक अधिकार जमाने का बदला ले लिया जाएगा।
0: इस योजना को सफल बनाने के लिए फौज को विश्वास में लेना भी जरूरी था। इसके लिए मुश्तबा हुसैन के फौज के एक सूबेदार के साथ के संबंधों का उपयोग किया गया। सूबेदार इस बात के लिए राजी हो गया कि जब फौज को बर्मा के बाहर भेजने की आज्ञा दी जाए तो वे उस आज्ञा को मानने से इनकार करते हुए विद्रोह कर देगा।
1: आखिर वह दिन भी आ गया। फौज को एक नए मोर्चे पर जाने का आदेश हुआ। सूबेदार ने ये आदेश मानने से इनकार कर दिया, पर फौज विद्रोह नहीं कर पाई। कारण, वहाँ भारी संख्या में अंग्रेजों की गौरी सेना तैनात थी। सूबेदार का कोर्ट मार्शल हुआ, उसे गोली से उड़ा देने के आदेश हुए। सूबेदार टारगेट पर खड़ा था, भारी संख्या में गोरे सिपाहियों के पहरे में शूटर निशाना साधे खड़ा था। तभी सूबेदार ने चिल्लाकर कहा, मुझे अपनी मौत का कोई अफसोस नहीं है। मैं जानता हूँ मेरा कोई हिंदुस्तानी भाई मेरी मौत का बदला अवश्य लेगा।
0: सूबेदार शहीद हो गया। उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए योजना बनाई गई। जिस गोरे कमांडेंट ने सूबेदार को गोली मारी, उसके अर्दली को सूबेदार की मौत का बदला लेने के लिए तैयार किया गया। कमांडेंट के हिंदुस्तानी अर्दली ने अगले ही दिन कमांडेंट को गोली से उड़ाकर अपने हिंदुस्तानी भाई की अंतिम इच्छा पूरी करके उसकी मौत का बदला ले लिया।
1: अपने मालिक की हत्या करने के जुर्म में अर्दली का कोर्ट मार्शल हुआ और उसे भी गोली से उड़ा दिया गया। होने वाला विद्रोह तो दबा दिया गया, पर सूबेदार द्वारा आदेश की अवज्ञा और अर्दली द्वारा अपने ही अधिकारी कमांडेंट की हत्या करना खतरे की बड़ी चुनौती थी। सो अंग्रेज सेना सतर्क हो गई। खुफिया तंत्र को इस सारे षड्यंत्र की तहकीकात जानने और इसके पीछे उत्तरदायी क्रांतिकारियों को शीघ्रता से पकड़ने के आदेश दे दिए गए।
0: सारा खुफिया तंत्र तहकीकात में जुट गया। शीघ्र ही उन्होंने पता लगा लिया कि सारे षड्यंत्र के पीछे क्रांतिकारियों का एक गुट है। शीघ्र ही सुराग लगाकर इन क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हो गई। एक एक करके राम रक्खा ब्रिगेड के चारों सदस्य मुश्तबा हुसैन, अमर सिंह, अली अहमद सादिक और राम रक्खा गिरफ्तार कर

0: 1917 में मांडले षड्यंत्र केस की सुनवाई प्रारंभ हुई। अंग्रेज सरकार के पास षड्यंत्र के ठोस सबूत थे। राम रखा और उनके साथियों ने षड्यंत्र की बात गर्व के साथ स्वीकार की और इसे अपना नैतिक अधिकार बताया। न्यायाधीश ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह के षड्यंत्र के जुर्म में चारों क्रांतिकारियों राम रखा, मुश्तबा हुसैन, अमर सिंह और अली अहमद सादिक को मृत्युदंड सुनाया। बाद में गवर्नर जनरल की आज्ञा से मृत्युदंड आजीवन कारावास में बदल दिया गया। आजीवन कारावास के लिए चारों क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया।
1: राम रखा को अंडमान की सेलुलर जेल में रखा गया। राम रखा शरीर से काफी हष्टपुष्ट तो थे ही, इरादों के भी पक्के थे। उन्हें अन्याय जरा भी बर्दाश्त नहीं होता था, चाहे अन्याय किसी के भी विरुद्ध क्यों न हो।
0: आजीवन कारावास के दौरान उन्हें जो भी काम दिया जाता वे पूरी ईमानदारी से नियत समय पर पूरा कर देते।
1: कारावास में कैदियों के साथ अन्याय और जुल्म होना तो सामान्य बात थी। जब जेल अधिकारियों का अत्याचार बर्दाश्त से बाहर हो गया तो राम रखा ने जेल के अधिकारियों के अत्याचार के खिलाफ अनशन प्रारंभ कर दिया। जेल अधिकारियों और डॉक्टरों ने नली डाल करके उनके पेट में भोजन पहुंचाने के अथक प्रयत्न किए, पर वे सफल नहीं हो सके। उनके सभी प्रयत्न निष्फल हो गए। राम रखा अनशन पर डटे रहे और संघर्ष करते रहे।
0: राम रखा की कमजोरी लगातार बढ़ती जा रही थी। अशक्तता और संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्हें खून की उल्टियां होने लगी और अंत में सन 1919 में जेल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई।
1: भारत माता की आजादी और अपने साथियों के लिए उस नवयुवक क्रांतिकारी ने अपने जीवन और अपनी जवानी को भेंट कर दिया। आज हम सभी भारतवासी उस सच्चे सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की, और गीत लिए गए थे स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जारी ऑडियो एल्बम जन गर्जे से।
3: और अब दीजिए हमें इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार।

0: नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदी के महान लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हैं। ये हिंदी के पहले रचनाकार थे श्रोताओं, जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। उनकी व्यंग रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी पैदा ही नहीं करती, बल्कि उन्हें सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा कर देती हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग असंभव ही है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को हरिशंकर परसाई जी ने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने हमेशा विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है और उनकी भाषा शैली में भी श्रोताओं एक खास प्रकार का अपनापन नजर आता है। चलिए श्रोताओं, अब सबसे पहले हम बात करते हैं हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय के बारे में।
0: हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी नामक गांव में हुआ था। गांव से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे नागपुर चले गए। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए हिंदी की परीक्षा पास की और कुछ दिनों तक उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन प्रारंभ कर दिया और फिर जबलपुर से साहित्यिक पत्रिका वसुधा का प्रकाशन भी किया, परंतु घाटा होने के कारण उसे उन्होंने बंद कर दिया।
1: श्रोताओं, हरिशंकर परसाई जी ने खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते हुए मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को बहुत ही निकटता से पकड़ा। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन था, जिसमें पाठक यह महसूस करता था कि लेखक उसके सामने ही बैठा हुआ है।
0: मात्र 18 वर्ष की ही उम्र में हरिशंकर जी ने जंगल विभाग में नौकरी की। वे खंडवा में 6 माह तक बतौर अध्यापक भी नियुक्त हुए थे। उन्होंने 2 वर्ष यानी 1941 से 1943 में जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण कार्य का अध्ययन किया। 1943 से हरिशंकर जी वहीं मॉडल हाई स्कूल में अध्यापक हो गए।

0: और श्रोताओं, इसके बाद हरिसिंगर परसाई जी ने जबलपुर शहर में सन 1945 से लेकर के 1946 के आसपास एक छोटे अखबार प्रहरी में लिखना शुरू कर दिया और परसाई जी की पहली रचना स्वर्ग से नर्क जहां तक है, जो कि मई 1947 में प्रहरी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ पहली बार जमकर के लिखा था।
1: वर्ष 1952 में हरिशंकर परसाई जी ने मॉडल हाई स्कूल जबलपुर की सरकारी नौकरी छोड़ दी और वर्ष 1953 से 1957 तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। 1957 में उन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। जबलपुर से वसुधा नामक की साहित्यिक मासिक पत्रिका भी हरिशंकर परसाई जी ने ही निकाली थी। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री ज्ञान रंजन जी का कहना है कि यदि आज परसाई जी होते तो बहुत से लेखक अपनी पोथियां छपवाते हुए भी उनसे आंख नहीं मिला सकते थे। श्रोताओं, सुप्रसिद्ध साहित्यकार त्रिलोक सिंह जी का कहना है कि परसाई जी ने जो कहा वो किया, और परसाई जी को साफ गोई पसंद थी और वो बिल्कुल साफ बोलते थे। सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार परसाई जी ने व्यंग्य को मनोरंजन के परकोटे से बाहर निकालते हुए लोगों की आंखें खोलने और कान खड़े करने का बाण बनाया है।
0: तो श्रोताओं, ये तो था हरिशंकर परसाई जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। चलिए अब हम बात करते हैं उनके साहित्य परिचय के बारे में। हरिशंकर परसाई जी पाठकों के लेखक थे और उन्हें लेखक बनाने में सर्वाधिक योगदान अखबारों का ही था। उनकी कलम की धार को साहित्यकार बहुत देर से समझ पाए। कबीर जी हरिशंकर परसाई जी के गुरु थे। परसाई जी कहते थे, व्यंग तो उनकी स्प्रिट है और स्प्रिट शब्द का प्रयोग भी उन्होंने ही किया है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय सारे देश में आदर्शवादिता का जज्बा कायम था। लोगों के नए नए अरमान थे, वे देश और साहित्य के लिए समर्पित थे।
1: प्रहरी अखबार में हरिशंकर परसाई जी की रचना पैसे का खेल प्रकाशित हुई और इसके बाद धोखा, भीतर के घाव, भूख के स्वर, स्मारक, जिंदगी और मौत, दुख का ताज जैसे एक से बढ़कर एक उनकी रचनाएं प्रकाशित हुईं, जो कि बहुत भाव प्रधान थीं, जिनमें गरीबी की छाप स्पष्ट दिखाई देती थी। नौकरी से त्यागपत्र देकर हरिशंकर परसाई जी ने कम साधन होते हुए भी लेखन के क्षेत्र में पदार्पण किया, जो साहित्यकार गरीबों और पिछड़ों के लिए चिंतन करता है और उनके हितों को ध्यान में रखकर लेखन कार्य करता है, वो ही दूरदृष्टि का मालिक होता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्रोताओं, धार्मिक खोखला पाखंड हरिशंकर परसाई जी के लेखन का पहला प्रिय विषय था। हरिशंकर परसाई जी कार्ल मार्क्स से ज्यादा प्रभावित थे। परसाई जी की प्रमुख रचनाओं में सदाचार का ताबीज प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जिसमें रिश्वत लेने देने और मनोविज्ञान को उन्होंने प्रमुखता के साथ उकेरा है। और जिस तरह से अर्जुन को चिड़िया की एक आंख दिखती थी, ठीक उसी तरह से परसाई जी को शोषितों की कतार दिखती थी।
1: जिस स्थान पर अमन चैन हो, वहां पुलिस वाले कैसे अशांति फैला रहे हैं और कैसे भ्रष्टाचार फैल रहा है, इसे लेकर परसाई जी की रचना इंस्पेक्टर मातादीन लोकप्रिय रचनाओं में से एक है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि परसाई जी की रचना पहले के समय में भी प्रासंगिक थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। परसाई जी के लेखन से पता चलता है कि परसाई जी की दृष्टि कितनी साफ थी। वो चीजों के आर पार देखते थे। उनकी निगाह स्थानीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर भी रहती थी।
0: व्यंग लेखन में वे किसी को बख्शते नहीं थे। उनका व्यंग तिल मिला देने वाला होता था। परसाई जी ने व्यंग को हिंदी लेखन में प्रतिष्ठा दिलाई। उनका लेखन सामाजिक घटनाओं पर आधारित रहता था। कुछ लोग इसे तत्कालीन लेखन मानते थे और कहते थे कि परसाई जी को कुछ कालजयी लिखना चाहिए, यानी शाश्वत साहित्य। और इस पर परसाई जी का कहना था, मैं शाश्वत साहित्य रचने का संकल्प लेकर के लिखने नहीं बैठा हूं। जो अपने युग के प्रति ईमानदार नहीं रहता, वह अनंत काल के प्रति कैसे हो लेता है, मेरी समझ से परे है ये चीज।
1: श्रोताओं, परसाई जी ने अपनी नौकरी छोड़कर लिखना शुरू किया। नौकरी छोड़ते ही तमाम परेशानी आई, लेकिन वे कभी भी विचलित नहीं हुए। वो हमेशा ही लिखते रहे। फिर तो ऐसा हुआ कि जिस अखबार और पत्रिका में उन्होंने लिखा उसका सर्कुलेशन बढ़ गया। परसाई जी जबलपुर रायपुर से निकलने वाले अखबार देशबंधु में पाठकों के प्रश्नों के उत्तर देते थे और उस स्तंभ का नाम था पूछिए परसाई से। पहले तो इस स्तंभ में हल्के फुल्के इश्की और फिल्मी सवाल ही पूछे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे परसाई जी ने लोगों को गंभीर सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों की ओर आकर्षित किया। दायरा अंतर्राष्ट्रीय हो गया। ये सहज शिक्षा थी। लोग उनके सवाल जवाब पढ़ने के लिए अखबार का इंतजार करने लगते थे।
0: हाँ, परसाई जी कहते थे कि मैं सुधार के लिए नहीं बदलने के लिए लिखता हूँ। वे यह भी मानते थे कि सिर्फ लेखन से क्रांति नहीं होती, लेकिन हाँ उनकी भावभूमि जरूर बन सकती है। वे कहते थे कि मुक्ति कभी अकेले नहीं होती। नौजवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है, मेरे बाद की और उसके बाद की ताजा ओजस्वी तरुण पीढ़ी से भी मेरे संबंध हैं। नए से नए लेखक से मेरी दोस्ती है। मैं जानता हूं कि इसमें से कुछ कॉफी हाउस में बैठ करके कॉफी के कप में सिगरेट बुझाते हुए कविता और कविता की बात करते हैं। मैं इन तरुणों से कहता हूं कि अपने बुजुर्गों की तरह अपनी दुनिया को छोटी मत करो। यह मत भूलो कि इन बुजुर्गों साहित्यकारों में अनेकों ने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे वर्ष जेल में गुजारे हैं।
1: उन्होंने कहा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी और दर्जनों ऐसे कवि हैं जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़े। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां जो फांसी पर चढ़े, वे भी कवि थे। लेखक को कुछ हद तक एक्टिविस्ट होना चाहिए। सुब्रमण्यम भारती कवि और एक्टिविस्ट दोनों ही थे। दूसरी बात ये कि कितने ही अंतर विरोधों से ग्रस्त है ये विशाल देश और कोई देश अब तक अकेले अपनी नियति नहीं तय कर सकता। सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। ऐसे में देश और दुनिया से जुड़े बिना एक कोने में बैठे कविता और कहानी में ही डूबे रहोगे तो अपनी सोच को सीमित ही रख पाओगे।
0: श्रोताओं, एक बात बताऊं आपको, प्रेमचंद जी के बाद हिंदी के दूसरे लोकप्रिय लेखकों में हरिशंकर परसाई जी सबसे अग्रणी हैं। दोनों की लेखकीय प्रतिष्ठा पाठकों की ओर से आई है और पाठकों ने उन्हें बहुत सराहा है, परंतु साहित्य कीर्ति धारकों की निगाह में इनकी कद्र कुछ दिन बाद हुई। श्रोताओं, परसाई जी के व्यंग लेखों को नई दुनिया, देशबंधु, नवीन दुनिया, अमर उजाला, नवयुग, हिंदी करंट जैसे अखबार और पत्रिकाएं सारिका, हिंदुस्तान, धर्मयुग, कल्पना आदि ने खूब छापा है।
1: सारिका पत्रिका के संपादक मानते थे कि परसाई जी के कॉलम छपने से पत्रिका के प्रसार की संख्या बढ़ती है। अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे प्रकाशकों ने परसाई जी की पुस्तिकाएं छापनी शुरू की जो रचनावली तक जारी रही। उनकी मृत्यु के बाद भी प्रकाशकों की राय में परसाई जी की किताबों और उनकी रचनावली की बिक्री लगातार बढ़ी। पाखंड, बेईमानी आदि पर परसाई जी ने अपने व्यंगों से गहरी चोट की।
0: तो श्रोताओं, ये तो परिचय था हरिशंकर परसाई जी की साहित्य शैली का। चलिए अब कुछ बात करते हैं उनकी भाषा शैली के बारे में। परसाई जी बोल चाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते थे। परसाई जी की भाषा में व्यंग की प्रधानता थी और उनके एक एक शब्द में व्यंग के तीखेपन को स्पष्ट देखा जा सकता था। जैसे इस देश में बुद्धिजीवी शेर हैं, पर वे सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं। वाह, क्या बात है। अच्छी आत्मा फोल्डिंग कुर्सी की तरह होनी चाहिए, जरूरत पड़ी तब फैला करके बैठ गए और नहीं तो मोड़ करके कोने में टिका दी।
1: क्या बात है। श्रोताओं, हरिशंकर परसाई जी ने हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया। परसाई जी की अलग अलग रचनाओं में ही नहीं बल्कि किसी एक रचना में भी भाषा, भाव और भंगिमाओं के अनुसार अलग अलग रूप और अनेक स्वर देखे जा सकते हैं। प्रसंग बदलते ही उनकी भाषा शैली में जिस तरह सहजता से भाव बदलते जाते हैं, जिससे एक व्यंग्य उद्देश्य की भी पूर्ति होती है, परसाई जी की ये कला सबको चकित कर देती थी।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्रोता, परसाई जी की एक रचना की यह पंक्तियां कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है तो जाएगा, राजा, रंग, फकीर में सूफियाना अंदाज है, तो वहीं दूसरी ओर ठेठ सड़क छाप दवा फरोश की यह बाकी अदा भी दर्शनीय है कि निंदा में विटामिन और प्रोटीन होते हैं। निंदा खून को साफ करती है, पाचन क्रिया ठीक करती है और बल और स्फूर्ति देती है। निंदा से मांसपेशियां पुष्ट होती हैं और निंदा पायरिया का तो शर्दिया इलाज है।
1: श्रोताओं, संतों का प्रसंग आने पर हरिशंकर जी का शब्द वाक्य संयोजन और शैली सभी कुछ एकदम बदल जाता है। उसका एक उदाहरण सुनिए। संतों को परनिंदा की मनाही होती है, इसीलिए वे स्वनिंदा करके स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं। मौसम कौन कुटिल खलकामी, ये संत की विनय और आत्म स्वीकृति नहीं है बल्कि टॉनिक है। संत बड़ा काइया होता है, हम समझते हैं कि वो आत्म स्वीकृति कर रहा है पर वास्तव में वो विटामिन और प्रोटीन खा रहा है।
0: वाह क्या बात है। और श्रोताओं, एक अन्य रचना में वे पैसे में बड़ा विटामिन होता है लिख करके ताकत की जगह विटामिन शब्द में एक प्रभाव पैदा कर देते हैं। जब वे लिखते हैं कि उनकी बहू आई और बिना कुछ कहे दही बड़े डाल करके झम से लौट गई, तो इस झम से लौट जाने की ही झम झम पायल बजाती हुई नई नवेली बहू द्वारा तेजी से थाली में दही बड़े डाल करके लौटने की समूची क्रिया साकार हो जाती है।
1: श्रोताओं, ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज इस देश में ऐसा कोई लेखक दिखाई नहीं देता जो ऐसा साहित्य सृजित करे जो कि आम आदमी के सिर चढ़कर बोले। कवि नागार्जुन ने भी परसाई जी पर एक कविता लिखी थी, वाणी ने पाए प्राणदान। श्रोताओं, उस रचना की एक पंक्ति है, सदियों तक कुंद नहीं होंगे गुरु परसाई के वचन बाण।
0: श्रोताओं, बाबा नागार्जुन शब्द पारखी थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि भारत में शब्द वचन बनकर के प्रमाणिक होते हैं, इसलिए उन्होंने परसाई जी के वाक्यों को शब्द बाण की उपमा दी थी। जैसे ये पंक्ति, किसी निर्देश पर चलना नहीं स्वीकार मुझको, नहीं है पद चिन्ह का आधार भी दरकार मुझको, ले निराला मार्ग उस पर सींच जल कांटे उगाता, और उनको रौंदता हर कदम में आगे बढ़ता, शूल से है प्यार मुझको फूल पर कैसे चलूं मैं, फूल पर कैसे चलूं मैं, फूल पर कैसे चलूं।
1: और इसके आगे वो लिखते हैं, बांध बाती में हृदय की आग, चुप जलता रहे जो, और तम से हार कर चुपचाप सिर धुनता रहे जो, जगत को उस दीप का सीमित निबल जीवन सुहाता, ये धधकता रूप मेरा विश्व में भय ही जगाता, प्रलय की ज्वाला लिए हूं दीप बन कैसे जलूं मैं, प्रलय की ज्वाला लिए हूं दीप बन कैसे जलूं मैं, जग दिखाता है मुझे रे राह मंदिर और मठ की, एक प्रतिमा में जहां विश्वास की हर सांस अटके, चाहता हूं भावना की भेंट मैं कर दूं अभी तो, सोच लूं पाषाण में भी प्राण जागेंगे कभी तो, सोच लूं पाषाण में भी प्राण जागेंगे कभी तो, पर स्वयं भगवान हूं इस सत्य को कैसे छलूं मैं, इस सत्य को कैसे छलूं मैं।
0: वाह क्या बात है। श्रोताओं, परसाई जी विशेषकर व्यंग लेखक थे, पर उनका व्यंग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, उन्होंने अपने व्यंग के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर खींचा है जो हमारे जीवन को दुभर बना रही हैं। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण पर करारा व्यंग किया है जो हिंदी व्यंग साहित्य में अनूठा है।
1: हरिशंकर परसाई जी अपने लेखन को एक सामाजिक कर्म के रूप में परिभाषित करते हैं। उनकी मान्यता है कि सामाजिक अनुभव के बिना सच्चा और वास्तविक साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता। सामाजिक विसंगतियों के प्रति गहरा सरोकार रखने वाला ही लेखक सच्चा व्यंगकार हो सकता है। परसाई जी सामयिक समय का रचनात्मक उपयोग करते हैं। उनका समूचा साहित्य वर्तमान से मुठभेड़ करता हुआ दिखाई देता है। परसाई जी ने हिंदी साहित्य में व्यंग विधा को एक नई पहचान दी और उसे एक अलग रूप में प्रदान किया। इसके लिए हिंदी साहित्य उनका हमेशा ऋणी रहेगा।
0: श्रोताओं, परसाई जी को बहुत पुरस्कार और बहुत सम्मान भी मिले। चलिए कुछ थोड़ी सी चर्चा उनके बारे में भी करते हैं। परसाई जी को उनकी कृति विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। परसाई जी को शरद जोशी सम्मान से भी नवाजा गया।
1: और श्रोताओं, आइए अब उनकी रचनाओं की बात करते हैं। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव और दो नाक वाले लोग, ये उनके कहानी संग्रह है।
0: और श्रोताओं, परसाई जी के जो व्यंग संग्रह हैं, वे हैं वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, और स्मरण में जो है वो है तिरछी रेखाएं, और जो उनके उपन्यास हैं वो है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल।
1: आइए अब हम आपको परसाई जी के निबंध संग्रह के बारे में बताते हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, और अंत में प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, तुलसीदास चंदन घिसे, एवं हम एक उम्र से वाकिफ है।
0: श्रोताओं, परसाई जी के कुछ व्यंग इस प्रकार हैं। अमरीकी शासक हमले को सभ्यता का प्रसार करते हैं, बम बरसाते हैं और मरने वाले सोचते हैं कि सभ्यता बरस रही है।
1: इस देश के बुद्धिजीवी शेर हैं, पर वे सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं।
0: नशे के मामले में हम बहुत ऊंचे हैं। दो नशे खास हैं, हीनता का नशा और उच्चता का नशा, जो बारी बारी से चढ़ते रहते हैं।
1: सरकार कहती है कि हमने चूहे पकड़ने के लिए चूहेदानियां रखी हैं, और एक आध चूहेदानी की हमने जांच भी की, उसमें घुसने के छेद से बड़ा छेद पीछे से निकलने के लिए है, चूहा इधर से फंसता है और उधर से निकल जाता है।
0: वाह क्या बात है, पिंजड़े बनवाने वाले और चूहे पकड़ने वाले चूहों से मिले हुए हैं। वे इधर हमें पिंजरा दिखाते हैं और उधर चूहों को बड़ा छेद दिखाते हैं। हमारे माथे पर सिर्फ चूहे दानी का खर्च बढ़ रहा है।
1: जो पानी छान कर पीते हैं, वे आदमी का खून बिना छना ही पी जाते हैं।
0: बिल्कुल, बेइज्जती अगर दूसरों की भी शामिल कर लें तो आधी इज्जत बच जाती है।
1: मानवीयता उन पर रम के किक की तरह चढ़ती उतरती है, उन्हें मानवीयता के फिट आते हैं।
0: श्रोताओं, अपनी हास्य व्यंग रचनाओं में सभी के मन को भा लेने वाले हरिशंकर परसाई जी का निधन 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में हुआ, और अंत में उनकी कविता क्या किया आज तक क्या पाया।
1: मैं सोच रहा सिर पर अपार, दिन मास वर्ष का धरे भार, पल प्रतिपल का अंबार लगा, आखिर क्या पाया तो क्या पाया।
0: जब तान छिड़ी मैं बोल उठा, जब थाप पड़ी मैं डोल उठा, औरों के स्वर में स्वर भरकर, अब तक गाया तो क्या गाया।
1: सब लुटा विश्व को रंक हुआ, रीता तब मेरा अंक हुआ, दाता से फिर याचक बनकर, कण कण पाया तो क्या पाया।
0: जिस ओर उठी उंगली जग की, उस ओर मुड़ी गति भी पग की, जग के अंचल में बंधा हुआ, खिंचता आया तो क्या आया।
1: जो वर्तमान ने उगल दिया, उसको भविष्य ने निगल लिया, है ज्ञान सत्य ही श्रेष्ठ, किंतु जूठन खाया तो क्या खाया।
0: वाह, जूठन खाया तो क्या खाया। श्रोताओं, ऐसे थे महान साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी। ये कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगले सप्ताह हम एक और नए साहित्यकार के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: गुजरात भ्रमण समाप्त कर बंबई और पुणे होकर महाबलेश्वर गए। लिमड़ी के राजा ठाकुर साहब से महाबलेश्वर में स्वामी जी की अचानक भेंट हुई थी। लिमड़ी में स्वामी जी ने राजभवन में निवास किया था। महाबलेश्वर में अचानक भेंट होने के कुछ ही दिनों बाद वे लिमड़ी के राजा के घर चले गए। ठाकुर साहब अति विद्वान सज्जन और स्वामी जी के दीक्षित शिष्य थे। उन्होंने यूरोप के अनेक देशों का भ्रमण किया था और दो बार अमेरिका भी गए थे। ठाकुर साहब ने स्वामी जी को अपने राज्य में ले जाकर वहीं बहुत दिनों तक रखना चाहा था, किंतु स्वामी जी ने उनके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा,
1: नहीं ठाकुर साहब, अभी नहीं, क्योंकि मुझे एक व्रत का पालन करना होगा। अभी मेरे लिए विश्राम करना असंभव है। फिर भी यदि कर्म से छुटकारा मिलने पर विश्राम पाने का अवसर मिलेगा तो आपके यहाँ अवश्य आऊंगा।
2: स्वामी जी के जीवन में ये अवसर फिर कभी नहीं आया। वे थोड़े दिन ठाकुर साहब के साथ महाबलेश्वर में बिताकर उनके साथ ही पुणे लौट गए। वहाँ लगभग एक हफ्ता रहे। उनकी इच्छा थी कि पुणे से हैदराबाद होते हुए रामेश्वरम जाएं, पर ये हो नहीं पाया और वे पुणे से बंबई होते हुए मध्य प्रदेश के खंडवा नगर में आ गए। शायद शिप्रा के तट पर उज्जैनी और नर्मदा के तट पर तीर्थ स्थानों के आकर्षण से ही वे खंडवा गए थे। वहाँ वे लगभग तीन हफ्ता ठहरे।
0: खंडवा में किसी परिचित के नहीं रहने से इधर उधर घूमते घूमते वे जब श्री हरिदास चट्टोपाध्याय नामक एक वकील के घर के सामने आए, ठीक उसी समय वकील साहब ने भी कचहरी से अपने घर लौटने के समय देखा कि दरवाजे पर एक साधु आए हुए हैं। प्रथम दर्शन में अन्य लोगों की भांति ही चट्टोपाध्याय महाशय ने भी सोचा कि ये घुमक्कड़ साधुओं में से ही कोई एक है, किंतु दो चार बातें करने के बाद ही उन्हें समझते देर न लगी कि वे असाधारण प्रतिभावान पंडित हैं। अतएव उन्होंने स्वामी जी को अपने घर में आतिथ्य ग्रहण करने को कहा और स्वामी जी के सहमत होने पर उन्हें वहां रखकर अपने आत्मीय जनों के साथ उनकी सेवा में लग गए।
2: खंडवा के बंगाली समाज के लोग स्वामी जी का शास्त्र ज्ञान और अंग्रेजी साहित्य में पांडित्य देखकर सहज ही उनकी ओर आकर्षित हुए। स्वामी जी के चरित्र की मधुरता ने भी उनको सर्व जनप्रिय बना दिया। उनके गृह स्वामी हरिदास बाबू ने इस सर्वगुण संपन्न सन्यासी को नगर वासियों में परिचित करा देने के लिए स्वामी जी को खुली सभा में व्याख्यान देने को कहा। इस प्रस्ताव से स्वामी जी पहले तो सहमत नहीं हुए। वे गुरु शिष्य की भांति आपसे निकटता के सहारे व्यक्तिगत चर्चा के ही पक्षधर थे। विशेषकर उन्होंने बताया कि वक्ता सुलभ स्वरों को ऊपर नीचे करने आदि के कौशल में वे अभ्यस्त नहीं हैं। इसके बावजूद हरिदास बाबू द्वारा आग्रह किए जाने पर उन्होंने कहा कि उपयुक्त संख्या में श्रोताओं के उपस्थित होने पर वे भाषण देने का प्रयास करने को तैयार हैं। किंतु हरिदास बाबू के लिए भी उस छोटे शहर में श्रोता एकत्र करना संभव नहीं हो पाया और भाषण नहीं हुआ।
0: उसी समय दीवानी अदालत के जज श्री माधव चंद्र बंदोपाध्याय ने एक दिन स्वामी जी के सम्मानार्थ स्थानीय बंगालियों को अपने घर में भोज दिया। भोजन के पहले और बाद का समय सत चर्चा में व्यतीत करने के उद्देश्य से स्वामी जी अपने साथ उपनिषद का एक खंड ले गए थे। निमंत्रित लोगों के एकत्र होने पर उन्होंने कई द्रुह श्लोकों को अत्यंत सरल भाषा में सबको समझा दिया। इन श्रोताओं में बाबू प्यारीलाल गांगुली नामक एक वकील संस्कृत के पंडित के रूप में ख्यात थे, इसलिए वे प्रश्न करने के लिए प्रस्तुत हुए। स्वामी जी ने उनके प्रत्येक प्रश्न का ऐसा सरल और सुस्पष्ट उत्तर दिया कि वकील साहब ने संतुष्ट होकर और ज्यादा प्रश्न नहीं किया तथा पाठ समाप्त हो जाने पर हरिदास बाबू के कानों में कहा, स्वामी जी को देखकर ही लगता है समय आने पर ये एक विश्वविख्यात व्यक्ति होंगे।
2: शिकागो धर्म सभा में योगदान करने की जो कामना स्वामी जी के मन में जूनागढ़ और पोरबंदर में अंकुर के रूप में प्रकट हुई थी, वो यहाँ और भी बड़े आकार में विकसित हुई। उन्होंने सुना था कि अगले वर्ष 1839 ईस्वी में इस सभा का अधिवेशन होगा और विश्व के विविध धर्मों के प्रतिनिधि उसमें भाग भी लेंगे। इसी से इस विषय की चर्चा में उन्होंने हरिदास बाबू को एक दिन कहा,
1: कोई यदि मेरे यातायात का खर्च दे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं जाने को तैयार हूँ।
0: मध्य भारत में खंडवा छोड़कर कुछ उत्तर की ओर जाने के समय उन्हें कई कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ा। भिन्न भिन्न जाति की विभिन्न प्रकृति के लोगों के बीच वे गए, जो अत्यंत असभ्य और अतिथि सत्कार विमुख हैं। एक मुट्ठी भिक्षा चाहने पर देते नहीं, ठहरने की जगह मांगने पर डांट फटकार देते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि कई दिनों तक निर्जल निराहार रहने के बाद थोड़ा कुछ सामान्य भोजन कर शरीर रक्षा करनी पड़ी। उन्हीं दिनों उन्होंने एक परिवार में कई दिनों तक वास किया था और इन उपेक्षित लोगों के हृदय की श्रेष्ठता देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए थे। संभवतः इस घटना और इस प्रकार की अन्य कई घटनाओं से उपेक्षित जातियों में भी अच्छाई का अंकुर देखकर उन लोगों की उन्नति के लिए वे इतनी तीव्रता से जुट गए थे। परिव्राजक जीवन में एक बार स्वामी जी के मन में विचार जगा कि सिद्धि लाभ के लिए उन्होंने संसार का त्याग किया है। घर घर भिक्षा मांगने और जगह जगह घूमने मात्र से ये उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। अपने एक गुरु भ्राता को लिखित उनके एक पत्र में ये भाव व्यक्त हुआ है।
1: मैं निर्लज्ज भाव से घूम घूम कर दूसरों के घरों में भोजन करता हूँ और इससे विवेक को कष्ट भी नहीं होता, बिल्कुल एक कौवे की तरह। अब और भिक्षाटन नहीं करूंगा। मुझे खिलाने से गरीबों को क्या लाभ, बल्कि एक मुट्ठी चावल बचने पर वे अपने बेटे बेटियों को तो खिला सकते हैं। यदि भगवान लाभ ही ना हुआ तो ये शरीर रखने से क्या लाभ।
2: इन्हीं दिनों स्वामी जी के जीवन में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। स्वामी जी एक दिन दूर तक फैले हुए एक घने जंगल में रास्ता पार करते समय सोचते रहे, निराहार एवं तपस्या में देह त्याग होने से क्या हानि है। ऐसा विचार करते हुए वे सारा दिन पैदल चलते रहे। रास्ते में एक मुट्ठी अन्न भी नहीं मिला। संध्या होने पर वे थके शरीर से एक पेड़ के नीचे ही सो गए। उनका मन भगवत चिंतन में निमग्न था और आंखें लक्ष्यहीन रूप से सुदूर की ओर देख रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक बाघ उन्हीं की ओर आ रहा है। धीरे धीरे आगे आकर वो समीप में ही बैठ गया, मानो छलांग लगाने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। उस समय स्वामी जी सोचते रहे,
1: वाह ये तो खूब हुआ, हम दोनों ही जन तो भूखे हैं। इधर मुझे इस देह में तो ज्ञान लाभ हुआ नहीं और इसके द्वारा संसार के किसी का कल्याण होने की भी तो संभावना नहीं देखता हूं। अतएव इस देह के द्वारा यदि इस भूखे पशु की भूख मिट जाए तो क्या बुरा।
0: रंच मात्र चंचलता व्यक्त किए बिना वे उसी प्रकार सोए रहे और प्रतीक्षा करने लगे कि कब वो बाघ छलांग मारकर उन पर टूट पड़ता है। किंतु थोड़ी देर बाद किसी अज्ञात कारण से वो बाघ दूसरी ओर घूमकर तेजी से चला गया। स्वामी जी तब भी सोचते रहे कि संभवतः वह लौटेगा, इसलिए वे प्रतीक्षा करने लगे, किंतु वो नहीं लौटा। वो रात उन्होंने भगवत चिंतन में उस पेड़ के नीचे ही काटी। प्रातःकाल में ईश्वर के विधान से एक दूसरी ओर उनका मन आकृष्ट हुआ। वे ईश्वर की अशेष करुणा की बात को सोचते हुए कृतज्ञ हृदय से गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर हुए। परवर्ती काल में बातों के क्रम में इस घटना का उल्लेख करते हुए समय भी उस समय की अनुभूति का पूर्ण रहस्य या गंभीरता उनके मुंह से कभी व्यक्त नहीं हुई।
2: और एक बार क्लांत और थके होने पर भी वे खाली पेट लंबी राह पर चले जा रहे थे। ग्रीष्म काल का सूर्य आग बरसा रहा था और राह चलना क्रमशः असंभव था, तथापि आखिरी प्रयास कर वे दूरस्थ एक पेड़ के तले पहुंचे और वहीं लेट गए। शरीर उस समय चेतना रहित हो गया था, आगे चल नहीं पा रहा था। तभी अंधकार में अचानक प्रकाश छिटक जाने की भांति उनके मन में एक विचार उदित हुआ। ये तो सच बात है कि आत्मा में अनंत शक्ति है, शरीर उस पर अधिकार जमा लेगा, ये कैसी बात है, मैं निर्बल कैसे हो सकता हूँ। ये सोचते ही उनकी देह में नई शक्ति का संचार हो गया। उनके मन की अचेतनता दूर हो गई, इंद्रियों ने भी प्रतिक्रिया दिखाई और वे पुनः इस संकल्प के साथ राह पर चलने लगे कि इस प्रकार दुर्बलता के हाथों आत्मसमर्पण करना ठीक नहीं। उनके परिव्राजक जीवन में ऐसी घटनाएं और भी घटी थीं और इनका उल्लेख करते हुए उन्होंने कैलिफोर्निया में एक भाषण देने के क्रम में कहा था,
1: कितनी ही बार मैं निराहार रहकर शत विक्षत पांवों से क्लांत देह लेकर मृत्यु के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कितनी ही बार दिन पर दिन मुट्ठी भर अन्न नहीं पाने से राह चलना असंभव हो जाता था। उस समय क्लांत शरीर से किसी वृक्ष की छांव में लेट जाता और प्रतीत होता कि प्राण वायु निकलती जा रही है। बातें नहीं कर पाता था, विचार करना भी असंभव हो जाता और ऐसे में मन में ये भाव उठता कि मुझे कोई भय नहीं, तृष्णा नहीं, सोहम सोहम। सारी प्रकृति में ये क्षमता नहीं कि मुझे मसल डाले। प्रकृति तो मेरी दासी है। हे देवादिदेव, हे परमेश्वर, अपनी महिमा प्रकट करो, स्वराज्य में प्रतिष्ठित हो, विरत मत हो, तभी मैं पुनः शक्ति प्राप्त कर उठ खड़ा होता। इसी से मैं आज भी जीवित हूं और यहां उपस्थित हूं।
0: खंडवा छोड़ने के पूर्व हरिदास बाबू ने स्वामी जी से और भी कुछ दिनों तक रह जाने के लिए विशेष अनुरोध किया था, किंतु स्वामी जी ने कहा,
1: तुम सब मेरी इतनी सेवा शुश्रूषा करते हो कि तुम लोगों को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती, किंतु मुझे रहना तो नहीं है। मैं तीर्थ भ्रमण को निकला हूं, रामेश्वर तक जाना ही होगा। मैं यदि इस प्रकार दीर्घकाल हर जगह बिताऊं तो फिर मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा।
0: हरिदास बाबू ने जब समझ लिया कि स्वामी जी किसी तरह भी नहीं रुकेंगे, तब अपने बंबई निवासी एक भाई के नाम एक पत्र देकर कहा,
3: मेरा भाई श्री छविलदास जी से आपका परिचय करा देगा, लगता है कि वे आपकी सहायता कर सकेंगे। वस्तुतः स्वामी जी, आपका भविष्य अत्यंत उज्जवल है।
0: स्वामी जी ट्रेन से बंबई के लिए रवाना हो गए।
2: जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में बंबई पहुंचकर स्वामी जी बैरिस्टर श्री रामदास छबिलदास के घर आए और अन्य स्थानों की भांति यहां भी शीघ्र ही विद्वत समाज में सुविख्यात हो गए। एक दिन किसी नेता के घर पर उनके जाने पर उक्त सज्जन ने उन्हें अखबार का एक विशेष भाग उन्हें पढ़ने को दिया। उसमें छपा था कि लड़कियों की सहमति से शादी की उम्र निर्धारित करने के लिए एक नया विधेयक एज ऑफ कंसेंट बिल प्रस्तावित हुआ है और बंगाल का शिक्षित वर्ग उसके विरोध में आंदोलन कर रहा है। इस समाचार से स्वामी जी ने लज्जा से सिर झुका लिया और तीव्र एवं स्पष्ट शब्दों में बाल विवाह के विरुद्ध अपना युक्तिपूर्ण मत प्रकट किया।
0: बंबई में रहते समय अचानक उनकी भेंट काली यानी अभेदानंद से हो गई। अभेदानंद जी कहते हैं कि
4: उस समय स्वामी जी का हृदय जैसे अग्नि कुंड की भांति हो गया था। अन्य कोई विचार नहीं, केवल कैसे भारत की प्राचीन आध्यात्मिकता की फिर प्रतिष्ठा होगी, दिन रात यही सोचते। उन दिनों स्वामी जी को देखने पर वे एक प्रचंड आंधी की तरह लगते।
0: उनके हृदय की उत्कंठा देखकर अभेदानंद भी विचलित हो गए थे और स्वामी जी ने स्वयं भी उनसे कहा था,
1: काली, मुझ में इतनी शक्ति और ऊर्जा एकत्र हो गई है कि लगता है मैं फट जाऊंगा।
0: जो लोग अमेरिका जाने के पूर्व स्वामी जी के चिंतन के विकास की गति को लक्ष्य करना चाहते हैं, उनके लिए स्वामी जी के 22 अगस्त और 20 सितंबर के दोनों पत्र विशेष मूल्यवान हैं। प्रथम पत्र के एक अंश में लिखा है जो उन्होंने जूनागढ़ के दीवान जी को लिखा था,
1: देश के इन भागों में ये देखकर मुझे बड़ा दुख है कि संस्कृत तथा अन्य विद्याओं के ज्ञान का बड़ा अभाव है। देश के इस भाग के निवासी स्नान खान पान संबंधी स्थानीय अंधविश्वासों को ही अपना धर्म समझते हैं और यही उनका सारा धर्म है। सामान्य लोग वेदों और हिंदू धर्म के नाम पर उन्हें निरर्थक हास्यपूर्ण कुरीतियां एवं मूर्खताएं सिखा रहे हैं। इन कलयुगी राक्षसों से भगवान इनकी रक्षा करें।
0: दूसरा पत्र खेतड़ी निवासी पंडित शंकरलाल को लिखा गया है,
1: हम लोगों को विदेशों की यात्रा करनी चाहिए। यदि हम अपने को एक सुसंगठित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि दूसरे देशों में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था चल रही है, और साथ ही हमें मुक्त हृदय से दूसरे राष्ट्रों से विचार विनिमय करते रहना चाहिए। किस हास्यास्पद दशा को हम पहुंच गए हैं। यदि कोई हमारे पास गरीब पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति आता है तो छोटी बीमारी की तरह हम उसके स्पर्श से दूर भागते हैं, परंतु जब उसके सिर पर विदेशी थोड़ा पानी डालकर उसका धर्म परिवर्तन कर देता है और उसे पहनने के लिए एक कोट मिल जाता है, फिर चाहे वो कितना ही फटा पुराना क्यों ना हो, तब चाहे वो किसी कट्टर से कट्टर हिंदू के कमरे के भीतर पहुंच जाए, उसके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं। आइए देखिए तो सही, दक्षिण भारत में ये विदेशी लोग क्या गजब कर रहे हैं। ये लोग सर्वहारा लोगों को लाखों की संख्या में बदल रहे हैं। हे भगवान, मनुष्य कब दूसरे मनुष्यों से भाईचारे का बर्ताव करना सीखेंगे।
0: एक मजेदार घटना सुनाता हूं। सन 1892 ईस्वी के सितंबर मास में बंबई से पुणे जाने वाली रेलगाड़ी के एक दूसरी श्रेणी के डब्बे में स्वामी जी बैठे थे। डब्बे में और भी तीन महाराष्ट्रीय युवक यात्री थे। उनमें घोर तर्क युद्ध छिड़ा था। तर्क का विषय था सन्यास। दो युवक रानडे आदि सुधारकों के स्वर में स्वर मिलाकर सन्यास की व्यर्थता तथा उनके दोषों का प्रदर्शन कर रहे थे। तीसरे व्यक्ति उनके मतों का खंडन कर भारत के प्राचीन सन्यास की महिमा का गुणगान कर रहे थे। ये युवक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही थे। पास बैठे हुए सन्यासी विवेकानंद इन तर्करत युवकों की युक्ति व उक्तियों को ध्यान से सुन रहे थे। अंत में लोकमान्य तिलक का पक्ष लेकर वे भी तर्क युद्ध में सम्मिलित हो गए। इस अंग्रेजी जानने वाले सन्यासी की प्रखर प्रतिभा से वे युवकगण उनकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुए। स्वामी जी ने धीर भाव से समझा दिया कि सन्यासियों ने ही भारत के विभिन्न प्रांतों में भ्रमण करते हुए जातीय जीवन के उच्च आदर्शों का समस्त भारत में प्रचार किया है। भारतीय सभ्यता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति ये सन्यासी ही है, जो शिष्य परंपरा द्वारा भारतीय जीवन के आदर्श की रक्षा विघ्न बाधाओं के बीच में से इतने दिनों तक करता आया है। हाँ, ये अवश्य सत्य है कि ढोंगी व स्वार्थी व्यक्तियों के हाथों बीच बीच में सन्यास लांछित तथा विकृत हुआ है, परंतु किसी विशेष व्यक्ति के ढोंग के लिए भारत के समस्त सन्यासी संप्रदाय को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं।
2: इस विद्वान सन्यासी की वाक्पटुता और गंभीर पांडित्य को देखकर लोकमान्य तिलक बड़े मुग्ध हुए और स्वामी जी को अपने घर लेवा ले गए। स्वामी जी भी तिलक जी की प्रखर प्रतिभा और उनका वेद और शास्त्रों पर अधिकार देखकर आनंदित हुए और हर्ष के साथ उनके ही घर रहने लगे। दोनों आपस में वेदों के गहन अर्थों की चर्चा कर बड़े तृप्त होते थे। इस प्रकार पुणे के तिलक भवन में कुछ दिन व्यतीत कर स्वामी जी ने कोल्हापुर की ओर प्रस्थान किया।
0: अन्य स्थानों की भांति कोल्हापुर का शिक्षित समुदाय भी स्वामी जी के गुणों पर मुग्ध हुआ था। खासकर उनकी कठिन विषय को परिष्कृत और हृदयग्राही शब्दों में प्रकट करने की क्षमता ने सबको आकृष्ट किया था। इसी से उन लोगों ने स्थानीय राजा रामीय परिषद में उनके व्याख्यान का आयोजन किया था। स्वामी जी ने 1.5 घंटे तक भाषण दिया। इसमें उन्होंने कहा था,
1: मैं उस धर्म का अनुयायी हूँ, बौद्ध धर्म जिसकी विद्रोही संतान है और ईसाई धर्म जिसका अकुशल अनुकरण मात्र। यूरोप के लोग भला धर्म कैसे समझेंगे, वे तो विलासिता के पीछे दौड़ते हैं।
0: श्रोताओं में से किसी एक ने कहा, मांसाहारी धर्म को क्या समझेंगे। स्वामी जी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा,
1: नहीं नहीं, तुम्हारे प्राचीन ऋषिगण मांसाहारी थे, क्या तुमने अपने उत्तर रामचरित में इसे नहीं पढ़ा।
0: तब उन्होंने उस ग्रंथ से कुछ श्लोक उद्धृत किए जिनमें मांसाहार का स्पष्ट उल्लेख है। ये सुनकर किसी किसी श्रोता के मन में स्वामी जी की जाति के संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ, किंतु इस विषय में उनसे प्रश्न करने का साहस किसमें था।
2: कोल्हापुर से स्वामी जी बेलगांव गए। वहां वे श्री भाटे महोदय के घर ठहरे। पहले तो घर वाले या शहर के अन्य लोग उनकी प्रतिभा को पहचान नहीं पाए, परंतु प्रथम दिन से ही ऐसी घटनाएं घटने लगी कि लोग उनकी बातचीत के ढंग से और सर्वोपरि उनके ज्ञान से आकर्षित हो गए। बेलगांव में भाटे परिवार के सुपुत्र प्रोफेसर G.S. भाटे ने अपने संस्मरण में लिखा है,
1: स्वामी जी की उपस्थिति बेलगांव शहर में भली भांति ज्ञात हो जाने के बाद प्रतिदिन उनके पास जब अनेक लोगों का आगमन होता, तब ये देखकर हम लोगों को बड़ा आश्चर्य होता कि घोर तर्क वितर्क के समय भी स्वामी जी की प्रसन्नता सदा स्थिर बनी रहती। वे कभी क्रुद्ध नहीं होते। जवाब देने में अत्यंत निपुण होने पर भी वे दूसरों को कभी आहत नहीं करते। एक दिन वाद विवाद के समय मैंने स्वामी जी में जो धीरता देखी थी, उससे हम लोगों का खूब मनोरंजन हुआ था। उस समय बेलगांव में
3: एक कार्यपालक अभियंता थे। सभी विषयों में सुपंडित के रूप में उनकी ख्याति थी। उन दिनों के अनेक लोगों की भांति बाहर से ये खूब कट्टर होने पर भी भीतर से संदेहवादी और पश्चिम जगत के विज्ञान के भगत थे। दर्शन और विज्ञान के विषय में उनकी जो जानकारी थी उसकी अपेक्षा स्वामी जी में कहीं अधिक थी। इसके फलस्वरूप तर्क करते समय स्वभावतः वे अपना मिजाज खराब कर अभद्रता दिखाने लगे, पर स्वामी जी मृदुल मुस्कान के साथ कहते, कहने दो उन्हें, मुझे कोई आपत्ति नहीं।
0: पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने दरिद्रता को देखा व समझा था। भारत का परिभ्रमण करते समय उन्होंने देखा था कि विराट जनसमूह का भाग्य यथार्थतः उनके समान ही है, और उन्होंने जाना था कि भारत का जनगण दरिद्र होने पर भी धर्म विमुख नहीं है। हाँ, वो धर्म कई क्षेत्रों में प्राणहीन आचार मात्र रह गया है, तथा धनी और दरिद्र, ऊंच और निम्न जाति के बीच जो विशाल भेद है उसे दूर करने में धर्म प्रयत्नशील नहीं हुआ है, बल्कि धर्म के नाम पर प्रचारित रीति नीति पुरोहित वर्ग के हाथों में पड़कर इस अलगाव का कारक बन गया है और उसके स्थायित्व के लिए युक्ति लगा रहा है। इस लंबे भ्रमण काल में अधिकतर उन्होंने मात्र कमर में वस्त्र लपेटकर सन्यासी के वेश में ही व्यतीत किया था, और उनके साथ होता था श्री राम कृष्ण का चित्र, एक प्रतिगीता और एक लाठी। तथापि उनके मन में था अटूट ईश्वर विश्वास, अपनी जन्मभूमि के प्रति असीम प्रेम और जनगण के प्रति निश्चल अनुराग।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब आपको बता देते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सभा के आरंभ में सुबह 7 बजे सुनने का कार्यक्रम जीवन सौरभ। अक्षय निधि कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:10 से। प्रभु के भक्ति गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम भक्ति संगीत में 7:20 से। शिवम राम

दिन में 11 बजे स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत सुनेगा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर विषय विशेषज्ञ निहारिक पंसोरिया से रत्नेश सोनी की बातचीत। और 11:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। ये थी जानकारी कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।